नमस्कार, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यही आकाशवाणी की हाफलोंग केंद्र है। आज बुधवार है, सख संबत 1948, भाद्र महीने की चौथी तारीख है, अर्थात अंग्रेजी सन 2026, अगस्त महीने की 26वीं तिथि है। सुबह के 5:58:40 हुए। सभी श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन करते हुए हम आरंभ करते हैं आज की पहली सवा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। श्री मोदी ने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर बल दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृहमंत्री ने कहा कि अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना 31 अगस्त को मुंबई की नौसेना गोदी में निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को नौसेना में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के साथ वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक की लंबी सफलता की सराहना की है।
1: आज दुनिया के 2 डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर सशक्त बनाना है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीदकर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने प्याज की सस्ती बिक्री के लिए विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाने और नेफेड से खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। बाद में रिपोर्ट की भाषा पर सहमति बनने के बाद समिति ने एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत करने से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4 दिन की यात्रा पर कनाडा के टोरंटो पहुंच गई हैं। इस दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शोपेनिये के साथ पहली भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इसके बाद वित्त मंत्री G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमरीका जाएंगी। भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे है।

0: भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओ, अभी आप हिंदी में समाचार सुन रहे थे। ये आकाशवाणी की हाफलोंग केंद्र है। समय हो चला है भक्ति गीतों का। आइए सुनते हैं कुछ हिंदी भजनें।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही वुमेन सेंट्रिक फिल्म सॉन्ग कार्यक्रम यहीं समाप्त होती है। ये आकाशवाणी के हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से

0: ढांचा पर योजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी ने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र और राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर बल दिया। बैठक में नौ राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की छह प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृहमंत्री ने कहा कि अगले एक वर्ष में तीन नए आपराधिक कानून देश में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना 31 अगस्त की मुंबई की नौसेना डॉकयार्ड में नेपस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को नौसेना में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत बनाने से जुड़ी सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये छठी बैठक थी। इसमें 382वीं रिपोर्ट के मसौदे पर चर्चा के बाद उसे मंजूरी दी गई। दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर सशक्त बनाना है। इस बीच दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीदकर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय इस बात पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है कि वह केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करेगा। केंद्र सरकार ने इस याचिका में सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के क्रीमी लेयर से जुड़े उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका की 9 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। दोनों देशों ने कहा कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। भारत और न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों के बीच दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हुई। वार्ता में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। फाइनल मैच प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना के बीच खेला जाएगा। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओ, अभी आप हिंदी में समाचार सुन रहे थे। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है।
2: सेंसस 2027 के बारे में एक जरूरी सूचना। सेंसस 2027 का हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन का काम 17 अगस्त से शुरू हो गया और 15 सितंबर 2026 तक चलेगा। ये प्रक्रिया में सेंसस ऑफिशियल यानी एन्यूमरेटर आपके घर

में आएगा, उनका अपना ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड भी होगा। ये ऑफिशियल आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, जैसे कि आपके घर में कितना जन है, पीने का पानी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इंटरनेट, स्मार्टफोन, गाड़ी वगैरह एक्सेट्रा सब है कि नहीं आपको पूछेगा। इन्यूमरेटर आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे और आपका सारा इन्फॉर्मेशन गोपनीय यानी कॉन्फिडेंशियल ही रहेगा। सभी से अनुरोध है कि आप लोग इन्यूमरेटर को अच्छे से कॉपरेट करें, सही इन्फॉर्मेशन दें, देश का फ्यूचर के लिए और देश आगे बढ़ने में साथ दें।

0: आपके गीत। दोस्तों एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।
1: श्रोताओ आइए सुनते आज के दिन के तहत आइए सबसे पहले सुनते पोएम ऑफ द डे।
2: से द डॉग टू द कंगारू, गुड ग्रेसियस हाउ यू हॉप ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप। माय लाइफ इज अ बोर इन दिस नास्टी पॉन्ड एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, से द डॉग टू द कंगारू। Please give me a rip on your back, say the dog to the kangaroo. I could sit quite still and say nothing but quiet the whole of the long day through. And we had go to the D and the jelly bolly over the land and over the sea. Please take me a ride, oh do, say the dog to the kangaroo. Say the kangaroo to the dog. This requin. Requires some little reflection, perhaps on the wall in mid bring the law. And there seems but one objection, which is, if you let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and good, and would probably give me the raw magic, say the kangaroo.
1: So, अभी आपने सुना पोएम ऑफ द डे, प्रस्तुत की थी शासोले रियामे ने। श्रोताओ हमारे इतिहास में आज के दिन यानी कि 26 अगस्त का बहुत सी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटनाएं हुई जो भारत और विश्व के इतिहास में अहम स्थान रखती है। भारत और विश्व में 26 अगस्त का अपना ही एक खास महत्व है क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गए हैं। इस घटना में कुछ ऐसी घटनाएं भी होगी जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण समय और भविष्य को काफी प्रभावित किया होगा। आइए जानें देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन यानी कि 26 अगस्त को क्या क्या खास घटनाएं हुई, इससे जुड़े जानकारियां। श्रोताओ सबसे पहले जानकारियां बांटे कुछ ऐतिहासिक घटनाओं से। 1303 को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया था। बंगाल के क्रांतिकारियों ने 1914 को कलकत्ता के ब्रिटिश बेड़े पर हमला कर 50 माउजर और 46,000 राउंड गोलियां लूटी थी। अमेरिका के महिलाओं को 1920 में मताधिकार मिला था। माइकल जॉनसन ने 1999 में 400 मीटर दौड़ के विश्व रिकॉर्ड बनाया था। वर्ष 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग शहर में 10 दिवसीय पृथ्वी सम्मेलन शुरू हुआ था। तेलुगु फिल्म के सुपरस्टार चिरंजीवी ने 2008 में अपनी नई पार्टी प्रजा राज्यम का उद्घाटन किया था। 1939 को

जेट इंजन वाले विश्व के पहले जर्मनी के पहले उड़ान भरी थी। तो श्रोताओं, ये थे कुछ ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ी जानकारियाँ। आइए अब जानकारी बांटते हैं आज के दिन जन्म तथा निधन है प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। 1676 को आज के दिन ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल का जन्म हुआ था। हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार चतुरसेन शास्त्री का जन्म 1891 को हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित मदर टेरेसा का जन्म 1910 को आज के दिन हुआ था। 1927 को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी बंसीलाल का जन्म हुआ था। 1928 को हीरो साइकिल के सह संस्थापक और समाज सेवी ओम प्रकाश मंजूल का जन्म हुआ था। प्रसिद्ध राजनेत्री संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी का जन्म 26 अगस्त 1956 को आज के दिन हुआ था। प्रसिद्ध साहित्यकार गीतकार गजल दिनेश रघुवंशी का जन्म 1964 को हुआ था। भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध सहायक अभिनेता इंद्र कुमार का जन्म 26 अगस्त 1972 को आज के दिन हुआ था। 1910 को विलियम जेम्स अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक का निधन हुआ था। 1921 को मैथियास एजरबर्गर जर्मन पत्रकार और राजनीतिज्ञ का निधन हुआ था। 1930 को लिन चैनी अमेरिकी अभिनेता निर्देशक और पटकथा लेखक का निधन हुआ था। 1934 को प्रसिद्ध विधिवेत्ता शिक्षा प्रेमी रचनाकार तथा बंगला भाषा के प्रसिद्ध कवि और संगीतकार अतुल प्रसाद सेन का निधन हुआ था। 1943 को बोमन सेन तुर्की संगीतकार और गीतकार का निधन हुआ था। 1946 को जैनी मैकफर्सन अमेरिकी अभिनेत्री और पटकथा लेखिका का निधन हुई थी। 1968 को केफ फ्रांसिस अमेरिकी अभिनेत्री का निधन हुआ था। 1972 को फ्रांसिस चिचेस्टर अंग्रेजी पायलट और नाविक का निधन हुआ था। उन्नीस सौ 1975 को प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तथा हिंदुस्तानी सेवादल के संस्थापक एन एस हद्रिकर का निधन हुआ था। 1978 को जोस मैनुएल मोरेनो अर्जेंटीना के फुटबॉलर और मैनेजर का निधन हुआ था। 1992 को बब डी मूर बेल्जियम के लेखक और चित्रकार का निधन हुआ था। 2011 को जॉर्ज बैंड ताइवानी अंग्रेजी पर्वतारोही का निधन हुआ था। और 2012 को प्रसिद्ध अभिनेता और दूरदर्शन कलाकार ए के हंगल का निधन आज ही के दिन हुआ था। श्रोताओं, आज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मदर टेरेसा यानी मदर टेरेसा का जन्म जयंती, ओनम और थिरु ओनम उत्सव का आज ही के दिन है, और नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट यानी कि राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा है। आइए इनसे जुड़ी जानकारियां बांटते हैं। श्रोताओं, भारत विभिन्न धर्मों जातियों तथा संस्कृतियों का देश है, जहाँ हर तरह के त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। सर्वधर्म समभाव के प्रतीक केरल प्रांत का मलयाली पर्व ओणम राजा बलि की आराधना का दिन समाज में सामाजिक समरसता की भावना, प्रेम तथा भाईचारे का संदेश देश में पहुँचाकर देश की एकता एवं अखंडता को मजबूत करने का प्रेरणा देता है। वैसे तो केरल में इनकी धूम होती है, लेकिन दुनिया भर में बसे मलयाली अपने अपने तरीके से इसे मनाते हैं। इस संबंध में प्राचीन मान्यता है कि बलि ओणम के दिन अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। उन्हें यह सौभाग्य भगवान विष्णु से मिला था। उनके चलते समाज के लोग विष्णु जी की आराधना और पूजा करने के साथ ही अपने राजा का स्वागत करते हैं। ओणम पर्व का सबसे खास आकर्षण होता है खाद्य, जिसे कहते हैं। ओणम के दौरान खाए जाने वाले खाने का खाद्य कहते हैं। कह सकते हैं कि खाद्य के बिना ओणम अधूरा सा है। विशेष और लजीज पकवानों से राजा बलि का प्रसन्न किया जाता है।

ओणम पर्व की मान्यता के अनुसार राजा बलि केरल के राजा थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी और संपन्न थे, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं थे। वे महादानी भी थे। उन्होंने अपने बल से तीनों लोकों का अपने कब्जे में कर लिया था। इसी दौरान भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए और तीन पग में उनका पूरा राज्य लेकर उनका उद्धार कर दिया। माना जाता है कि वे साल में एक बार अपने प्रजा को देखने के लिए आते हैं। तब से केरल में हर साल राजा बलि के स्वागत में ओणम का पर्व मनाया जाता है। केरल में मनाया जाने वाला ओणम का 10 दिन का त्यौहार हस्त नक्षत्र से शुरू होकर श्रवण नक्षत्र तक जारी रहता है। लोग घर के आंगन में महाबली की मिट्टी की बनी त्रिकोणात्मक मूर्ति पर अलग अलग फूलों से चित्र बनाते हैं। जितनी भी कलाकृतियाँ इन दिनों बनाई जाती है उसे महाबली के चले के बाद ही हटाई जाती है। नए फसलों के आने की खुशी में ओणम पर्व मनाया जाता है। ओणम पर्व पर राजा बलि के स्वागत के लिए घरों को आकर्षण साथ सजावट के साथ फूलों की रंगोली और तरह तरह के पकवान बनाकर उनकी भोग आदि करते हैं। हर घर में रंगोलियां सजाने और दीप जलाने की परंपरा है। इस दिन महिलाओं फूलों की रंगोलियां बनाती है जिसे ओणम पुक्कलम कहते हैं। हर घर में विशेष पकवान बनाए जाते हैं, खास तौर पर चावल गुड़ और नारियल के दूध के मिलाकर खीर बनाई जाती है। श्रोताओं आइए अब जानकारी बांटते हैं मदर टेरेसा के जन्म जयंती से जुड़े। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था, जिन्हें रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा कलकत्ता के संत टेरेसा के नाम से नवाजा गया है। उनका जन्म आनएजे गोंजा बोया जीयू के नाम से एक अल्बेनियाई परिवार में उस्कूप उस्मान साम्राज्य वर्तमान में साब्जे मेसिडोनिया गणराज्य में हुआ था। मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक नन थी जिन्होंने 1948 में स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता ले ली थी। इन्होंने 1950 में कलकत्ता के मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की। 45 सालों तक गरीब बीमार अनाथ और मरते हुए लोगों को इन्होंने मदद की और साथ ही मिशनरीज ऑफ चैरिटी के प्रसार का भी मार्ग प्रशस्त किया था। 1970 तक वे गरीबों और असहायों के लिए अपने मानवीय कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो गई। मालकोम मुगेरिस के कई वित्त चित्र और पुस्तक जैसी समथिंग ब्यूटिफुल फॉर गार्ड में इनका उल्लेख किया गया है। इन्हें 1971 में नोबेल शांति पुरस्कार और 1980 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था। मदर टेरेसा के जीवन काल में मिशनरीज ऑफ चैरिटी का कार्य लगातार विस्तृत होता रहा और उसकी मृत्यु के समय तक ये 123 देशों में 610 मिशन नियंत्रित कर रही थी। इनमें HIV एड्स कुष्ठ और तपेदिक के रोगियों के लिए धर्मशालाएं घर शामिल थे और साथ ही सूप रसोई बच्चों और परिवार के लिए परंपरा कार्यक्रम अनाथालय और विद्यालय भी थे। मदर टेरेसा के मृत्यु के बाद इन्हें पॉल जॉन पॉल द्वितीय ने धन्य घोषित किया और इन्हें कलकत्ता के धन्य की उपाधि प्रदान की। दिल के दौरे के कारण 5 सितंबर 1997 की मदर टेरेसा की मृत्यु हो गई। उन्होंने 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। इनके जन्म के समय इनकी बड़ी बहन की उम्र 7 साल और भाई की उम्र 2 साल थी। बाकी 2 बच्चे बचपन में ही गुजर गए थे। ये एक सुंदर अध्ययनशील एवं परिश्रमी लड़की थी। पढ़ाई के साथ साथ गाना इन्हें बेहद पसंद था और यह उनकी बहन पास के गिरजा घर में मुख्य गायिकाएं थी। ऐसे माना जाता है कि जब ये मात्र 12 साल की थी तभी इन्हें यह अनुभव हो गया था कि वो अपना सारा जीवन मानव सेवा में लगाएगी और 18 साल की उम्र में इन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटी में शामिल होने का फैसला ले लिया था। तत्पश्चात ये आयरलैंड गई

इन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी। अंग्रेजी सीखना इसलिए जरूरी था क्योंकि लॉरेटो की सिस्टर्स इस माध्यम से बच्चों को भारत में पढ़ाती है। आइए अब जानकारी बांटते हैं राष्ट्र नेत्रदान पखवाड़ा से। भारत में राष्ट्र नेत्रदान पखवाड़ा 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाने वाला एक वार्षिक जागरूकता अभियान है। यह अभियान का उद्देश्य लोगों को नेत्रदान के बारे में शिक्षित करना और कोर्निया दान एवं प्रत्यारोपण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह पखवाड़ा आम गलतफहमियों को दूर करने का भी एक अवसर है। कई लोग नेत्रदान का समर्थन करना चाहते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि वे इसके लिए पात्र है या नहीं। मृत्यु के बाद उनके परिवार में क्या करना होगा या क्या नेत्रदान से पारंपरिक अंतिम संस्कार भी में कोई बाधा आती है। ये पहलुओं के बारे में पहले से जानकारी होने से व्यक्ति सोच समझकर निर्णय ले सकते हैं और अपनी इच्छाओं को अपने प्रियजनों तक स्पष्ट रूप से पहुंचा सकते हैं। नेत्रदान का महत्व है। कोर्निया से संबंधित कुछ प्रकार के अंधेपन से पीड़ित लोगों के लिए एक स्वस्थ दानित कर्निया उपचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। कर्निया आँख की पारदर्शी सामने की सतह पर होती है और आने वाले प्रकाश के केंद्रित करने की प्रमुख भूमिका निभाती है। जब कर्निया गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त या धुंधली हो जाती है तब दृष्टि काफ़ी प्रभावित हो सकती है। कारण और रोगों की स्थिति के आधार पर नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा कर्निया प्रत्यारोपण पर विचार किया जा सकता है। इसलिए दान किए गए कर्नियल ऊतक की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। सरकारी स्वास्थ्य चुनाव में नेत्रदान के कर्नियल अंधत्व को निपटने और दृष्टि बहाल करने वाले प्रत्यारोपण का बढ़ावा देने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में उजागर किया गया है। आइए इनकी भूमिका के बारे में जानते हैं। कर्निया की कर्निया आँख के सामने की पारदर्शी बाहरी परत होती है। ये प्रकाश को अंदर आने देती है और आँख की फोकस करने की क्षमता को महत्वपूर्ण योगदान देती है। एक कर्निया में गंभीर निशान रोग या अन्य क्षति हो जाती है तो प्रकाश सामान्य रूप से उससे होकर नहीं गुजर पाता है। इसके परिणामस्वरूप दृष्टि धुंधली हो सकती है और काफ़ी कम हो जाता है। कुछ चुनिंदा रोगियों में कर्निया प्रत्यारोपण में क्षतिग्रस्त कर्निया ऊतक की उपयुक्त दाता ऊतक से बदल दिया जाता है। प्रत्यारोपण के सटीक प्रकार से इस बात पर निर्भर करता है कि कर्निया स्कैरिंग संक्रमण और आँख की सामने की सतह को प्रभावित करने वाले अन्य विकारों जैसी स्थितियों के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकनों की आवश्यकता हो सकती है। अंतर्निहित स्थिति के आधार पर विशेष नेत्र देखभाल और कर्नियल उपचार की सिफारिश की जा सकती है। कर्निया को प्रभावित करने वाली स्थितियों कारण कई कारण हो सकते हैं। कुछ रोगियों को चोट या संक्रमण के बाद कर्निया पर निशान पड़ सकते हैं जबकि अन्य में वंशानुगत या अपक्षीय कर्निया संबंधी विकार हो सकते हैं। हर दृष्टि बाधित व्यक्तियों को कर्नियल ट्रांसप्लांट की आवश्यकता नहीं होती। उपचार के सलाह देने से नेत्र रोग विशेषज्ञ की आँख की जांच करके दृष्टि हानि के अंतर्निहित कारण का पता लगाना आवश्यक होता है। नेत्रदान से तात्पर्य मृत्यु के बाद नेत्र ऊतक दान करने से है ताकि उपयुक्त ऊतक विशेष रूप से कर्निया का उपयोग प्रत्यारोपण या अन्य अनुमोदित उद्देश्यों के लिए किया जा सके। ये समझना महत्वपूर्ण है कि पूरी आँख को किसी दूसरे व्यक्ति में पूर्णतः कार्यशील आँख के रूप में प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता। उपयुक्त मामलों में दृष्टि बहाल करने की सहायता के लिए कर्नियल ऊतक का उपयोग किया जा सकता है। तो श्रोताओं, ये थे आज के दिन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। आइए अब आनंद लेते हैं एक फिल्मी गीतों का।

0: ಹಿಂದಾಕ್ತ ತುಂಡ ಕತ್ತ ಧಗತೆ ದಿನ್ನ
1: श्रोताओं, अभी आप फिल्मी गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है।

0: আমাদ লোকপিয়ন আমাদ বিকাশ।
1: লোকপিয়নৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত গৃহতালিকা আৰু গৃহপিয়ন অৰ্থাৎ আপোনাৰ বাসগৃহৰ গণনা কৰা হ'ব। আহক নিজৰ অংশগ্ৰহণেৰে ইয়াক সফল কৰোঁ। প্ৰতিজন ব্যক্তি সংযুক্ত হওক, প্ৰতিটো ঘৰ সংযুক্ত হওক আৰু দেশ আগুৱাই যাওক। লোকপিয়ন 2027, আমাৰ লোকপিয়ন আমাৰ বিকাশ।
2: শ্রোতাও আই আপ শুনতে হে যুবা বাণী কার্যক্রম।
3: নমস্কার শ্রোতাও, মৈ হুঁ আপকি দোস্ত অঙ্কিতা, আর আপ সুন রহে হে আকাশবাণী হাফলং ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন 100.2 মেগাহার্টজ পর আপকা পসন্দিদা যুবা কার্যক্রম। ये कार्यक्रम आप सुन पाते हैं हर हफ्ते बुधवार सुबह 7:30 पर। श्रोताओं, नीट जैसे कम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करना हर स्टूडेंट के लिए एक बड़ा अचीवमेंट होता है, लेकिन एक रिजल्ट के पीछे होती है मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन, काउंटलेस आवर्स ऑफ स्टडी, चैलेंजेस, प्रेशर और एक सपने को पूरा करने की लगन। आज के यूथ प्रोग्राम में हम मुलाकात करेंगे एक ऐसे यंग अचीवर से, मिस्टर सिद्धांत चक्रवर्ती, जिन्होंने हाल ही में नीट में सफलता हासिल की है। आज हम उनसे सिर्फ उनके रिजल्ट के बारे में नहीं, बल्कि उस सफर के बारे में भी जानेंगे जो उन्हें इस अचीवमेंट तक लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम को हमारे अतिथि का स्वागत करते हुए। सबसे पहले तो सिद्धांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आकाशवाणी हाफलों के स्टूडियो पे।
4: धन्यवाद, धन्यवाद
3: जी। तो हमारे कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी हमारे आकाशवाणी हाफलों के परिवार की ओर से।
4: थैंक यू
3: जी। तो चलिए अभी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब आपने मेहनत करके आपके जो ये एग्जाम दिया था उसका जो रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट के उस पल को अगर आप दोबारा याद करें, वो मोमेंट कैसा था आपके लिए?
4: देखिए, बात ऐसा है कि नीट तो सबको अचीव करना पड़ता है विद टाइम। जो जो अपने गोल्स को, मतलब मेडिकल की ओर एक स्टेबलाइज डॉक्टर, एक अच्छा चिकित्सक बनने के लिए जो गोल रखते हैं, उनका सबसे प्रथम जो स्टार्ट होता है वो नीट से स्टार्ट होता है। तो उसका प्रिपरेशन भी हमेशा क्लास 11-12 से स्टार्ट हो सकता है, और कुछ लोग पहले से स्टार्ट कर देते हैं।
3: जी जी।
4: लेकिन मेरा था थोड़ा सा बाद में हुआ था। ये सब स्टार्ट करने के पहले मैं अपना मार्क्स और रैंक बता देता हूँ कि मेरा नीट में पहले वाले 2 अटेम्प्ट हुआ था।
3: जी,
4: पहले
3: जी।
4: वाले में आपका कैंसिल हो गया नीट लीक के बारे में, तो उसमें मेरा एक्सपेक्टेड मार्क्स था 650, तो वो नहीं हुआ। उसके बाद फिर से 1 month बाद 21 June को हुआ था, तब मेरा मार्क्स फिर से आया 591 आफ्टर कैलकुलेशन विथ ए ऑल इंडिया रैंक ऑफ 13,089 एंड कैटेगरी रैंक मेरा 5,000 के आसपास था। एंड वो, मतलब टू बी ऑनेस्ट, देखा

0: जाए तो एक बहुत ही स्टेबलाइज्ड मार्क है, एंड आई कुड हैव डन बेटर, बट कोई बात नहीं, यू शुड बी हैप्पी विथ योर मार्क्स.
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: एंड टू बी ऑनेस्ट, कॉम्पिटिशन का ज़माना है, तो इसमें आपका बींग ए जनरल, एज ए जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, सबके लिए सेम ही होगा. कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है अभी, एंड वो चीज़ को मतलब कोप अप करने के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, बिकॉज विदाउट स्टडी यू आर नथिंग. बिकॉज जो भी लाइन में जाइए आप, उसमें पढ़ना तो पड़ता ही है.
1: जी. तो आपने जैसे कहा है कि आपका जो एक गोल होता है सबने सोचा होता है, लेकिन आपका क्लास 11-12 के बाद आपने सोचा था उसके बारे में,
0: जी
1: तो यही हमें समझ में आता है कि हर सपने की तो एक शुरुआत होती है. तो आपकी जो शुरुआत है वो 12 के बाद हुई है बोल सकते हैं. तो आपके लिए ये जो डॉक्टर बनने का जो सपना है, ये कब और कैसे एक सीरियस गोल बन गया?
0: देखिए, मैं 12 से पढ़ाई तो स्टार्ट किया था, लेकिन मेरा ये गोल बचपन से था. जब मेरा मम्मी का एक मतलब कंडीशन था एस्थमा बोल के,
1: जी
0: तो उसमें मेरा मम्मी का मतलब कभी कभी मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता था, एंड मेरे को बहुत डर लगता था यह चीज़ देख के. एंड वो मतलब थोड़ा सा सीरियस कंडीशन है, वैसे भी मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च किया था गूगल में, एंड इट वॉज़ रियली ट्रॉमेटाइजिंग कि इसमें मतलब बहुत रिस्क है,
1: जी जी
0: एंड हार्ट कंडीशन भी इसमें बहुत कुछ कर सकता है. तो मेरे को लगा था कि इस देयर ए वे टू सेव माई मदर इन फ्यूचर, अगर कुछ हो जाए तो. तब से मेरे को मतलब एक मतलब दिल में बैठ गया कि आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर, ठीक है. एंड सिर्फ मेरी मम्मी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इन मतलब नीड चाहिए.
1: जी
0: एंड टू बी ऑनेस्ट बोला जाए तो मेरे इलाके में, मैं जैसे कि मायबंग से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पर मतलब एक स्टेबलाइज डॉक्टर नहीं है अभी तक वहाँ पर उस इलाके में. तो उस जगह को भी तो पेशेंट केयर, उसके बाद
1: जी
0: मेडिकल जो भी चिकित्सा चाहिए होगा ना, तो उसीलिए आई थॉट कि सब लोग के लिए एक मतलब स्टेबलाइज डॉक्टर प्लस मेडिसिन प्लस फार्मेसी, ये सब का एक मतलब अगर कुछ इन फ्यूचर में कर सकूँ तो करूँगा.
1: जी
0: क्योंकि रिमोट एरियाज़ को तो कोई नहीं देखते, सिटीज़ में तो सब लोग आते हैं.
1: बिल्कुल
0: लाइक
1: बिल्कुल
0: अर्बन एरियाज़ में जाएंगे तो उसमें तो सब लोग को मिलता है, लेकिन ज़्यादा फंड्स देना पड़ता है. बट इन रूरल एरियाज़ में मतलब थोड़ा सा बैकवर्ड हो जाता है ना, लोग वहाँ पर रहते नहीं. अगर वहाँ पर कुछ सीरियस कुछ ट्रॉमा हो गया तो डायरेक्टली वहाँ पर ट्रांसफ़र करते करते मतलब इन रोड ही तो एक्सीडेंट हो सकता है ना कुछ.
1: हाँ जी
0: तो वो देख के मतलब मैंने सोचा कि ये एक सीरियस गोल बनाना चाहिए मेरे को, क्योंकि एज ए बैकवर्ड एरिया में ना ये सब डॉक्टर स्टेबलाइज करना थोड़ा सा हार्ड है, बट इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ मतलब सोच के रखा है. तो वो मतलब गोल लेके ही मैं मतलब आगे बढ़ रहा हूँ.
1: जी जी बहुत अच्छा लगा. और साथ में ये एक इमोशनल शुरुआत भी कह सकते हैं,
0: जी
1: अपनी
0: जी
1: मम्मी
0: जी
1: से शुरू हुई है आपकी
0: जी
1: ये जर्नी, और आपकी आगे की जो सोच है वो भी बहुत अच्छा लगा हमें सुन के. वैसे मैं जानना चाहूँगी कि आपकी जो पढ़ाई आपने स्कूलिंग वगैरह वो कहाँ से की है?
0: स्कूलिंग का मैं तो मायबंग से हूँ. मेरा क्लास 10 तक स्कूलिंग आपका एवरग्रीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुआ है.
1: जी
0: उसमें मेरा क्लास 10th में मैट्रिक में 96.5% आया था, एंड उसमें मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी था डिमासा डिस्ट्रिक्ट का.
1: जी जी
0: एंड इन फ्यूचर में जाके मैं नोगांव में रामानुजन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ा हूँ. उसमें मेरा मार्क्स 90% आया था परसेंटेज. एंड आफ्टर डैट आई गॉट ए चांस टू स्टडी इन जोरहाट सुपर 30. तो उसका मतलब क्या है, वो एक फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें आपको पहले एक रिटन टेस्ट देना पड़ता है या फिर CBT देना पड़ता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट.
1: जी
0: उसमें अगर आपको पास हुआ तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, मतलब उस इंस्टीट्यूट में मेडिकल के लिए. उसके बाद मैं वहाँ पर गया एंड आई पास द इंटरव्यू, एंड एज अ रिजल्ट आई वॉज रिक्रूटेड टू जोरहाट सुपर 30 फॉर ए फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग ऑफ 11 मंथ्स. एंड उसमें ओनली 50 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं पर ईयर जोरहाट का सेंटर में, एंड दैट वॉज ए रियली ग्रेट इंस्टीट्यूशन. उसमें बहुत कुछ सीखना पड़ा मेरे को, एंड थोड़ा सा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता था लिटरली, क्योंकि वहाँ पर आपका 2 मंथ्स में एक बार पेरेंट्स आ सकते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं जा सकता, मे इट बी दुर्गा पूजा और एनी फेस्टिवल. एंड हमको भी फ़ोन भी नहीं दिया जाता, ओनली 15 डेज में एक बार कभी कभी फ़ोन देता था, ठीक है. तो उसके लिए मतलब कनेक्शंस का प्रॉब्लम था, लेकिन हार्डशिप्स लीड्स यू टू सक्सेस. अगर
1: बिल्कुल
0: तुमको पढ़ना पड़ेगा तो डिस्ट्रेक्शंस नहीं चाहिए, अगर डिस्ट्रेक्शन है तो यू आर नथिंग. तो इस डिस्ट्रेक्शन से सेव होने के लिए हम लोग के फैकल्टीज ने, हमारे मैनेजर्स ने बहुत हेल्प किया. एंड ऐसा नहीं है कि मैं मतलब क्लास 10 क्लास 12 के इससे कुछ नहीं सीखा हूँ, वहाँ पर भी बहुत कुछ सीखा हूँ. एंड उसी रीजन्स के लिए आज मैं यहाँ पर ट्राइंग टू बिकम ए फ्यूचर डॉक्टर बनने के जा रहा हूँ.
1: बहुत अच्छा लगा सुन के. आपने जो सारी चैलेंजेस फेस करके, लेकिन चैलेंजेस आपको सक्सेस तक पहुंचाई है वो बात है, फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आपने कहा है वहाँ पे रह के कोई भी फंक्शन हो कुछ भी हो आपको आने का वो रूल नहीं था, तो आपने बहुत सेक्रीफाइस किया है, फिर भी वहाँ पे जो अपनी पढ़ाई को किस तरह से प्लान और मैनेज किया है आपने?
0: नीट के बेसिस में बोलूँ तो मतलब एज ए डिफिक

0: डिफिकल्टी लेवल में बोलूँ तो नीट तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है,
1: जी
0: थोड़ा सा
1: जी
0: नहीं बहुत ही डिफिकल्ट है। पहले यूपीएससी आता है, उसके बाद जेई आता है, क्योंकि उसमें कंपटीशन ज़्यादा है। लेकिन हमारे में केस क्या है, नीट मतलब बहुत सारे स्टूडेंट देते हैं।
1: जी
0: इस बार का कंपटीशन रेट 22 लाख एंड तुम्हारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट 60,000 है, तो उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सीट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट तो कंपेरिजन में बहुत डिफिकल्ट है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: वो कंपटीशन के लिए आपको चाहिए होगा स्टडी, एंड उस स्टडी के लिए आपको फॉर्म करना पड़ेगा एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक। और अगर वो टाइम मैनेजमेंट टेक्निक, वो रूटीन अगर आपका फॉलो नहीं हुआ तो कैसे हो सकता है।
1: जी
0: तो उसी लिए मतलब पहले से ही मैं जब गया था तब मतलब मेरा क्लास 12 में थोड़ा पढ़ाई कम हो गया था, इसीलिए वो कॉप अप करने के लिए मैं मतलब थोड़ा सा ज़्यादा स्टडी आवर्स का प्लान स्टार्ट किया। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं स्टूडेंट्स के व्यू पॉइंट से ये बोलना चाहूँगा कि रूटीन तो बनाओ, लेकिन वो मतलब फॉलो करना वो सबसे बड़ा डिफिकल्ट जॉब होता है। इन फ्यूचर
1: जी
0: में जाके क्या होता है, अगर आपने 12 आवर्स 13 आवर्स का स्टडी प्लान बनाया, कि वो मतलब हमेशा नहीं होता। मतलब मैं भी ऐसा एक स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन में रह के भी विदाउट एनी डिस्ट्रेक्शन मोबाइल फ़ोन, मेरा मतलब वो 12 आवर्स 13 आवर्स का स्टडी कंटिन्यूअस स्टडी नहीं हो पाता था। तो बाहर में लोग जब पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि बाहर में जाके नहीं होगा, बहुत लोग मेरे दोस्त भी है पीडब्ल्यू एलएन ये सबसे पढ़े हैं, उनका भी हो गया है, लेकिन वो डिस्ट्रेक्शन को साइड रखना पड़ेगा।
1: जी जी
0: तो वो टाइम मैनेजमेंट में आपको मतलब सब कुछ घुसाना है, मतलब खाना पीना नहाना एंड देन आपका पढ़ाई, उसके बाद मतलब सब कुछ में ना वो पढ़ाई को प्रायोरिटी देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ाई के बिना नहीं होगा। क्योंकि आपका जो बायोलॉजी का चैप्टर्स है वो 32 चैप्टर्स है, तो उसको हमेशा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा याद करने वाला टॉपिक्स है। एंड मतलब वो अगर एक चैप्टर को भूल जाओ तो वो फिर से पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है, तो आपको रिविजन के लिए बहुत टाइम चाहिए। अगर जितना जल्दी हो सके आपका सिलेबस खत्म होगा तो आपका टाइम मैनेजमेंट बचेगा, बाद में जाके आप एग्जाम्स दे सकते हो, डीपी भी दे सकते हो, तो इन फ्यूचर में आपके नीट के एग्जाम में ना आपको डर नहीं लगने वाला। 720 का मॉक टेस्ट हमेशा देना चाहिए था, हमारा यहाँ पर इंस्टीट्यूशन में 2 बार होता था एक दिन में,
1: जी
0: तो पूरा 1 महीने ऐसा चला। तो उसके बाद हमारा मतलब क्या हुआ, एग्जाम से डर हट गया। सबका एक एग्जाम से डर होता है कि लाइक क्या होगा क्या होगा, मेरा पूरा एकदम केयर फ्री माइंड था। एग्जाम हमने दिया है, बहुत दिया है, हमको मिलेगा इतना हमको पता था, एंड वी वर कॉन्फिडेंट एनफ। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो, वही
1: जी
0: बड़ी बात है।
1: जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सुन के। और जितनी बातें अभी बाकी है और भी अच्छा लगेगा मुझे लग रहा है।
0: जी,
1: अभी मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने जो सेक्रीफाइस किया है आपका सब कुछ, उसी दौरान आपको हो सकता है, हर किसी को चैलेंज तो आता है, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके तैयारी के दौरान आपको कौन सा ऐसा चैलेंज था जिसने आपको सबसे ज़्यादा सीखने का मौका दिया।
0: सीखने का मौका, हमारे यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस में 50 स्टूडेंट्स थे,
1: जी
0: एंड उनको भी मतलब मैं जैसे सिलेक्ट हुआ हूँ वो लोग भी सिलेक्ट होके आए हैं। मतलब उसमें क्या है, कंपटीशन तो बहुत पीक में रहेगा, हमारा बाहर के दुनिया के साथ कंपटीशन नहीं था, हमको भी पता ही नहीं बाहर में क्या चल रहा है।
1: जी
0: हम लोग को सिर्फ पता है कि मैं एक हूँ तो मेरे बाकी 49 जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ज़्यादा मेरे को मिलना है, तो उसके लिए हम लोग एक दूसरे के साथ हमेशा कॉम्पीट करते थे, और वो कॉम्पिटिशन ही हमको मतलब स्ट्रांग बनाता था हमेशा। लाइक मैं अपना रूममेट से एक बार कम मिल गया तो नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू डू 10 टाइम्स बेटर देन हिम।
1: जी
0: मतलब उसको दिखाता नहीं था कि मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन पढ़ने का तो एक मतलब इरादा है हमेशा कि मतलब उससे ज़्यादा मिलना है। हमारे बीच में मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग का बीच में दुश्मनी जेलसी ऐसा नहीं था, हम लोग के बीच में था एक कॉम्पिटिशन माइंडसेट था कि हम लोग इक्वली ग्रो करें। क्योंकि
1: जी
0: एक बात में क्या है, 50 स्टूडेंट के साथ क्या कम्पीट करेंगे, बाद में बाहर में तो बहुत सारे स्टूडेंट है ना, उनके साथ
1: बिल्कुल
0: में सीट कम्पीट करेंगे। हमारा जो मैनेजर था वो हमें हमेशा बोलता था हमें कि डोंट फाइट विथ योर सेल्फ, तुम लोग सब दोस्त हो, तुम लोग सब टीम हो, एज ए बाद में जाकर मेडिकल कॉलेज में तुम लोग को ही सीट मिलने वाला है, क्योंकि 50 के 50 तुम लोग सिलेक्ट होके आए हो। तुम्हारा कंपटीशन बाहर के साथ है, अंदर के साथ नहीं है। तुम अंदर के साथ कॉम्पीट करो बट ग्रो करने के लिए कॉम्पीट करो, कभी मतलब एज अ जेलसी इसको सीट ना मिले उसका धुआं कभी मत करना, ठीक है।
1: जी
0: वो मतलब क्या है कि एक दोस्ती में हमेशा रहता है, एंड मतलब थोड़ा सा यूनिटी कि मतलब मैं मतलब कंप्लीटली मेरे दुनिया से कट हो जाऊंगा ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर फेस्टिवल्स होता था कभी कभी, 1-2 घंटे के लिए हमको फोन्स दिया जाता था कभी कभी, मतलब एक बार ही मिला था हमको मतलब फेस्टिवल्स में, एक बार बिहू में और एक बार दिवाली में, तब हमको आधा घंटा फोन दिया था, एंड तब हम लोग दोस्त के साथ कनेक्ट हुए इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ये सब में, उसके बाद अभी जाके हम लोग अभी भी कनेक्टेड है। तो मतलब ये है कि आपको एक गोल्स बना लेना चाहिए, आप जिस भी इंस्टीट्यूशन में रहे मेक गुड फ्रेंड्स, ठीक है। अकेला कभी मतलब एक कॉम्पिटिशन के दुनिया में मतलब जा नहीं सकते, वो मतलब थोड़ा
1: जी
0: सा डिफिकल्ट हो जाता है,
1: जी
0: तो
1: जी
0: मेक फ्रेंड्स एंड ग्रो विद देम।
1: जी जी बिल्कुल, ये बहुत सच बात है कि हम लोग जितना दुनिया देखते हैं उससे बहुत बड़ी है बाहर कंपटीशन की
0: जी,
1: दुनिया।
0: जी,
1: जी तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने प्रिपरेशन किया, एग्जाम दिया है, और जनरली हम देखें तो हर लोग जब कुछ प्रिपरेशन करते हैं, और नॉर्मली भी लाइफ में ना कोई टाइम ऐसा आता है कि आप डाउन फील करते हो
0: जी,
1: या कभी सेल्फ डाउट आता है, तो आपके प्रिपरेशन के दौरान कभी ऐसा प्रेशर या सेल्फ डाउट आया?
0: ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स।

0: ये वाला सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एज ए नीट एस्पिरेंट। मैं सब नीट एस्पिरेंट को ये बोलना चाहूँगा कि तुम्हारे 11 मंथ्स के या फिर 1 ईयर के जो मेडिकल का प्रिपरेशन है उसमें तुमको डाउनफॉल दिखेगा, मार्क्स
1: जी
0: में डिक्रीज दिखेगा, आपको मतलब गिव अप करने का बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। आज मेरा मार्क्स नहीं आया, शुड आई गिव अप, मैं और एक बार ड्रॉप दे देता हूँ। लेकिन वो बात क्या है कि और एक बार ड्रॉप का बात यह है कि आपको और एक साल वेट करना पड़ेगा एक सिर्फ नीट के सीट के लिए। उसके बाद वाला जर्नी तो और भी बाकी है, आपके 5.5 ईयर्स सिर्फ MBBS, उसके बाद आपको PG दे के 3 ईयर्स और पढ़ना पड़ेगा। मेडिकल कोर्स बहुत बड़ा है, 8 साल आपको पढ़ने के लिए लग जाता है, उसके बाद एक एस्टेब्लिश डॉक्टर बनने के लिए मोर 3 ईयर्स, वो बहुत डिफिकल्ट है ना। तो कभी आप ड्रॉप के बारे में मत सोचो, एक ड्रॉप इज एनफ। अगर आप उसमें अच्छे से पढ़ो तो आपको बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, डाउनफॉल सबका आता है, डिप्रेशन सबको आता है एंड सैडनेस बहुत आता है, इसीलिए बोला है कि दोस्त बनाओ। क्योंकि अगर आप लोग गिरे हो तो आपको कौन उठाएगा, आपका दोस्त उठाएगा, अकेले तो आप उठ नहीं सकते, या फिर आपके टीचर्स उठाएंगे। अगर
1: जी
0: टीचर्स लोग के साथ आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, हमारा बहुत अच्छा था क्योंकि हमारा टीचर्स लोग 50 स्टूडेंट्स को देखेंगे, तो उन 50 स्टूडेंट्स के लिए हम लोग के जो फैकल्टी मेंबर्स रहते थे वो हमारे हॉस्टल में ही रहते थे। हम लोग कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ पढ़ाई को लेकर या फिर पर्सनल लाइफ को लेकर, हम लोग सर के पास जाते थे एंड सर लोग हमको समझाते थे, एंड दोस्त लोग हमेशा मतलब सपोर्टिव रहते थे, चाहे वो गर्ल्स हो या फिर बॉयज हो, हम लोग सब कुछ डिस्कस करते थे। एंड हमेशा मतलब जब भी डाउन फेस करो तो हमेशा अपने पेरेंट्स के फेस को याद करो कि वो लोग ने जितना स्ट्रगल किया है उसके कंपैरिजन में अपना डिप्रेशन कुछ नहीं है। मैंने ऐसा बहुत टाइम देखा, मतलब मेरे 5-6 टाइम्स हुआ मेरा मार्क्स ड्रॉप हुआ है कुछ पर्सनल रीजंस के लिए। तब मैंने मम्मी पापा को बोल भी दिया है, अगर मेरा नीट खराब हो जाए तो आप लोग मेरे को गाली मत देना, ये सब मत करना। मम्मी पापा ने बोला, एट लास्ट यू आर आवर सन, कुछ नहीं होगा अगर तू नहीं भी सके, देयर इज अदर ऑप्शंस। बट कभी भी अपने आप को मतलब कमजोर मत समझ, खुद के ऊपर भरोसा रख बस। एंड दैट वॉज माई मोटिवेशनल स्पीच। एंड हमेशा मतलब मेरे को वो लाइन मेरे मम्मी से इतना अच्छा लगा कि मैंने वो अपने बिस्तर के ऊपर मतलब चिपका के रख दिया था वो चीज़ लास्ट डे तक, कि अपने आप को कमजोर मत समझ।
1: जी आपने बहुत अच्छा कहा है, ये बहुत इमोशनल करने वाली बात है आपने जो लास्ट में कहा है। और मैं आपको वैसे भी पूछने वाली थी कि इस पूरे जर्नी में आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट किसने किया है, तो
0: ऑफ
1: वो
0: कोर्स
1: जवाब मुझे ऑलरेडी मिल चुका
0: ऑफ
1: है।
0: कोर्स
1: जी तो अभी मैं ये जानना चाहूंगी कि आप जो वहाँ पे 1 साल हो या 2 साल, आपको जितना भी टाइम लगा हो, तो पढ़ाई के अलावा आप अपने लिए वक्त कैसे निकालते थे थोड़ा?
0: पढ़ाई के अलावा हमारे यहाँ पर मतलब क्या था, फोन तो नहीं थे, तो हम लोग क्या करते थे, पढ़ाई के अलावा हम लोग मतलब पढ़ाई का ही बात डिस्कस करते थे हमेशा। मतलब इतना भी नहीं, सब समय पढ़ाई का बात करने से थोड़ा सा प्रॉब्लम लग जाता है। हमारा जैसे संडे में क्लास नहीं होता था, हम लोग क्या करते थे, हमारे हॉस्टल में तो ज्यादा रूम्स था, हम लोग का हॉस्टल में एक रूम में 6-6 बंदे थे, तो हम लोग क्या करते थे कि हमारा एक कॉरिडोर था, वहां पर हम लोग मतलब बॉल लाए थे हमारे वार्डन को बोल के, तो उसमें मतलब क्रिकेट खेलते थे टाइम पास के लिए। संडेज में हमेशा नहीं मिलता था हमको टाइम, बिकॉज बाकी मंडे टू सैटरडे हमारा 5 बजे तक सुबह 7:30 से क्लास से चलता था, तो बाकी उसमें मतलब हम लोग टायर्ड हो जाते थे।
1: जी
0: लेकिन संडे को हमको टाइम मिलता था तो कभी कभी रिफ्रेश हो जाते थे खेल के, लेकिन ज्यादा नहीं खेलना है क्योंकि खेलने से उसके बाद आप पढ़ नहीं सकेंगे। क्योंकि हम लोग का मतलब खाना बहुत अच्छा था हॉस्टल में, टू बी ऑनेस्ट, तो उसमें मतलब अच्छा खा खा के हम लोग सो जाते थे दोपहर को। एंड कभी सबका टाइम अलग था, हमारा मतलब पढ़ाई में किसी का रात में पढ़ेंगे, कभी सुबह उठ के पढ़ेंगे, ऐसा टाइप का था, तो सब लोग एक दूसरे को उठाते थे, ये सब करते थे। तो रिफ्रेशमेंट में क्या होता था, हम लोग मतलब खाना खाने के बाद या फिर खाना खाने के पहले 10-20 मिनट ऐसे हम लोग बात कर लेते थे, लाइक हम लोग यहाँ से निकलने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर घूमने जाएंगे, यहाँ पर ये करेंगे, ये करेंगे, वहां जाएंगे। एंड ऐसा मतलब एक बॉन्ड बन जाता था हमेशा हमारे बीच में, मतलब लाइक हमेशा डिस्कस करना, तो हम लोग को ये नीट को अचीव करना ही पड़ेगा, ये छोटा सा बात है, नीट को तो अचीव करना पड़ेगा, फ्यूचर तो अहेड है, हम लोग उसमें जाके एंजॉय करेंगे। 1 साल अगर आपको कॉन्स्टेंट में रखा है कोई बड़ी बात नहीं है, बाद में फ्यूचर तो आपके लिए बहुत कुछ दे रहा है ना। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं फील कर रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी जो हमें एंजॉय कर रहा हूँ उसके हिसाब से बहुत बड़ा है। तो कभी मतलब लगा कि मतलब आपको हार्ड टाइम्स आ रहा है, तो कभी मत सोचना कि मेरे पास फ्यूचर में कभी अच्छा टाइम नहीं आने वाला, इट विल डेफिनेटली कम। आई एम ए बिग एग्जाम्पल एंड यू विल डेफिनेटली गेट इट।
1: जी, बहुत अच्छा लगा। और आपकी बातों से मुझे एक चीज़ समझ आया है कि आपने जो दोस्तों के साथ बॉन्ड के बारे में कहा है, वहाँ पे हर किसी के पढ़ने का टाइम अलग था, कोई किसी को जगाता था, फिर कोई जब सो
0: जी
1: जाता,
0: जी
1: एक टाइमिंग आप लोगों के बीच में बैलेंस था।
0: जी
1: तो इसी से समझ में आता है कि किसी के अंदर कोई एक दूसरे को लेकर जेलसी नहीं
0: नहीं
1: था,
0: जेलसी
1: एक
0: नहीं
1: साथ
0: था
1: आगे बढ़ना
0: जी।
1: है। जी बहुत अच्छा लगा ये सुन के। तो अभी आप ये बताइए कि जैसे अभी के टाइम पे ना, आपने हमें पहले बताया है ऑलरेडी कि अभी जो कंपटीशन है वो बहुत बढ़ गया है,
0: यस
1: तो आपके हिसाब से कई बच्चे ऐसे हैं वो लोग के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या सिर्फ मेहनत ही काफी है या फिर स्मार्ट प्रिपरेशन भी उतनी ही जरूरी है?
0: देखिए, आप घर में बैठ के खुद सेल्फ प्रिपरेशन करके भी आपको मिल सकता है। मेरे भी बहुत सारे दोस्त थे रामानुजन के ही, वो लोग घर में बैठ के PW ऑनलाइन कोचिंग या फिर कोई भी मतलब कोचिंग के बारे में आप

0: अगर आप बात कर लिए उनके साथ ऑनलाइन में, सिर्फ आपको एक चीज़ ही चाहिए, हमेशा हमेशा एक चीज़ ही चाहिए, ये प्रिपरेशन के दौरान डेडिकेशन। अगर आपके पास डेडिकेशन है फॉर 1 ईयर, फॉर द प्रिपरेशन, फॉर द टाइम ऑफ प्रिपरेशन, आपके पास वो डेडिकेशन है, तो आप अगर आप हार्ड वर्क करें या फिर स्मार्ट वर्क करें, फर्क नहीं पड़ता, डेडिकेशन आपको दोनों से लेके चला जाएगा। कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में डिफरेंस क्या है, मैं आज बोल देता हूँ। कि हार्ड वर्क में आपको 13 आवर्स पढ़ना है स्ट्रेट, क्या पढ़ रहे हैं आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, सिर्फ घुसाना है दिमाग में, वो है हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क क्या है कि आपको मतलब 6-7 आवर्स पढ़ना है, उसमें आप मतलब इंपॉर्टेंट चीजों को आप दिमाग में घुसा देते हैं। लेकिन सबके पास वो स्मार्ट वर्क वाला एबिलिटी नहीं होता, आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ता है। वो हार्ड वर्क में आपको मतलब क्या चाहिए, एक मतलब रिचुअल चाहिए, आपको डेडिकेशन चाहिए। एंड ये नहीं है कि स्मार्ट वर्क में डेडिकेशन नहीं चाहिए, स्मार्ट वर्क क्या है कि थोड़ा सा आलसी लोगों के लिए है स्मार्ट वर्क। टू बी ऑनेस्ट, मैं भी वो आलसी टाइप के कैटेगरी में ही पढ़ता था, थोड़ा सा मेरा स्लीप का ड्यूरेशन ज्यादा था, इसीलिए मैं अपने आपको मतलब वो स्मार्ट वर्क के टाइप के कैटेगरी में घुसा देता था। लेकिन एक्चुअली पढ़ना तो सबको ही पड़ेगा लास्ट में जाके, तो मतलब एवरी स्मार्ट वर्क के अंदर एक छोटा सा हार्ड वर्क हमेशा रहता ही है। ये नहीं है कि हमेशा स्मार्ट वर्क करके लोग को मतलब सक्सेस मिल जाएगा, नहीं, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा ही, एट लास्ट में जाके आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप स्मार्ट है तो नो डाउट आपको मतलब बॉन्ड स्मार्ट हो सकते हैं कोई लोग, वो लोग का मतलब बहुत अच्छा से ब्रेन फंक्शनिंग है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो थे वो लोग सब पढ़ते थे, सबको देख के पढ़ते थे, एक दूसरे को देख के पढ़ते थे, तो मतलब एट लास्ट में जाके सबका हार्डवर्क ही था। एंड एक चीज ही है मोटो हमेशा याद रखना, वो डेडिकेशन, वो डेडिकेशन चाहिए आपको मतलब पढ़ाई को लेके। एंड वो डेडिकेशन कैसे बिल्ड करना है ये आपको पता है, कोई ग्रो नहीं कर सकता वो अपने अपने अंदर के विल पावर को, उसको जगाने के लिए आपका खुद का डेडिकेशन है। यू शुड फॉलो योर माइंड नॉट अदर्स, दूसरे लोग बोले उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, खुद को फॉलो करो, डेडिकेशन बनाओ एंड यू विल गेट द आंसर।
1: जी जी, तो आपने हमें कहा आपके जो एक्टिविटी हॉबी पढ़ाई के अलावा भी आप लोग बहुत कुछ करते हैं, उससे लेकर आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमें कही है। अभी मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारे जो हाल ही में नीट को लेकर, पेपर लीक को लेकर काफी चर्चा हुई है, तो एक स्टूडेंट के नजरिए से आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं?
0: टू बी ऑनेस्ट, मैं ये चीज़ को लेके थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रक्ट हुआ था। फर्स्ट में मेरा नीट का मैंने जो बोला ही था आपका 650 आया था मेरा। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मेरा किस्मत अच्छा था तो मेरा एक स्टेबल मेडिकल कॉलेज या फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में मेरा एक एडमिशन हो जाता उस वाले मार्क्स से। क्योंकि 650 आउट ऑफ 720 इज अ वेरी ग्रेट मार्क, मतलब सबको लगता है। एंड बात यह है कि वो वाला एग्जाम में मतलब थोड़ा सा एनटीए का नेग्लिजेंस था, बट कम्प्लीटली हम लोग एनटीए को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो एनटीए ने नहीं करवाया था पेपर लीक, वो तो उसके अंदर काम करने वाले लोगों का रीजंस था। सब लोग के हाथ थे, इंटरनेट वर्क, उसके बाद टेलीग्राम से ये सब होके किया, मतलब ये हो गए। उसके बाद हम लोग को मतलब जब पता चला कि नीट कैंसिल हो गया है, कि दूसरी बार 21 जून को एग्जाम है, तो उसके बाद एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, मैं कोई पॉलिटिकल हिसाब से ये नहीं बोलना चाहता, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या करना चाहिए था? जो जो लोग मतलब मैं उसका बेनिफिट्स बोल देता हूँ, जो जो लोग जैसे मेरे दो दोस्त थे वहाँ के, उनका क्या हुआ था कि एग्जाम्स खराब हुआ था, बींग ए जनरल उनका मतलब एग्जाम कम्परेटिवली खराब हो गया था, और एक का रोल नंबर जो इनपुट किया था उसमें ही गलत हो गया, तो उसका वो वाला नीट बहुत खराब हो गया। हम लोग उस दिन बहुत चिल्लाए थे, नीट के एग्जाम के दिन हमारे इंस्टीट्यूशन में पूरा हल्ला था, सबका अच्छा मार्क्स आ रहा था, बहुत लोग एम्स जाने वाले थे, मतलब कैटेगरी वाइज से देखे तो सब बहुत लोगों का अच्छा हुआ था, 600+ ऑलमोस्ट हमारा 30 लोगों का आ रहा था, तो उसमें मतलब बहुत खुश थे। लेकिन वही एक चीज़ था, हमारा एक दो दोस्त का ऐसे हो गया, रोल नंबर में गलती हो गया। हम लोग इतना एग्जाम दिया, हम लोग इतना 140+ एग्जाम्स दिए हम लोग मॉक टेस्ट, उसके बाद भी रोल नंबर इनपुट वो OMR शीट में वो गलती हो गया, तो ये सबके साथ हो सकता है। तो उसको क्या हुआ, भगवान ने एक चांस दे दिया रीनीट के टाइम में, क्योंकि लोग जो लोग नीट नहीं उनका खराब हो गया नहीं हो सकता, जिनका अच्छा हुआ है वो लोग फिर से अच्छा कर देंगे, कोई बात नहीं है, क्योंकि वो लोग पढ़े हैं। जिनका खराब हुआ है उनको एक चांस मिल गया, वो लोग ठीक करो
1: जी,
0: ठीक है, वो मतलब एक ऑप्शन, मतलब उसको नेगेटिव हिसाब से बहुत लोग देख सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग के 10 डेज मैंने भी बहुत नेगेटिव देखा, आई वाज होपिंग कि वो फिर से ठीक हो जाए, फिर से ठीक हो जाए। बट टू बी ऑनेस्ट, मतलब क्या था, मतलब जो लोग डिजर्व नहीं करते ना उनको सीट मिल जाता, क्योंकि वो लोग को पेपर मिल चुका है ऑलरेडी। एंड ए लॉट ऑफ पीपल वुड हैव, मतलब जिनको मिलना चाहिए वो लोग को नहीं मिलता, एंड वो फेक लोग जो मतलब वो लीक लेके कर दिया उनको मिल जाता सीट। एंड दैट इज टोटली नॉट, मतलब एज ए मतलब रूल्स के हिसाब से नहीं है, क्योंकि इन फ्यूचर में जाके उन लोग को डॉक्टर बनना है, अगर वो लोग ये सब चीटिंग करके आए तो वो लोग तो पेशेंट्स को मारने के लिए थोड़ा सा भी नहीं सोचेंगे।
1: बिल्कुल,
0: दे विल टेक द ब्राइब, दे विल किल द पीपल, बिकॉज हम लोग तो इन इंडिया वी थिंक डॉक्टर्स एज ए गॉड, सेकेंड गॉड, ठीक है, भगवान का कोई नहीं ले सकता, ले कैसे हो सकता है ये सब। तो इसीलिए एज ए स्टूडेंट पॉइंट

0: ऑफ व्यू वो जो रीनिट की करवाया वो ठीक है, उसके बाद बहुत कुछ एडुकेशन प्रोटेस्ट ये सब हुआ, वो साइड हटाओ। जब पता चला कि रीनिट आने वाला है, तब जो स्टूडेंट्स को पहली बार चीज़ करना चाहिए था उनको कि फिर से पढ़ने लग जाओ, कोई बात नहीं है, 1 महीने और है। एंड जेन्युइनली मेरे को भी बहुत खराब लगा था, क्योंकि वो 21st, तो वो मतलब दुख लगा था मेरे को, बहुत खराब लगा था कि एग्जाम के दिन ही मेरा बर्थडे है। तो मैंने वो नेगेटिव हिसाब से नहीं लिया, क्योंकि क्या है, क्या मैं भी पता हमारा पेपर फिर से आए एंड आई गेट अनदर चांस टू गेट, मैंने उसमें मतलब क्या था, मैं 50-50 चांस था एम्स का, तो इस बार दे के फिर से मेरा क्या पता हो जाए, नहीं हो रहा, बट कोई बात नहीं, वाई नॉट ट्राई। हमेशा एक मतलब होप्स लेके रखना चाहिए कि यू गेट अ सेकेंड चांस, सीट तो आपको मिल रहा है ना, तो यू गेट अ सेकेंड चांस, यू ट्राई टू इम्प्रूव। अगर तुम्हारा लक हमेशा साथ नहीं देता ना, तो मेरा लक थोड़ा सा फेवर नहीं किया, कोई बात नहीं, दूसरों का तो फेवर किया, मेरा एक दोस्त का वो जो रोल नंबर खराब हो गया था उसका, उसका तो हो गया इस बार,
1: जी
0: तो आई वॉज हैप्पी कि मतलब सीट एट लास्ट सबको मिल रहा है। एंड आई एम मतलब क्या बोलता है, इन फ्यूचर में जाके अगर इस बार मेरे को एम्स में मतलब चांस नहीं मिला, इट्स ओके, मैं पीजी में जाके, नीट पीजी में जाके एम्स में ट्राई करूंगा, गुड रैंक लाके उसमें पढ़ूंगा जाके, स्पेशलॉजी तब करूंगा,
1: जी
0: एंड इट्स नॉट ए हार्ड थिंग, सिर्फ पढ़ना पड़ता है, दैट्स इट।
1: जी तो अभी हमने बहुत आपके चैलेंजेस के बारे में बात किया है, फिर आपके पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में हमने बहुत कुछ जाना है। अभी मैं आपके फ्यूचर के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी। जैसे आपका नीट क्वालिफाई हो चुका है,
0: जी जी
1: तो आगे के इस नए सफ़र को लेकर आप क्या सोच रहे हैं?
0: तो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक एस्टाब्लिश डॉक्टर बनना है एंड रूरल में जाके पीपल्स को हेल्प करना है इंटर्नशिप के टाइम में, या फिर जो भी हो, फ्यूचर में जाके कार्डियोलॉजिस्ट बनने का सपना रखा है, खुद का एक मतलब इसमें रखूंगा, क्या बोलते हैं, खुद का एक नर्सिंग होम रखूंगा जिसमें कॉस्ट थोड़ा लो होगा, पीपल के लिए हेल्प होगा, वही जो एज ए बेसिकली सब लोग अपना एक सोच के करते हैं कि फ्यूचर में जाके सबको हेल्प करेंगे, वही एक होप है, एंड लेट्स सी फिंगर क्रॉस क्या होता है।
1: जी, बहुत अच्छा लगा आपके फ्यूचर गोल्स के बारे में सुन के। तो अभी हम धीरे धीरे हमारे कार्यक्रम के अंत में पहुंचने वाले हैं।
0: जी
1: आखिर में मैं आपसे चाहूंगी कि आप उन सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इसी सपने को लेकर मेहनत कर रहे हैं।
0: देखिए, एक ही चीज़ बोलूँगा कि डेडिकेशन बरकरार रखना एंड कभी अपने आप को कमज़ोर मत समझना, पढ़ाई को लेके कभी डाउट नहीं करना चाहिए, ठीक है, पढ़ाई जब भी कर सकते हो करो, कभी सो रहे हो तब थोड़ा सा सोच के कर लो कि मतलब क्या होता है, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, तुम्हारे रिलेटिव्स के बारे में सोचो, वो लोग भी सब लोग क्या होप्स लेके रखे हैं, एंड अपना फ्यूचर के बारे में सोचो यार, हमेशा मतलब घर में बैठ के वो बिस्तर में सो के कुछ नहीं होने वाला, इन फ्यूचर में जाके आपको कुछ तो एस्टेब्लिशमेंट लाना है ना, फ्यूचर में जाके आपके पेरेंट्स के मुंह पे स्माइल देखना है, तो वही लेके डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ो, हमेशा कुछ एक सक्सेस आएगा ही, भगवान देखेगा एंड ही विल क्लियर आउट, दैट्स इट।
1: जी, सिद्धांत बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और आपके जो फ्यूचर गोल्स आपने कहे हैं, हम आशा करते हैं कि आपके जो आने वाली मेडिकल जर्नी है वो सफल रहे, और
0: थैंक
1: उसके
0: यू
1: लिए आपको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं हमारी
0: थैंक
1: तरफ
0: यू
1: से।
0: थैंक यू
1: आप अपने सभी सपने की तरफ ऐसी ही डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते रहे।
0: थैंक यू
1: जी, और मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे स्टूडियो पे आए, हमसे इतनी सारी बातचीत शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू
1: जी तो श्रोताओं, आज की इस बातचीत में हमने सिर्फ एक नीट सक्सेस स्टोरी नहीं सुनी, बल्कि उसके पीछे की मेहनत, चैलेंजेस, सपोर्ट और एक्सपीरियंसेस को भी जाना। हम हमारे अतिथि को अपने सफर के इतने सारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमें उम्मीद है कि आज की हमारी बातें हमारे यंग लिसनर्स, स्पेशली नीट एस्पिरेंट्स को जरूर मोटिवेट करेगी। इसी के साथ आज के यूथ प्रोग्राम में मुझे यानी अंकिता को दीजिए इजाजत। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर। नमस्कार।
2: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे युवावाणी कार्यक्रम। कार्यक्रम को प्रस्तुत की थी अंकिता पाल ने। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। आइए थोड़ी देर में सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का

0: समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। श्री मोदी ने किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। गृह मंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: गृह मंत्रालय ने केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम कर दिया है। ये बदलाव 25 अगस्त से लागू हो गया है। केरल का नाम बदलने से संबंधित विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा और अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ था। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे कानून का रूप मिल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्य वर्धन करना है। भारतीय नौसेना निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को 31 अगस्त को मुंबई में डॉकयार्ड में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
3: अब तक 9,13,000 से अधिक महिलाओं ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है और 6,52,000 से अधिक आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि वित्तीय सहायता अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। दिल्ली के वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। दिल्ली सरकार ने सभी पात्र महिलाओं से समय पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने का भी आग्रह किया है। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीद कर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने के विचार पर सहमत हो गया है। केंद्र सरकार ने याचिका में सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर से जुड़े उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत इसमें सुधार

0: और मजबूत बनाने से जुड़ी सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये छठी बैठक थी। ई श्रम पोर्टल के को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इस पोर्टल को शुरू किया था। इसके माध्यम से देश का पहला आधार आधारित राष्ट्रीय असंगठित श्रमिक डेटाबेस तैयार किया गया है। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने मीडिया को बताया कि देश में वर्तमान में फैल रहा इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। वर्तमान अवलोकन किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका की 9 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। कनाडा की 4 दिन की यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन वहां के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शॉपिने के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। अमरीका में वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क का दौरा करेंगी। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने अक्टूबर 2024 में कजान और पिछले साल अगस्त में तियाजिन में बनी सहमति को लागू करने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों से सीमा व्यापार समेत लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने का भी स्वागत किया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं विकास नापा।
0: भारत और न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों के बीच दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हुई। वार्ता में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और 2030 के रोड मैप के लक्ष्यों को पूरा करने पर विचार किया। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश में वृद्धि करने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और मोरक्को के बीच साझेदारी को अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कनाडा ने अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार विवाद के बीच 27 अरब 60 करोड़ डॉलर के अमेरिकी सामान पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया है। ये जवाबी शुल्क 8 सितंबर से लागू होंगे। गोवा के परनेम स्थित पत्रा देवी शहीद स्मारक का आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनावरण करेंगे। ये स्मारक गोवा के मुक्ति संग्राम में बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति और उनके योगदान को समर्पित है।
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि यह स्मारक उन 31 सत्याग्रहियों की याद में बनाया गया है जिन्होंने 1955 में गोवा को भारत में शामिल करने की मांग को लेकर सत्याग्रह किया था। गोवा में प्रवेश की कोशिश के दौरान पुर्तगाली सैनिकों की गोलीबारी में उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्मारक परिसर में शहीदों की याद में मूर्तियां और अलग अलग संरचनाएं बनाए गए हैं। पत्रा देवी शहीद स्मारक शहीदों को श्रद्धांजलि देने, इतिहास को समझने और आने वाली पीढ़ियों को गोवा के मुक्ति संग्राम से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की उम्मीद है। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर अलग अलग जगहों पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उधर केरलवासी ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को ओणम के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि खुश

0: खुशियों और उल्लास का ये रंगारंग त्योहार पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने ईद मिलाद उन नबी की भी शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, केरलम और माहे में तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के बीच आज सुबह राज्य में भूकंप के झटके महसूस किए गए। शिमला में सुबह करीब 5:46 पर हल्के झटके आए जो कुछ सेकंड्स तक चले। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। फाइनल मैच प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना के बीच खेला जाएगा। शीर्ष 3 स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी अगले साल के ग्रैंड चेस टूर के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन से पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान की खबर है, देश में अब निजी कंपनियां भी मिसाइल का निर्माण कर सकेंगी। डीआरडीओ की तकनीक निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने की मंजूरी। अमर उजाला लिखता है, सरकार देगी तकनीक, निजी कंपनियां बनाएंगी मिसाइलें। इस फैसले से देश में ही मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकेगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, H1N1 संक्रमण के मामले बढ़े, स्कूलों को दी हिदायत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सीमा विवाद का समाधान तलाशने पर भारत चीन सहमत। एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की अगुवाई में हुई विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता। जनसत्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का कथन दिया है, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं होने देंगे। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर। स्कॉलरशिप से वंचित स्टूडेंट्स के लिए फिर खुलेगा पोर्टल, मेडिकल क्षेत्र में भी भत्ता बढ़ा। पंजाब केसरी ने 48 साल पहले की खौफनाक घटना को याद किया है, गीता और संजय के हत्यारे रंगा बिल्ला को आज भी नहीं भूली दिल्ली। 26 अगस्त 1978 को मासूम भाई बहन का अपहरण कर दोनों की हत्या कर दी गई थी। कल हुई मूसलाधार वर्षा पर दैनिक भास्कर ने लिखा है, थम गई दिल्ली, गुरुग्राम में सड़कें धंसी, हाईवे पर गहरा गड्ढा, एनसीआर में जलभराव से लगा जाम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। और दुनिया भर में ईद मिलाद उन नबी की रौनक, केरलमवासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोताओ, अभी आप हिंदी में समाचार सुन रहे थे। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है।

0: श्रोताओ, इसी गीत के साथ ही भक्ति गीतों कार्यक्रम यही समाप्त होती है। ये ही आकाशवाणी की हाफलोंग केंद्र है।
1: हेलो हाफलोंग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हाफलोंग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलोंग।
2: हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM।
1: इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग।
0: श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के शिलोंग केंद्र से अंग्रेजी में पूर्वोत्तर समाचार।

0: declines from 46% to around 36% in past 3 years. And with that, we end the Northeast News Bulletin from Akashvani Shillong. Have a nice day.
1: श्रोताओं, अभी आप अंग्रेजी में पूर्वोत्तर समाचार आकाशवाणी के शिलोंग केंद्र से सुन रहे थे। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है।

0: লোকপিয়লৰ প্ৰথম পৰ্যায় গৃহ তালিকা আৰু গৃহপিয়ল অৰ্থাৎ আপোনাৰ ঘৰৰ গণনা হ'ব। আহক আপোনাৰ সহযোগিতাৰ দ্বাৰা ইয়াক সফল কৰো আৰু বিকশিত ভাৰত 2047ৰ দিশে আৰু এটা খোজ আগবাঢ়ো।
1: श्रोताओ, समय हो चला है शुरू के रंगोली कार्यक्रम का। आज के शुरू के रंगोली कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं हिंदी फिल्मी जगत के जाने माने गायक कलाकार जुबिन गर्ग के गाए कुछ बेहतरीन फिल्मी नगमे। देर न करते हुए आइए अब सुनते हैं शुरू के रंगोली कार्यक्रम।

दोस्तों अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हाफलोंग से शुरू कर रंगोली कार्यक्रम। आज सुन रहे हैं जुबिन गर्ग के गए कुछ बेहतरीन फिल्मी नगमे। कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं और कुछ नगमे।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही सुरों को रंगोली कार्यक्रम यही समाप्त होती है। ये आकाशवाणी के हफलोंग केंद्र है। आइए ले चलते हैं आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र, थोड़ी देर में सुनते हैं असमिया में पुअर आंचलिक बातोरी।

0: লোকপিয়লৰ প্ৰথম পৰ্যায় গৃহ তালিকা আৰু গৃহপিয়ল অৰ্থাৎ আপোনাৰ ঘৰৰ গণনা হ'ব। আহক আপোনাৰ সহযোগিতাৰ দ্বাৰা ইয়াক সফল কৰো আৰু বিকশিত ভাৰত 2047ৰ দিশে আৰু এটা খোজ আগবাঢ়ো।
1: श्रोताओं, समय हो चला स्थानीय गीतों कार्यक्रम का। आइए सबसे पहले सुनते हैं खेलमा कार्यक्रम। आज सुनते हैं कुछ खेलमा भक्ति गीत। आवाज़ है जॉन इलियाज़र हुलुंगो और उनके साथियों की आवाज़ में।

स्वतः जॉन इलियाजर लुंगो और उनके साथी के गाए इसी भक्ति गीतों के साथ ही खेलमा गीतों का कार्यक्रम यही समाप्त होती है। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं रंगोल कार्यक्रम। आज सुनते हैं कुछ रंगोल लोकगीत। आवाज है सोंगलियन रंगोल और उनके साथियों की आवाज़ में।

Alhamdulillah.

संगलियान रंखोल और उनके साथियों के गाए इसी लोकगीत के साथ ही रंखोल गीतों का कार्यक्रम यही समाप्त होती है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं जयंतिया कार्यक्रम। थोड़ी देर बाद

श्रोताओं, एंजेलिन सुचियांग और उनके साथियों के गाए इसी भक्ति गीतों के साथ ही जयंती गीतों कार्यक्रम यही समाप्त होती है। ये आकाशवाणी के हावलोंग केंद्र है। आए आप सुनते बेते कार्यक्रम। आज सुनते कुछ बेते भक्ति गीत। आवाजें हैं जेनी आर नगमलाय और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओ, जेनी आर नगमला और उनके साथियों के गाए इसी भक्ति गीतों की साथी बेते गीतों कार्यक्रम यही समाप्त होती है। ये आकाशवाणी के हफलों केंद्र है। श्रोताओ, आइए अब ले चलते हैं आपको आकाशवाणी के मुंबई केंद्र और सुनते हैं विद भारती के कार्यक्रम।

0: बीते हफ्ते हमने आपकी मुलाकात करवाई थी एक युगल से। जी हाँ, ये हैं जाने माने अभिनेता यशपाल शर्मा और उनकी पत्नी प्रतिभा शर्मा। इनसे बातचीत ममता सिंह ने की थी और बातें अधूरी रह गई थी, तो चलिए इन बातों को आगे बढ़ाते हैं इस बातचीत के इस दूसरे और आखिरी भाग में।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आज विविध भारती के स्टूडियो में एक मशहूर कलाकार जोड़ी की आमद है। वो हैं मशहूर अभिनेता यशपाल शर्मा जी और उनके साथ हैं उनकी शरीके हयात प्रतिभा शर्मा जी। यशपाल जी नमस्कार, प्रतिभा जी नमस्कार।
2: नमस्कार,
3: नमस्कार, नमस्कार।
2: शुक्रिया।
1: श्याम बेनेगल साहब के साथ प्रतिभा जी आपने कुछ फिल्में की हैं, हरी भरी।
3: यशपाल ने भी की है। हाँ, मैंने हरी भरी की थी।
1: तो आप अपनी यादें साझा कीजिए, श्याम बाबू के साथ काम का अपना अनुभव साझा कीजिए।
3: मुझे याद है जब उन्होंने मुझे बुलाया था पहले, मतलब वो रोल बिल्कुल छोटा सा रोल था लेकिन उन्होंने मुझे उस तरह से समझाया और उस तरह से उसको एक्सप्लेन किया कि जैसे कि वो मेन रोल है फिल्म का।
1: जी जी जी,
3: ये उनकी खासियत थी। तो हर एक एक्टर को ना वो इस तरह से ही करते थे कि जैसे कि उस एक्टर का ये रोल जो है वो इतना इम्पोर्टेंट और इतना मेन

0: और हम चलते हैं असहजता की ओर। यशपाल जी ने बचपन की बहुत सारी यादें साझा की,
1: जी
0: तो आप बताइए अपना बचपन, आपका बचपन कैसा था?
1: हाँ, ऐसे ही हमारा वही
0: खेल
1: आम की
0: वाले,
1: गुठलियाँ
0: आम की
1: वगैरह, हम भी
0: गुठलियाँ वाले।
1: खेलते थे वो सारी चीजें गलियों में, जब कीचड़ से सन जाते थे सारा, और वो जो एक सलाई होती थी उसको ऐसे गाड़ना, और उस
0: मिट्टी में।
1: वो वाला खेल तो हम
0: अच्छा
1: खूब खेले, खो खो, संगीत कुर्सी, ये सारे खेल हम खेलते थे।
0: तो घर पे डांट नहीं पड़ती थी, क्योंकि उस समय तो
1: अरे,
0: लड़कियों
1: मार
0: की मनाही
1: पड़ती थी,
0: बहुत होती
1: डांट
0: थी।
1: किधर पड़ती
0: तो बताइए ना वो एक आध किस्सा, किसी
1: थी।
0: दिन दौड़ के खेल के आई हो और मार पड़ी हो।
1: स्कूल के लिए मुझे ना साइकिल सीखनी थी, कुछ पैसे देके साइकिल सीखनी पड़ती है, तो वो साइकिल मैं सीख रही थी, तो मेरे पापा ने ना देख लिया मुझे, तो मैं गिर गई साइकिल से, और सुबह तक मेरा पैर इतना
0: सूजा
1: सूज
0: था।
1: गया
0: ओह
1: था। तो मैं मतलब सुबह मैं जब उठी तो पापा ने देखा मेरा पैर इतना बड़ा सूजा हुआ है, तो उन्होंने बोला क्या हुआ, इतना बड़ा क्यों सूज गया पैर? तो मैंने कहा वो मैं गिर गई थी वहां पे, वो पत्थर था,
0: वगैरह।
1: कुछ ऐसे झूठ बोल दिया। तो वो ना सीधे उस सूजे हुए पैर पे खड़े हो गए और मुझे बोल रहे झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, मतलब इतना, मतलब कि झूठ नहीं बोलना है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: इस तरह का।
0: नैतिकता बहुत
1: हाँ,
0: सिखाई
1: बहुत
0: जाती
1: सिखाई
0: थी
1: जाती
0: बचपन
1: थी।
0: में।
1: माँ
0: जी
1: बाप
0: अच्छा,
1: दोनों टीचर थे।
0: मेरे माँ
1: कौन
0: बाप
1: से गांव की
0: दोनों?
1: बात है ये? ये जलगांव के पास एक गांव है कासोदा, वहाँ
0: जी,
1: गांव की बात है।
0: तो अपने माता पिता से फिर वो नैतिकता की शिक्षा लेकर आई, अपने बच्चों को सिखाया, कितनी मुश्किल पड़ी।
1: मोबाइल की जनरेशन है ये, यहाँ नहीं सिखाई जा सकती नैतिकता की बातें, लेकिन फिर भी कोशिश जारी रही मेरी उनको, मतलब जैसे मैं स्पिरिचुअल चीज़ों में थी तो मैं उनको लेके जाना वहाँ पे, मेडिटेशन ये वो सारी चीज़ें थोड़ा मैंने दिया, वो सब कुछ उनको।
0: जी, तो कौन सा गाना यहाँ पर आना चाहिए?
1: गुलजार साहब की जो वो फिल्म है मेरा कुछ सामान,
0: तो सुनते हैं यही गाना।

0: गाने के बाद फिर यशपाल जी की ओर चलते हैं।
1: मेरा कुछ सामान गाने में एक लाइन है, 116 चांद की रातें वो लौटा दो, तो गुलजार साहब के चार नाटक मैंने किए हैं लिखे हुए, तो वो हमारे साथ रहते थे इसलिए बहुत करीब रहे। तो लखनऊ में शो था उर्दू एकेडमी में, तो उसके बाद डिस्कशन थी, तो एक शरारती तत्व किसी ने पूछा गुलजार साहब से कि सर वो जो गाना है इजाजत में मेरा कुछ सामान, उसमें एक लाइन है 116 चांद की रातें, सर वो 116 ही क्यों है? तो गुलजार साहब बोले कि बेटा वो 117 थी, मुझसे गलती हो गई। भाई इतना ठहाका हॉल के अंदर और इतने हंसी, क्या कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है बाप रे गुलजार साहब का।
0: ऊपर से जितने गंभीर दिखते हैं, हमने सुना है गुलजार साहब काफी ह्यूमरस बातें भी करते हैं।
2: नहीं नहीं, बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है उनका, कमाल
0: जी। आपके बहुत सारे किरदार में, कहीं बेबसी है, कहीं एक इंस्पेक्टर है बेबस है, कहीं लाचारी भी है, और कहीं नकारात्मक किरदार निभाया है, और कहीं कॉमेडी है। तो ये जो किरदार की विविधता है, इन सारे किरदार की विविधता को कैसे आप मेंटेन करते हैं, कैसे आप भीतर तक ले जाते हैं, कोई राज की बात बताइए, हमारे बहुत सारे श्रोता सीख रहे होंगे। जो
1: नहीं, देखिए कई बार ना एक रिजिडिटी आ जाती है ना एक्टर के अंदर अगर, और वो बाहर की चीज़ें ग्रहण ना कर पाए तो फिर वो मोनोटोनस हो जाता है लाइफ, हर रोल में एक जैसा दिखता है
0: जी।
1: तो रिजिडिटी नहीं आनी चाहिए, आपको एक पात्र की तरह, घड़ा एक पात्र है जैसे, खाली रहना बहुत ज़रूरी है, सरेंडर करना, मतलब आपके कोई करेक्टर आए तो आप अपने आप को यशपाल को सरेंडर कर दो थोड़ी देर, जितना हो सकता है कोशिश करना चाहिए, वैसे तो नहीं हो पाएगा पूरा, तो क्योंकि यशपाल के बॉडी है, आवाज़ है, हाव भाव हैं, इतने साल हो गए उसकी कुछ आदतें हैं, वो तो रहेंगी, लेकिन स्क्रिप्ट बता देती है कि आपको क्या करना है
0: जी।
1: तो इसलिए जो कहानी है और स्क्रिप्ट है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए किसी भी आर्टिस्ट के लिए, किसी भी डायरेक्टर के लिए, किसी भी कैमरामैन के लिए, ना कि कोई स्टार, क्योंकि स्टार को देख करके कई लोग डर जाते हैं या अपने आप के आइडियाज चेंज कर देते हैं ना, वो बहुत गलत है।
0: बिल्कुल
1: स्ट्रिक्ट रहना चाहिए स्क्रिप्ट के ऊपर, क्योंकि मैंने कुछ स्टारों की फिल्में बर्बाद होती हुई देखी हैं इसी चक्कर में कि

0: स्टारों के प्रभाव में डायरेक्टर और कैमरामैन आ जाते हैं, तो उस चक्कर में वो फिल्म बर्बाद हो जाती है
1: जी। क्या
0: अगर वो बिल्कुल अपनी कहानी पे रहें और अपना करें, और बहुत सारे डायरेक्टर हैं ऐसे, चाहे कितना ही बड़ा स्टार आ जाए, मेरी कहानी ये है तो यही रहेगी, तो वो सफल भी हैं, वो अच्छा काम भी करते हैं, और ज़्यादातर लोग तो ये विविधताएं जो हैं करेक्टर्स की, ये स्क्रिप्ट देती है आपको। स्क्रिप्ट पढ़ के पता चल जाता है कि ये किस ओर जा रही है, ये कॉमेडी की तरफ जा रही है, ये वेलकम टू द जंगल टाइप है, या ये गंगा जल टाइप है, या लगान टाइप है, या इसका जॉनर क्या है।
1: जी जी,
0: तो वो सारा पता चल जाता है पढ़ते पढ़ते, तो आदमी फिर उसी दिशा में काम करता है
1: जी,
0: बाकी दिशाएं सब छोड़ भूल जाता है
1: जी। वेलकम टू दी जंगल का जिक्र किया, तो ये इसके बारे में जरा बताइए हमारे श्रोताओं को।
0: मल्टी स्टारर फिल्म है, इसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, राजपाल यादव और हाँ जैकी श्रॉफ और फरीदा जलाल, जैकलिन फर्नांडिस, दिशा पटानी और रवीना टंडन और मुकेश तिवारी और कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक और दलेर मेहंदी, और बाप रे बहुत लोग हैं इसमें।
2: राजपाल
0: राकेश देशमुख हैं।
1: आपकी कैसी
0: हमारी भूमिका, हमें भी नहीं पता अभी तक, वो देखने के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि सच में कुछ नहीं पता, क्योंकि ये फिल्म ही ऐसी बनी है। मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि ये फिल्म कैसी बनी है, क्योंकि इसमें ना कोई कहानी ऐसा कुछ हमको नहीं सुनाया गया।
1: हाँ हाँ।
0: बस हमको खड़े हो जाओ, यहाँ पे ये करना है, ये मूव करना है, ये बोलना है, ये बोलना है, हमने बोल दिया, बस खत्म।
1: अच्छा।
0: और इसमें ऐसा कुछ करेक्टराइजेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस धमाका है और धमाकेदार फिल्म है, और अक्षय कुमार ने फिर से एक बार वर्सटाइलिटी की है एक्टिंग, बड़ी वेराइटी है उसकी एक्टिंग में, और बड़ा अच्छा मुझे सुनील शेट्टी के साथ भी, इनके साथ एक नया अच्छा काम करने को मिला काफ़ी देर तक, परेश रावल जी के साथ, बड़े सीनियर एक्टर हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। और ये 26 जून को रिलीज है, अहमद खान डायरेक्टर हैं इसके, और वेलकम दो तो आ चुकी हैं, एक और दो, तो ये वेलकम थ्री है मान लो, वेलकम टू द जंगल
1: जी। अब आपकी उन फिल्मों का हम जिक्र करते हैं जो काफी चर्चित हैं और जिसमें आपने खास तरह की भूमिका निभाई है, वो है अब तक 56, जिसमें आप इम्तियाज सिद्दीकी सब इंस्पेक्टर।
2: मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है।
1: क्या बात है, प्रतिभा जी की फेवरेट फिल्म। और फिल्म धूप है, इंस्पेक्टर राम सिंह मलिक बने हैं, आजा नचले इंस्पेक्टर साहेब, टशन में एसीपी कुलदीप सिंह बने हैं आप, वेल्डन अब्बा में पुलिस कांस्टेबल बने हैं, और इतनी बार पुलिस की,
0: ये आपने सारी पुलिस पुलिस वाली उठा ली फिल्म।
1: हाँ बिल्कुल, तो हम वही आ रहे हैं, हम ये नहीं जानना चाहते कि पुलिस की भूमिका निभाई तो कैसे मिली, ये नहीं, हम तो ये जानना चाहते हैं कि पुलिस की भूमिका हर फिल्मों में क्यों चुना गया, एक बात। दूसरी बात कि इसके लिए आपको कितनी तैयारी करनी पड़ी।
0: तो सारी फिल्मों में तो नहीं, वेल्डन अब्बा, धूप वगैरह में तो ज्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि इट वाज वेरी इजी फॉर मी, लेकिन हाँ अब तक 56 और एक कालकूट है वेब सीरीज, उसमें जो विजय वर्मा के साथ मैं पुलिस में हूँ, वो पूरी पुलिस की ही कहानी है एक्चुअली, तो इन फिल्मों में मुझे बहुत काम किया मैंने, मतलब काफी मेहनत करनी पड़ी, और क्योंकि ये करेक्टराइजेशन था, उसमें नाना पाटेकर थे सामने, तो आप अपने आप को बहुत बुढ़ा चढ़ा करके ओवर करोगे तो फेल हो जाओगे, इसलिए उसमें मैंने बहुत सब्ज्यू करके किया, कोशिश की मैंने पूरी फिल्म के अंदर कि मैं बहुत लाउड ना हूँ और जेन्युइन रहूं जितना हूं, और उसमें मैं सक्सेसफुल भी हुआ, तो नाना पाटेकर ने भी बहुत दी फिल्म देख के मुझे बहुत पीठ थपथपाई, गले लगाया और बोला कि तुम जान हो फिल्म की, रियली तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था ये रोल कि कोई कैसा करेगा, बड़ा डर रहा था मैं, बट यू हैव डन ब्रिलियंट जॉब, तो उन्होंने किया। फिर बाद में हमने अपहरण भी किया, तो इसमें क्या तैयारी करनी पड़ी मुझे बाकी।
1: तो रामगोपाल वर्मा के बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को, उनसे जुड़ी हुई कोई किस्सा बताइए, बहुत सारे किस्से हैं आपके पास।
0: बहुत ज़्यादा किस्से नहीं हैं, अब तक 56 में एक मेरी डेथ का सीन था, जो वो करने वाले थे डायरेक्ट, तो शमित अमीन को बोला कि मैं इसको कुछ करता हूँ देखता हूँ, तो हमने कुछ जंगलों में जा करके वो सीन शूट किया था बरसात में, और वो स्पॉन्टेनियसली हुआ था, लिखा हुआ नहीं था वो सीन, वो बस ऐसे ही बोले कि चलो करते हैं देखते हैं क्या होता है, और ऐसे ही हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि यशपाल यू विल बिकम अ वेरी बिग स्टार आफ्टर दिस फिल्म, देन विल यू डू माय फिल्म आल्सो अगेन, मतलब कुछ ऐसा बोला, मुझे समझ नहीं आया कि मतलब मेरे साथ मेरे साथ दोबारा काम करोगे। मैं बोला सर काहे टांग खिंचाई कर रहे हैं, अभी जुम्मा तो मैं खड़ा हुआ हूँ एज एन एक्टर, बस हो जाए फिल्म, हिट हो जाए फिल्म, अच्छी बन जाए, मैं तो इसी में खुश हूँ। तो एक बार मुझे हैदराबाद

0: बाद में मिले फिर, एक प्रोड्यूसर के साथ बैठे थे, तो यशपाल, मैंने कहा हाँ जी, अरे अरे, मैं कहा कहाँ बुलाया उन्होंने, एक फाइव स्टार कोई होटल था उसी में बैठे थे हम, तो वो नीचे बैठे थे तो मैं क्रॉस कर रहा था, तो उन्होंने बुलाया एक प्रोड्यूसर, मीट हिम, ही इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस इंडस्ट्री, तेलुगु इंडस्ट्री। मैंने कहा नमस्कार जी, नमस्कार, ही हैज डन अब तक 56 विद मी, यू शुड सी दैट फिल्म, व्हाट अ परफॉर्मेंस ही हैज डन,
1: क्या बात है।
0: तो मतलब इस तरीके से मिले, आई थिंक इन दिस फिल्म यू विल बी देयर, ऐसे बोल के चले गए, बाद में कभी बुलाया नहीं।
1: क्या बात है। अब यहाँ पर एक गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुना है।
0: याद है तुमको तूने कहा था तुझे नहीं लूटेंगे, क्या कौन सा गाना है, बिगनिंग क्या है इसकी,
2: क्या हो?

0: क्या बात है, बहुत बढ़िया गुनगुनाया प्रतिभा जी आपने। ये बताइए क्या हुआ तेरा वादा, कभी कोई वादा तोड़ा है यशपाल जी ने आपका? बहुत
1: इन्होंने
0: सारे
1: मेरा बहुत बार दिल तोड़ा
0: बताइए ना कुछ अंदर की बातें क्योंकि हमारे श्रोता उत्सुक हैं सुनने के लिए।
1: हाँ, 6-6 महीने शूटिंग चलती थी और मैं इधर अकेली रहती थी बहुत
2: अगर ये
1: समय
2: बोल
1: तक।
2: रही है कि बहुत बार दिल तोड़ा है तो फिर वो गाना हो जाए, एक दिल के टुकड़े
1: बहुत
2: हजार
1: ज्यादा पुराना
2: हुए
1: गाना है
2: कोई
1: वो
2: यहाँ गिरा कोई। अरे लेकिन
1: यहाँ
2: गाना कमाल है ये।
1: गिरा।
0: नहीं, अच्छा चलिए ये बताइए हमें यशपाल जी की कौन सी बात आपको नापसंद है?
1: वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं है पर्टिकुलर कि मुझे ये ना पसंद है। जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हो तो उसको सिरे से लेके
0: वो
1: पैर
0: तो
1: तक पसंद
0: पसंद तो
1: करते
0: शादी
1: हो।
0: के

0: पहले होता, शादी के कुछ साल तक, उसके बाद तो शिकायतें शुरू हो जाती हैं हर पति
1: नहीं नहीं
0: पत्नी
1: वो
0: में।
1: लड़ाई वड़ाई तो हमारी आज भी चलती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नहीं मैं सोच नहीं सकती
0: ठीक है,
1: उनके
0: अब हम क्या उससे
1: बारे
0: ऊपर उठ चुके हैं।
1: में
0: पहले शुरू में प्यार रहा, फिर खूब लड़ाइयां हुई, खूब लड़ाइयां हुई, फिर लड़ाई कर करके जब थक गए फिर दोबारा से प्यार हो गया। तो अभी
1: अच्छा
0: हम वो वाली स्थिति में चल रहे हैं।
1: एक आध लड़ाई वाला किस्सा बता दीजिए, ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि इतने झगड़े के बाद फिर वापस प्यार होता है।
0: अरे हम लड़ते हैं तो सुबह उठते गुड मॉर्निंग बोलते हैं, भूल चुके होते हैं कल क्या हुआ था।
1: अच्छा,
0: कभी
1: बहुत
0: ऐसा
1: बढ़िया।
0: हुआ ही नहीं कि हम उसको लेकर के जिंदगी भर गांठ बांध करके चलें, नहीं तो जी नहीं पाएंगे, रिश्ते खत्म हो जाते हैं ऐसे। सब लोगों के लिए है ये बात, हमारे लिए ही नहीं। भूलना बहुत जरूरी है लड़ाइयों को, गलतियों
1: रात
0: को।
1: गई बात गई।
0: हाँ गई बात गई,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि आपको जिंदगी बितानी है, बच्चे हैं अभी, हम कितनी उम्र बची है इसमें भी, अब लड़ झगड़ के बिता देंगे तो फिर क्या बचेगा।
1: बिल्कुल, और ये समय होता है एक दूसरे का हाथ थाम के चलने
0: बिल्कुल
1: का।
0: बहुत जरूरी है।
1: अब जरा प्रतिभा जी बताइए, कौन सी बात नहीं पसंद करती ये
0: हैं?
1: मुझे ये पसंद नहीं है कि ये वही वही कुर्ते पहन के आ जाते
0: बिल्कुल। और कोई बात, घर घरेलू चीजें जैसे कोई चीज रखने की, इधर उधर रख
1: नहीं,
0: देने।
1: ये बहुत तरीके से रखते हैं हर चीज
0: अच्छा
1: घर में, उल्टा ये ज्यादा तरीके से रखते हैं, मैं जबकि इतर बितर करके रखती हूँ
0: अच्छा
1: चीजों
0: क्या
1: को।
0: बात है, बहुत
1: मैंने
0: बढ़िया।
1: इनसे बहुत कुछ सीखा है वैसे।
0: और आप बताइए यशपाल जी, प्रतिभा जी की कौन सी बात आपको पसंद नहीं है? इसकी यही चीज पसंद नहीं है कि खाना खा के बर्तन वहीं पड़े रहते हैं, कपड़े चेंज किए तो कपड़े वहीं फेंक दिए, कुछ चीजें मतलब मान लो एक कोई फोटो है वो कैंची से काटे हैं तो उसके कटे हुए कतरने वहीं बिस्तर पे पड़ी हैं, कैंची वहीं पड़ी है, फिर लाइट बुझाना नहीं, बिल बढ़ता रहे, कोई लाइट जलती रहे, उसको भूल जाती है लाइट बंद करना, ये वाली चीजें जो है ना ये बहुत बेकार
1: सच बोल रहे
0: लगती
1: हैं प्रतिभा जी? चलिए मान हाँ
0: लेते
1: करती
0: हैं।
1: हूँ मैं
0: बताइए
1: ऐसे।
0: अब एक दूसरे का पसंदीदा रंग कौन सा है? आप बताइए यशपाल जी को कौन सा रंग पसंद है?
1: यशपाल तुमको कौन सा रंग पसंद है?
0: नहीं, आपको अपने से बताना जो
1: है
0: कुर्ता हमेशा पहनता हूँ।
1: जबकि मेरा भी पसंद का कलर ब्लू ही है
0: क्या बात है, आप बताइए प्रतिभा जी की पसंद नहीं
1: का रंग।
0: इसका जो चॉकलेट कलर का जो एक सूट था NSD में, वो जो उसमें लगते थे ना वो आज तक किसी भी ड्रेस में नहीं लग पाई है।
1: ओहो क्या बात
0: वो ड्रेस
1: है
0: में सोच रहा हूँ, और वो यूनिक मतलब जैसे एंटीक पीस नहीं होते जो
1: जी।
0: राजस्थान के या
1: हाँ
0: किसी फोक देसी टाइप के, जो इंडियन ड्रेस, वो ड्रेस इसके ऊपर इतनी फबती थी, और इसके बाल भी ऐसे काले काले मोटे मोटे लंबे लंबे, सारी मतलब दुनिया रश्क करती थी,
1: क्या बात
0: और इसकी जो बिंदी लगाती थी सांप जैसी ऐसे घुमा फिरा करके काली सी, अभी भी लगी है देखो। अच्छा वो
1: क्या
0: टीवी
1: बात
0: नहीं है रेडियो है
1: है
0: कि, अरे नहीं रेडियो में कैसे दिखेगे, पर लगा
1: श्रोता
0: रखी है, मैं बता रहा हूँ।
1: सुन रहे हैं वो
0: हाँ
1: इमेजिन कर
0: हाँ हाँ हाँ तो
1: लेंगे।
0: वो वाली ड्रेस जो उसका मेरा फेवरेट कलर तो जो इस पे फबता है वही है कोका कोला कलर का।
1: इतनी सारी आपकी तारीफ, खूबियां बता दी यशपाल जी ने, अभी आप सोच के चुन के बताइए क्या खूबी है यशपाल जी के, कोई खास याद हो NSD वाले दिन और या फिर अपनी जिंदगी में। यशपाल जी की एक फॉरगिव गिविंग बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीज़ों को।
0: भूल
1: वैसे
0: जाते हैं,
1: मेरे अंदर बहुत वो वाली क्वालिटी नहीं है कि मैं फॉरगिव कर पाती हूँ, मतलब
0: मतलब आप गांठ रख लेती हैं मन में।
1: हाँ थोड़ी सी मैं तो रख लेती हूँ।
0: अमूमन पुरुषों में ये बात आती है कि महिला जब कहीं समानांतर चल रही है तब तो ठीक है, थोड़ा बहुत भी ग्रो करती है आगे जाती है, तो पुरुषों में ये बात आती है यशपाल जी अरे
1: मान लें।
0: बेकार में बदनाम है पुरुष, काहे
1: हाँ
0: को ऐसे है, मैंने तो जितनी जगह भी देखा है हर जगह बेचारे पुरुष भीगी बिल्ली की तरह ही रहते हैं हमेशा, हमेशा पत्नी को सम्मान ही देते रहते हैं, हमेशा मतलब महिलाओं का सम्मान ही करते हैं, बोलते भी हैं करते भी हैं, फिर भी बेचारे बदनाम है। बताइए
1: देखिए यहाँ
0: सारी
1: दुल्हन,
0: उंगलियां एक जैसे नहीं होती, सारी महिलाएं एक जैसे नहीं होती, वैसे सारे पुरुष भी एक जैसे नहीं होते, हमने ये भ्रांतियां बना ली हैं। तो इसीलिए हमको इंसान को पहचानना चाहिए, ना कि उसके रंग रूप जाति भेद भाव धर्म, इन चीजों को लेकर के हम किसी को प्यार नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, और
1: जी
0: हम तो कलाकार हैं तो कलाकारी ही सबसे बड़ा धर्म है हमारा।
1: बिल्कुल सही बात है। अब वापस फिल्मों की ओर आते हैं यशपाल जी, बहुत सारी फिल्में हैं आपकी, और अगर हम आपसे कहें कि आप अपनी सब फिल्मों में से कोई पांच पसंदीदा फिल्मों का नाम लीजिए, तो क्या याद कर पाएंगे, बताएंगे पांच या छह
0: हाँ
1: फिल्में,
0: हाँ बिल्कुल क्यों नहीं,
1: और उससे जुड़ी कोई खास बात, कोई खास याद साझा करना?
0: अब तक 56 इज माई फेवरेट फिल्म, और अपहरण, गंगाजल, लगान, और एक है वेलकम टू सज्जनपुर, श्याम बेनेगल के।

0: जी
1: ये ऑलमोस्ट मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी फिल्में हैं। और दास कैपिटल प्रतिभा के साथ हमने की थी, और मेरी एक फिल्म है दादा लक्ष्मी,
0: जी
1: जो कि आई थिंक इज़ द बेस्ट, क्योंकि उसमें हर पहलू, परफॉर्मेंस हो, डायरेक्शन हो, म्यूज़िक हो, गाने हो, लिरिक्स हो, कैमरा हो, सारी
0: उसमें मैंने भी
1: बहुत,
0: छोटा सा
1: उसमें
0: रोल किया
1: प्रतिभा ने
0: था।
1: भी एक
0: जी
1: रोल किया,
0: जी
1: बहुत ही
0: जी
1: बढ़िया हरियाणवी बोली है इसने, तो बहुत ही अच्छी फिल्म है और 107 अवार्ड मिल चुके हैं पूरी दुनिया में उसको,
0: जी जी
1: कांस में भी, मैंने बताया था नेशनल अवार्ड भी मिला है उसको,
0: बिल्कुल
1: तो बहुत ही मेरी फेवरेट फिल्म है वो। उसका पार्ट 2 बनाना है अभी, बाकी है, अभी
0: जी
1: पार्ट 1 तो बन गया है, 2.5 घंटे का है,
0: जी
1: 5 साल लगे बनाने में,
0: क्या बात है,
1: लेकिन
0: बहुत
1: बनाई,
0: बढ़िया
1: अच्छी बनाई। अल्टीमेटली आई एम हैप्पी कि जो सोचा था वो हुआ।
0: जी। आपने डायरेक्ट भी की है
1: जी, डायरेक्ट भी मैंने की है, को
0: और
1: प्रोड्यूस भी की है।
0: तो ये विचार कहाँ से आया डायरेक्शन का? तो
1: मुझसे आया था
0: जी
1: ये तो, खैर है ही इंस्पिरेशन हमेशा से, लेकिन पर्टिकुलरली इस फिल्म का जो आइडिया है वो एक फिल्म देखी थी मुझे, नट सम्राट, नाना पाटेकर की,
0: जी
1: उसमें एक कहानी थी, एक्टर की कहानी थी, जो कि बहुत ही सच्चा होता है और वो अपने बच्चों को
0: बहुत
1: सब कुछ
0: फेमस
1: दे देता
0: प्ले है
1: है।
0: मराठी का नट सम्राट।
1: हाँ, तो उस फिल्म को देख के मुझे लगा कि एक हरियाणवी एक्टर की अगर स्टोरी की जाए, और बाय चांस उसी वक्त मेरी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था और राजीव भाटिया ने डायरेक्ट की थी, मेरा क्लासमेट था, फिर सतरंगी जो मैंने मेन रोल किया था उसको भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला,
0: जी।
1: नेशनल अवार्ड, संदीप शर्मा ने डायरेक्ट की थी। इसको सोच करके मुझे लगा कि हरियाणवी फिल्मों का एक दौर चलना चाहिए, क्योंकि अभी बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था उस वक्त। मैंने सोचा हरियाणवी में बनाते हैं कोई फिल्म, तो हमने फिर पता किया कि कोई एक्टर है, तो राजू मान जी ने बताया हमें कि एक एक्टर हैं जो लीजेंड एक्टर हैं हरियाणा के, उनको हरियाणा का शेक्सपियर बोला जाता है,
0: जी।
1: पंडित लक्ष्मी चंद। तो फिर मैंने उस पे काम शुरू कर दिया, रिसर्च की, 17 किताबें पढ़ी मैंने, और उनका बहुत बड़ा नाम था, उनका बहुत बड़ी कविताएं थी, उनके कमाल के वो इंसान थे, कमाल की कहानी थी, तो फिर हमने उस पे फिल्म बनाना शुरू कर दी। बाद में पता लगा कि इनको 2 घंटे में समेटना बड़ा मुश्किल है, कम से कम भी 6-7 घंटा चाहिए, क्योंकि म्यूजिक भी बहुत है,
0: जी
1: गाने भी बहुत हैं। तो उत्तम सिंह जी ने म्यूजिक किया,
0: जी
1: और मैंने फिर इस फिल्म को 2 पार्ट में बनाने की सोची, और एक पार्ट में जहाँ तक मैं नहीं हूँ, मेरे आने से पहले, और एक पार्ट मेरे आने के बाद,
0: जी
1: जहाँ मैं नहीं हूँ वो हो चुकी है, और अभी मैं जिसमें आऊँगा मेन, उसमें अभी आना है,
0: तो ये दूसरा भाग अब बनेगा।
1: दूसरा भाग बनेगा, अभी थोड़ा सा
0: जी
1: बरेली के बच्चन से थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ।
0: जी तो शुभकामनाएं बरेली के बच्चन के लिए, तो शुभकामनाएं हमने दी है और इस फिल्म के लिए भी शुभकामनाएं। तो अब बताइए यहाँ कौन सा गाना सुनवाए अपने श्रोताओं को।
2: बा

0: रावड़ी राठौड़ में एक आपने किरदार निभाया है, उस किरदार के बारे में बताइए।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था और मजबूर इंस्पेक्टर था, जिसकी वाइफ को ये उठा के ले जाते हैं गुंडे लोग और विलेन लोग, और जिसमें मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वहाँ की पुलिस, शहर की सब सारा सिस्टम बेकार हुआ पड़ा है। तो ये बात जब नया नया इंस्पेक्टर आता है अक्षय कुमार, उसको पता चलती है, तो फिर वो जा कर के सबको मारता पीटता है और वही वाइफ को छुड़ा के लाता है और फिर वो सिस्टम को चेंज करता है धीरे धीरे। इस टाइप की कहानी है कुछ ये, तो बड़ा अच्छा लगा, मज़ेदार था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी, और बहुत ही कमाल की लोकेशन थी। अगर आप देखें उसमें पहाड़, बड़े बड़े पत्थर और ये लोकेशन बहुत कमाल की थी, इसलिए वो वहाँ पे शूटिंग की गई थी, तो वहाँ गए थे शूट करने, अच्छा रहा।
0: यशपाल जी, फिल्म फेस्टिवल के बारे में बताइए, आप लोग फिल्म फेस्टिवल आयोजित करते हैं।
1: जी हाँ, प्रतिभा उसकी फाउंडर मेंबर है, मैं भी उसका फाउंडर मेंबर हूँ, और बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल नाम से होता है, अभी 7वां साल चल रहा है, और हम हर साल करते हैं, पूरी दुनिया से फिल्में मंगवाते हैं, फिल्म फ्रीवे के जरिए या ऐसे डायरेक्ट भी, तो उसमें शॉर्ट फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, फीचर फिल्में और गाने, वीडियो सॉन्ग्स और AI फिल्में भी इस बार ऐड किया है
0: जी।
1: तो इस तरीके स्टूडेंट फिल्म, मोबाइल फिल्म, ये सारे कैटेगरी होती हैं, तो पूरी दुनिया से फिल्में आती हैं, तकरीबन 300 के आसपास फिल्में आ जाती हैं टोटल, जिसको हम देख करके सेलेक्ट करते हैं उसमें से तकरीबन 100 के आसपास, फिर उस वो 100 फिल्में हम नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टरों को देते हैं, जूरी फिल्म मेकर्स को, जूरी को, कि आप फीचर फिल्म का रिजल्ट दीजिए, आप शॉर्ट फिल्म का रिजल्ट दीजिए, आप लॉन्ग शॉर्ट फिल्म का रिजल्ट दीजिए, आप डॉक्यूमेंट्री का, इस तरीके से हम देते हैं और वो फिर रिजल्ट देते हैं, फिर जो वो रिजल्ट देते हैं वो हम अनाउंस करते हैं और 3 दिन का फेस्टिवल रखते हैं, 2 या 3 दिन का, अब 3 दिन का हो गया है, तो वेदा कुंभ में बॉम्बे में हर दिसंबर को हर साल तो होता है फेस्टिवल, और उसमें फिर हम सम्मानित करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, अवार्ड देते हैं, और कुछ सेलिब्रिटी भी बुलाते हैं, जैसे मुकेश छाबड़ा आ गए क्लास के लिए, रघुवीर यादव आ गए, और अनुभव सिन्हा की फिल्म दिखाई थी इस बार ओपनिंग फिल्म, तो इस तरीके से लोग आते रहते हैं, देखते हैं।
0: जी जी, बात अनुभव जी की, चलिए अनुभव जी से कोई आपकी मित्रता या उनसे मुलाकात का लम्हा याद यहाँ पे साझा करेंगे आप।
1: नहीं, ये मैंने किया था ना, वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे है, IC, वो जो हवाई हाईजैक हुआ था हवाई जहाज,
0: जी जी जी जी,
1: हाँ, उसमें मैंने काम किया था, एक छोटा सा, बढ़िया, अच्छा रोल था, छोटा सा, एकमात्र व्यक्ति था जो उस आतंकवादी को थप्पड़ मारता है,
0: जी,
1: तो जी, उसका जी, रोल था मेरा,
0: बिल्कुल।
1: मैंने बोला आपके साथ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब कोई भी रोल हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने बोला शुरू में, बेटा छोटा सा रोल है यार, देखो कहीं तुमको ऐसा ना लगे, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं लगेगा, लेकिन रोल इतना अच्छा था कि मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया। मेरे को देख के लोगों ने सराहा कि यार क्या सॉलिड रोल किया तूने, 2 या 3 सीन है मेरे, लेकिन जो भी है कमाल के, मतलब तुमने कर दिया है, ऐसी सिचुएशन पे है वो सीन, तो मैंने कहा चलो। तो अनुभव सिन्हा का मैं फैन रहा हूँ, प्रतिभा भी, हम दोनों उनकी फिल्मों के, क्योंकि उनकी सारी फिल्में किसी न किसी मुद्दे पे होती हैं,
0: जी, जी।
1: और बड़ा अच्छा वो करते हैं, तो इसीलिए प्रतिभा ने ही सलाह दी थी कि अनुभव सिन्हा को बुलाओ ना, उनकी फिल्म दिखाते हैं, तो फिर थप्पड़ फिल्म दिखाई थी हमने, और वो ओपनिंग फिल्म, और
0: बेहतरीन फिल्म थी थप्पड़,
1: जी जी, तो उसमें फिर हम मिले थे।
0: जी प्रतिभा जी, आपसे जानना चाहेंगे, फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होता है आप दोनों के माध्यम से और आप भी फाउंडर हैं, तो आप अपना अनुभव साझा कीजिए, यशपाल जी ने अपना अनुभव साझा किया है।

0: और आप बताइए इसके बारे में, आपका क्या अनुभव होता है कि एक बड़े फलक पर ये काम कर रही हैं, और अमूमन ये काम महिलाओं के खाते में कम ही आता है, तो
1: हाँ
0: कैसा एक्सपीरियंस होता है इतने सारी फिल्मों को अपने पास बुलाना और
1: हाँ
0: एक मुखिया की तरह करना?
1: एक्चुअली ये मैं और मेरा एडिटर, हमारी फिल्म अमो आका एक से, ये मैंने काफ़ी साल लगे थे मुझे इस फिल्म को बनाने में, तो वो हम लेकर फिल्म फेस्टिवल में गए थे एक बार नासिक में, तो इतना मिसमैनेजमेंट वहाँ था, और दादा साहब फाल्के के नाम से वो फेस्टिवल करते हैं, और इतना मिसमैनेजमेंट और ये था, तो फिर मुझे वो मेरा एडिटर था उस, प्रतिभा जी आप तो ऐसे 10 फिल्म फेस्टिवल कर सकते हो,
0: क्या बात है.
1: तो मैंने कहा चलो फिर करते हैं, है ना, तो वो बात आई गई हो गई थी, और फिर मैं एक फिल्म लिख रही थी, उसके बीच में मुझे मेरी एक असिस्टेंट थी वो मुझे कह रही थी कि आप क्यों नहीं करते कोई फिल्म फेस्टिवल, आपको करना चाहिए, तो मैंने कहा हाँ ये बात मुझे काफी दो चार लोग अभी तक कह गए हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इशारा है, तो मैंने सोचा कि फिर चलते हैं करते हैं, शुरू किया हमने, और टाइटल भी बिल्कुल आसानी से मिल गया हमें बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जबकि मुझे लग रहा था नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी ले चुके
0: जी
1: होंगे
0: जी
1: या कहीं तो ये होगा टाइटल रजिस्टर्ड, पर अनुमन ऐसा हो गया कि हमें बिल्कुल आसानी से मिल गया,
0: जी
1: और बहुत खुश हुए हम लोग कि चलो ये टाइटल का ही तो मेन खेल होता है ना फिल्म फेस्टिवल में,
0: जी
1: तो वो सब कुछ मतलब हम कर रहे थे, फिल्म फ्री वैसे भी फिल्में आ रही थी, और पहले ईयर में हमें 250 फिल्में मिली,
0: जी जी
1: और जबकि वो कोरोना का पीरियड था,
2: लॉकडाउन था उस वक्त.
0: जी
1: लॉकडाउन था और कहीं आप कर नहीं सकते थे, ऑनलाइन हमने फिल्म फेस्टिवल किया था,
0: क्या
1: पहले
0: बात.
1: 2 साल हमने ऑनलाइन किया, तो भी हमें इतना ह्यूज रिस्पांस ऑनलाइन में भी रहा,
0: और अब वेदा कुनवा में
1: ऑफ कोर्स अब
0: हो
1: तो
0: रहा है, तो अब
1: फिजिकली करते ही
0: तो
1: हैं,
0: बहुत बढ़िया है. और जो भी हमें लगता है श्रोता सुन रहे होंगे वो इसमें शामिल होना चाहेंगे तो शामिल भी
1: बिल्कुल
0: हो सकते हैं.
1: बिल्कुल होना ही चाहिए,
0: और प्रतिभा जी, बहुत सारी शॉर्ट फिल्मों का निर्देशन आपने किया है जिसमें यशपाल जी भी.
1: यशपाल जी मेरे प्रोड्यूसर
0: अच्छा, वो
1: है
0: प्रोड्यूसर है. तो उनको डायरेक्ट करने का मौका नहीं मिला आपको?
1: नहीं नहीं कभी नहीं मिला, नहीं हालांकि वो चाहते हैं कभी मुझे बोलने भी थे, तो मुझे सोच के कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखते ना
0: कोई रोल दे दो हमें भी, ऐसा बोला. तो उस शॉर्ट फिल्म के निर्देशन का अनुभव आप साझा कीजिए, कुछ फिल्मों के
1: मतलब
0: नाम बताइए.
1: एक पिज्जा एमएमएस है मेरी फिल्म, एक नई अम्मी है,
0: जी
1: एक खुली खिड़की है, फिर आमो आंखा एक से है ना, ये सारी फिल्में यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो,
0: जी
1: नो
0: जी
1: एडिटिंग, एक ही कट है वो 16 मिनट का,
0: अच्छा, क्या बात है.
1: हाँ, तो वो फिल्म का हम लोग एटलीस्ट हफ्ता भर रिहर्सल किए थे, और उसके बाद वो एक कट करने के लिए एटलीस्ट पूरा दिन लग गया था फाइनल कट आने तक,
0: अब एक गाना सुनते हैं, फिर थोड़ी
1: हाँ
0: सी बातें और करते हैं.
1: जी,
0: एक गाना बताइए, कौन सा सुनवाए?
1: कुहू कुहू बोले कोयलिया।

0: थोड़ी देर पहले जब आपकी निजी जिंदगी की बातें हो रही थी तो यशपाल जी ने आपकी बड़ी खासियत बताई, खूबसूरती को बयां किया। आप भी कुछ ऐसा वर्णन कीजिए ना, बताइए यशपाल जी की कौन सी बात आपको बहुत पसंद आती है और उनके क्या चीज देखकर आप फिदा हुई थी? उन्होंने
1: मैं
0: तो बताया,
1: इनकी तो एक्टिंग ही देख के बहुत फिदा हुई थी।
0: और बाकी
1: मुझे ऐसा लगता था कि बस ये मतलब एक शानदार एक्टर का, एक कमाल का एक बंदा है और कमाल का पर्सोना है।
0: उनकी एक्टिंग वाली कौन सी फिल्में हैं जो आपको हर वक्त याद आती हैं और जिसका
1: लगान तो
0: ऑफ कोर्स
1: मेरी बहुत ज्यादा
0: और कुछ फिल्मों के नाम?
1: है, और अब तक 56 और मुंबई से आया मेरा दोस्त, इनकी बहुत ही मतलब ये बिल्कुल इसमें प्रिंस जैसे लगते हैं बिल्कुल।
0: क्या बात है।
1: हाँ
0: और कभी उनकी आलोचना भी करती हैं उनकी एक्टिंग की कि ये रे ये एक्टिंग?
1: हाँ मैं बोलती हूँ उनको कि ये थोड़ा सा वही वही वही वही तुम कर रहे हो।
0: तो उनकी जब आलोचना करती हैं तो क्या रिएक्शन होता है यशपाल जी का?
1: बिकॉज हम लोग क्लासमेट्स हैं और बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं, तो ऑफ कोर्स बहुत सीरियसली लेते हो मेरी चीज़ों को, ऐसे नहीं लेते कि हाँ इसको क्या समझ में आता है टाइप्स।
0: जी जी और आप महाराष्ट्र की मराठी भाषी, वो हरियाणा के हिसार के, वो हरियाणवी, तो आपने हरियाणवी सीखी, उन्होंने मराठी सीखा, एक दूसरे को भाषा आदान
1: हाँ,
0: प्रदान?
1: मुझे तो हरियाणवी तो सारी समझ में आती है, इन्होंने लेकिन एक ही वाक्य सीखा मराठी का,
0: कौन सा?
1: माझे भाई को मराठिया है।
0: दो चार वाक्य सुना देती है, सिखा देते ना कुछ।
2: देखो मैं ना मराठी समझ जाता हूँ अब। हाँ। मैंने समझने की कोशिश बहुत की, क्योंकि मैं ससुराल में जाता था सब मराठी बोलते थे, इसके दोस्त लोग आते थे कोई मराठी, सब मराठी दोस्त बोलते थे मराठी, फिर इसकी सहेलियां आती थी मराठी, वो मराठी बोलते थे, इसका मतलब जो भी आता था मराठी बोलते थे। तो मैंने कहा मुझे समझ में कहीं मेरी चुगली उगली तो नहीं कर दें। तो हुआ क्या कि ये NSD में जब थे तो मुझे ना बड़े प्यार से बोलती थी, माझा शेमड़ा, माझा गाढ़ो, माझा पता नहीं क्या क्या बोलती थी। तो मैंने एक दिन पूछ लिया अभय कुलकर्णी से कि भैया ये शेमड़ा और गाढ़ो का मतलब क्या होता है? बोले गाढ़ो का मतलब गधा और शेमड़ा का मतलब जिसका नाक बहता रहता है। मामला उत्तरा भला हो जाए। अब ना मैं एक्सप्रेशन पे नहीं जाऊंगा, मीनिंग पे जाऊंगा। एक्सप्रेशन तो बहुत अच्छे थे, माझा शेमड़ा और माझा गाढ़ो और मतलब मीनिंग कुछ और। फिर मैंने सोचा मराठी सीखना बहुत जरूरी है, बोलो चाहे ना बोलो समझना बहुत जरूरी है।
0: तो ये जो मराठी में आपको बोला करती थी, आपने कभी हरियाणवी में इनके लिए कुछ नहीं बोला ऐसे?
1: मैं तो मुझे
2: मेरे को वैसे वाला प्यार आता नहीं है, बाबू सोना। हाँ बस बेटा जरूर बोलता हूँ, नहीं बेटा ऐसे नहीं। ऐसे ही प्यार से बस, बाकी मुझे कुछ क्या बोलते तरीके, हाँ एक नॉन रोमांटिक बिल्कुल, ना मनाना ना तारीफ करने की मुझे अकल है कुछ। मैं बिल्कुल अखड़ आदमी हूँ बिल्कुल, मुझे समझ में नहीं आता बेचारी ये किसे सहेली, कई सालों बाद इसको भी समझ में आया कि ये है ही ऐसा। हाँ नहीं तो पहले तो उन्हीं बातों पे लड़ाई की, कोई बात बोल दी, कोई मजाक कर लिया मान लो तो बुरा मान गए, और मैं सोचू यार मैं तो मैंने तो जोक मारा था, ये तो नाराजी हो गई। तो इसलिए जोक भी थोड़ा सोच समझ के मारना पड़ता था, लेकिन अब थोड़ा ठीक हुआ है। अब हम एक दूसरे को स्पेस भी देते हैं, अपना समझते हैं कि यार हर चीज में हर बात पे नाक चढ़ा के बोलना जरूरी नहीं है, रिएक्ट करना हर चीज को जरूरी नहीं है। जिंदगी में मैंने तो देख लिया अगर पति पत्नी में

0: लड़ाई नहीं होती है तो डाउट होता है
1: बिल्कुल सही, सही, ये आपने बहुत सही बात
0: और
1: कही
0: पति
1: है कि
0: पत्नी में पति को बहुत जरूरी है कि खुद की गलती ना भी हो, सामने वाले की भी गलती हो, तो अब तुम खुद बोलो कि नहीं मेरी गलती है, तब रिश्ते बिल्कुल ठीक रहते हैं। मैंने वो
1: चलिए।
0: सीख लिया है, तो इसलिए जब ये भी गलती करती है तो मैं अपना नहीं मेरी गलती है मैं बोलता हूँ, तो हम सुधर रहे हैं, बिल्कुल
1: सच
0: सही
1: है
0: रहते
1: प्रतिभा
0: हैं,
1: जी, ऐसा
0: कभी कुछ होता
1: कि
0: नहीं होता
1: आपकी
0: हमारे।
1: गलती हो और ये मानते हैं कि हमारी गलती
2: नहीं, इतने भी शरीफ नहीं
1: है ये तो बहुत अच्छा हुआ कि दोनों लोग एक साथ आए और ये दोनों की पोल खुल रही है, नहीं तो पता चलता कि अच्छी अच्छी बातें यशपाल जी बता जाते और फिर हम भ्रम में रह जाते। तो बहरहाल यहाँ पर एक ऐसा गाना होना चाहिए, आप दोनों साथ में गाए एक दूसरे के लिए, कभी विवाह के बाद या विवाह से पहले एक दूसरे के लिए गुनगुनाया होगा, जाहिर सी बात है।
0: हाँ,
1: तो
0: ये रातें
1: ये
0: ये मौसम
2: मौसम
0: नदी
2: नदी का
0: का किनारा
2: किनारा
0: ये
2: ये
0: चंचल
2: चंचल

क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। सचमुच बातें इतनी दिलचस्प हो रही हैं, हमारा तो दिल कर रहा है कि और बातें करती जाऊं, लेकिन अब कुछ चीजें छोटी छोटी जानना चाह रहे हैं कि गाना एक साथ गाते हैं फिल्मों में, आप दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, आप हरियाणा के, ये महाराष्ट्र जलगांव के गाँव के पास, खान पान का कल्चर तो काफी थोड़ा सा अलग है। हरियाणा में बहुत सारा दूध, मट्ठा, दही, तो वो खान पान का मेल जरा बताइए, दोनों लोग बताइए अपने अपने स्वाद और अपने पसंद।

0: मैं तो बोलता रहता हूँ भाई ये बना दो, जो मेरा सब देसी कढ़ी चावल हो गया, या वहाँ का राजमा चावल हो गया, या आलू गोभी की सब्जी होगी पंजाबी स्टाइल में। लेकिन अभी मैंने क्या है कि अभी मैं मराठी खाना भी सारा, क्योंकि दिल्ली में ही इसने जब रेपेट्री में थे तो मराठी खाना बनाती थी, हम साथ रहते थे जब, तो मेरी आदत पड़ गई थी और मैं उसका कायल हो गया था, क्योंकि मैं सबसे पूरी रिपेटरी में सबसे अच्छा खाना इसी का होता था और सब लोग यही वेट करते थे कि आज प्रतिभा क्या बना के लाएगी।
1: क्या बात है
0: और हमारा ही खाना
1: भाई।
0: हमारे ही नसीब में नहीं होता था, बाकी सब थोड़ा थोड़ा देख
1: अच्छा,
0: खा जाते थे।
1: तो आपको हरियाणवी खाना बनाना आता है?
0: हाँ बिल्कुल बनाना आता है, बना
1: बना के
0: लेता
1: खिलाया
0: हूँ।
1: आपने प्रतिभा जी को?
0: हाँ बिल्कुल कई बार खिलाया है।
1: सच है प्रतिभा जी? अच्छा
2: खिलाते हैं।
1: जी, तो चलिए ये स्पष्ट हो गई कि दो तरफा बातें हो रही। आप हरियाणा की कुछ बातें और बताइए यशपाल जी, पिताजी की, माँ की। आपने बताया था कि बहुत शरारतें बताई थी, वैसी कोई बात है तो चलते चलते बताइए हमारे
0: नहीं
1: श्रोताओं
0: नहीं
1: को।
0: बस ये तो बड़ा एक अजीब सा माहौल था, जो कि एक मुझे ड्रीम की तरह लगता है अब, क्योंकि वो जो वैल्यू थी ना चीज़ों की उस वक्त, वो जैसे हमने पूरे परिवार ने पैसे इकट्ठे किए, तकरीबन 750 रुपये इकट्ठे किए। मेरी मदर स्वेटर बुनती थी, सिलाई करती थी कपड़े,
1: ओ
0: और बड़ा भाई जो है वो एक लेमन की बोतलें सप्लाई करता था इधर रिक्शा पे। तो इकट्ठा कर करके कर करके हमने तकरीबन 750 रुपये इकट्ठे किए, और साइकिल
1: अरे वाह, क्या बात है।
0: आनी थी उस दिन, और मेरे बड़े भैया साइकिल लेने गए थे, और हम पूरा परिवार, क्योंकि 6 भाई बहन थे उस वक्त, और सब लोग पहले मैं चलाऊंगा, पहले मैं चलाऊंगी, पहले मैं चलाऊंगा, और अंदर बाहर कभी इधर कभी उधर थोड़ा सा बैठे फिर उठ जाएं, मतलब इतनी बेचैनी कि कब आएगी साइकिल। फिर वहां से दूर से साइकिल आती दिखाई दी गली में, 20 मकान थे, हमारा बीच में था, उस दर से 10 मकान उधर से साइकिल आती दिखाई दी गली में, भैया आए चलाते चलाते हरे रंग की हीरो साइकिल, और फिर जैसे ही आए हमने जकड़ ली, और फिर एक एक करके कैंची फैंची चला चलू के, इतना मजेदार दिन था वो कि मैं बता नहीं सकता। कट्टू बॉम्बे में गाड़ी खरीदनी थी, पहली गाड़ी थी हुंडई एक्सेंट, और ड्राइवर हमने पहले ही रख लिया था, क्योंकि वो एक टैक्सी वाले से बात की थी तो उसने ड्राइवर दे दिया था यूपी का घनश्याम, तो उस घनश्याम को हमने भेजा, और उसके मोबाइल पे हमने फ़ोटो मांगी कि हमको फ़ोटो दिखाओ कौन कौन सी गाड़ी है, तो गाड़ी के कलर दिखाए उसने, मैंने कहा ये वाली लेनी है, और फिर ले आए, और फिर पेमेंट हो गई। मेरे दिमाग में दिल में बिल्कुल भी हमारे एक्साइटमेंट नहीं था गाड़ी खरीदने का। तो ये थी वैल्यू, एक चीज़ पैसे की वैल्यू, चीज़ों की वैल्यू। आज लाखों रुपए की चीज़ें आ जाती हैं, कोई मतलब वैल्यू ही नहीं रहती, बच्चों में खासकर।
1: जी बिल्कुल,
2: आजकल के
0: हम तो
1: एक
0: बाप रे,
1: खिलौना बहुत कीमती हुआ करता
0: हम
1: था
0: तो
1: अब।
0: 20-20 पैसे 10-10 पैसे कैसे संभाल के खर्चते थे, क्या क्या आ जाता था उन दिनों, आज तो लाखों रुपए अभी बच्चे खर्च देते हैं तो पता नहीं चलता।
1: चलते चलते हमारे तमाम श्रोताओं से, बहुत सारे श्रोता जो हैं एक्टिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, मुंबई आना चाहते हैं, आपके हरियाणा से, हिसार से, और देश के तमाम जगहों से आना चाहते हैं।
0: नहीं
1: यशपाल
0: मैं
1: जी पहले आप
0: तो
1: बताइए।
0: सबको यही कहना चाहूँगा कि ऑडिशन देते हो या कहीं भी कुछ जाते हो, कोई भी नाटक करते हो, कोई भी कहीं भी कुछ करते हो, तो कभी भी दिखावा मत करो। हम ना दिखाते बहुत हैं, देखो देखो मैं हंस रहा हूँ, देखो देखो मैं कितना अच्छा हूँ, देखो देखो मैं कैसी एक्टिंग कर रहा हूँ, देखो मैं रो रहा हूँ, देखो नहीं दिखाओ, रोवो हंसो, अपने आप पता चल जाएगा लोगों को। और दूसरा, आपके अंदर बहुत सारी कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, जो आपको पता नहीं होता। जैसे हनुमान के अंदर थी, जामवंत ने याद दिलाया था कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, तुम उड़ सकते हो, इतने योजन पार कर सकते, तो वो चीज़ें आपके अंदर हैं। आप ऐसा कोई साथी, ऐसा कोई गुरु होना चाहिए जो आपको सही दिशा दे, क्योंकि हम अपनी पोटेंशियलिटी का 30% ही यूज़ करते हैं मैक्सिमम, बाकी सारी अंदर दबी रहती हैं
1: जी
0: और हम
1: जी
0: यूज़ ही नहीं करते उसका। कुछ इनहिबिशन होती हैं, कुछ डर होते हैं, कुछ खौफ या कुछ शर्म लड़कियों में खास करके, हम खुल करके अपने आप को नहीं कर पाते
1: जी
0: इजहार।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: मुझे लगता है कि वो चीज़ें आपको करनी चाहिए, और आप खुल करके करेंगे और दिल से करेंगे, अंदर से करेंगे, आप रोएंगे वाकई में तो दुनिया को पता चल जाएगा कि आप रो रहे हैं, और आप हंसेंगे तो पता चल जाएगा कि आप हंस रहे हैं, खुश हैं तो खुशी पता चल जाएगी। तो इसीलिए उसको दिखाने की बजाय होना चाहिए, बी देयर,
1: जी बिल्कुल
0: करो मत, हो जाओ।
1: बिल्कुल। प्रतिभा जी आप ये बताइए हमें कि कोई ऐसी तमन्ना है, कोई ऐसा सपना है जो अधूरा रह गया जिसे पूरा करना चाहती हैं? महिलाओं के साथ अक्सर होता है, बहुत सारे ख्वाब देखे जाते हैं लेकिन अधूरे रह जाते हैं, कई बार परिस्थितियां नहीं साथ देती हैं, कई बार परिवार, तो ऐसे कभी कोई नौबत आई है समझौते की?
2: नहीं, मुझे ऐसा लगता है

0: कि लड़कियों को ना शादी पहले नहीं कर लेनी चाहिए, पहले करियर कर लेना चाहिए फिर शादी करनी चाहिए। मैं सभी लड़कियों के लिए बोल रही हूँ कि जो भी लड़कियां अगर इस फील्ड में आना चाहती है, अगर उनको कुछ लाइफ में कुछ करना है, तो पहले खुद करियर कर लो, उसके बाद शादी के बारे में सोचो।
1: बिल्कुल।
0: और हमारे वक्त तो ऐसा वक्त था, तो परिस्थितियां भी ऐसी थी, वो पॉसिबल नहीं हो पाया। पर आजकल अगर कोई लड़की अगर इस फील्ड में आती है और इस फील्ड में अपना काम करना चाहती है, करियर बनाना चाहती है, तो सबसे पहले अपना मुकाम हासिल करो और उसके बाद शादी के बारे में सोचो।
1: बिल्कुल सही बात है। और एक लाइन गुनगुनाइए दोनों लोग। बस यहाँ पे हम अब एक हैप्पी नोट पर ख़त्म कर रहे हैं प्रोग्राम।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहाँ से हुजूर।
1: क्या बात है यशपाल जी और प्रतिभा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, थैंक यू सो मच, सो नाइस इंटरव्यू, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।
0: बहुत स्वीट, बहुत प्यारी यादें आपके साथ हमने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: बहुत शुक्रिया।
3: ये थी जाने माने अभिनेता यशपाल शर्मा और उनकी पत्नी प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत। आज आपने सुना दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: रंग तरंग
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। मिश्रित संगीत के कार्यक्रम रंग तरंग में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार साथियों, कार्यक्रम रंग तरंग की शुरुआत कर रहे हैं इस गीत के साथ। आवाज़ें हैं कादिर गुलाम मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा गुलाम मुस्तफ़ा और साथियों की। इस गीत को लिखा है शौकत अली ने, धुन है ए आर रहमान की, फिल्म का नाम है फिज़ा।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि

0: ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए समाद फरमाएं एक फिल्मी कवाली गीत, आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, एस डी बातिश, सुधा मल्होत्रा और साथियों की। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं रोशन, फिल्म का नाम है बरसात की रात।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
1: दिना दिना, हे आला दिना, बदली दुनिया के आया है।
3: रंग तरंग
4: आइए अब सुना जाए अगला गीत सुखविंदर सिंह, आनंद राज आनंद और कृष्णा की आवाजों में। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य, संगीत है अजय अतुल का, फिल्म का नाम है अग्निपथ।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं मिश्रित संगीत का कार्यक्रम रंग तरंग। अगला एल्बम गीत है फाल्गुनी पाठक की आवाज में, गीत संगीत है ललित का।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: रंग तरंग कार्यक्रम का अगला गैर फिल्मी एल्बम गीत सुनिए, गायक और संगीतकार अदनान समी की आवाज में। गीतकार हैं समीर, एल्बम का नाम है तेरा चेहरा।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अगली गजल समाप्त कीजिए गायक और संगीतकार चंदन दास की आवाज में। कलाम है इब्राहिम अश्क का।
3: फिर मेरे दिल पे किसी दर्द ने करवट ली है।

रंग तरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में। कलाम है इब्ने इंशा का।

0: श्रोताओं, आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: रंग तरंग
0: राष्ट्रीय सेवा विविध भारती, इस वक्त दिन के 12 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ ही समय में रिलीज किए जाएंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे ये सुनिश्चित होगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के उपलक्ष्य में कल पंजाब और हरियाणा के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ का आयोजन कर रहा है। ये संवाद मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को खेल, फिटनेस और युवा नेतृत्व वाले विकसित भारत के दृष्टिकोण को एक साथ जोड़ना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृह मंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए वार्ता जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेइचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय लीडर से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मजबूत कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जापान यात्रा के दौरान भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने और देश की भूमिका को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने कहा है कि देश में वर्तमान में फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस

0: शिशुओं की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने एक बयान में बताया कि अस्पताल के मातृ और शिशु वार्ड की तीसरी मंजिल पर आग लगने से नवजात शिशुओं की मौत हुई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मिला जुला रुख देखने को मिला। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 95 अंक बढ़कर 77,751 पर और निफ्टी 27 अंक गिरकर 24,308 पर आ गया। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मैच के चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में भोजन अवकाश तक 2 विकेट पर 83 रन बना लिए थे। श्रीलंका पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 अंक बनाकर घोषित की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओ, आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से रिले किए जाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम।
2: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी का लिखा गीत है, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है प्यार ही प्यार।

कार्यक्रम है यादों की महफिल, और इस महफिल का झिलमिलाता हुआ अगला गीत है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

साथियों, यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत है आशा भोसले की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन और फिल्म का नाम है द ग्रेट गैम्बलर।

हसरत जयपुरी का लिखा गीत सुनिए मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम है सूरज।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम की अगली रचना है हसरत जयपुरी की, संगीत रचना है कल्याण जी आनंद जी की। इस गीत में आवाजें आप सुनेंगे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की। फिल्म का नाम है गीत।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल में आज हम और आप मिलकर सुन रहे हैं कुछ सदाबहार यादगार फिल्मी नगमात। तो अगला गीत है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, गीत है आनंद बख्शी का। गीत को सुरों में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है दो रास्ते।

लीजिए सुनिए अगला गीत लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। नगमा निगार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है उजाला।

आइए अब सुना जाए वो गीत जिसे संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने। गीत के बोलों को लिखा है हसरत जयपुरी ने। फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है, और इस गीत में आवाज़ आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी की।

लीजिए सुनिए संगीतकार रोशन के संगीत से रोशन ये कवाली गीत, आवाजें हैं मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। शायर हैं साहिर लुधियानवी, फिल्म का नाम है बहू बेगम।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं शकील बदायूनी, संगीत है हेमंत कुमार का, फिल्म का नाम है साहिब बीबी और गुलाम।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में स्थान बना चुका है। कनाडा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत में परिवर्तन संरचनात्मक है और तेजी से होते शहरीकरण, मध्यम वर्गीय का स्तर बढ़ने और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे का इसमें अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि ये अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में नए अवसर सृजित कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं में भारत के डिजिटल तंत्र का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। भारत ने अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों के लिए स्वदेशी पैराशूट तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की आगरा स्थित ADRDE द्वारा डिजाइन और विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का लद्दाख के न्योमा के मुद ड्रॉप जोन में सफल परीक्षण किया गया। ये दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में शामिल है। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें सशक्त बनाना है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू उच्च अधिकारियों और हितधारकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में पायलटों और चालक दल के सदस्यों के शरीर में मनोसक्रिय पदार्थों की मौजूदगी का पता लगाने वाला मोकाडोप टेस्ट सिस्टम और नागर विमानन आवश्यकताओं CAR में जरूरी बदलावों पर चर्चा हो रही है। इसमें नागर विमानन मंत्रालय के महानिदेशक और एयरलाइन ऑपरेटर्स के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। दिल्ली चिकित्सा संघ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वाइन फ्लू H1N1 के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। अब तक इसके 2000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली चिकित्सा संघ दिल्ली में इन्फ्लुएंजा की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और इस संक्रमण से होने वाली बीमारी और मौतों की निगरानी कर रही है। इन्फ्लुएंजा के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और बचाव के जरूरी उपाय अपनाने की अपील की गई है। नॉर्वे में कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में की जा रही ज्यादती के खिलाफ प्रदर्शन किया। नॉर्वे की संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की बर्बरता और हिंसा का मुद्दा उठाया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारे लगाए। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAEC के साथ एकजुटता दिखाते हुए इलाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के ऑपरेशन को खत्म करने की मांग की। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका शीर्षक से सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि P. Harish ने सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच के साथ प्रभावी संघर्ष निवारण व्यवस्थाओं के समर्थन का आह्वान किया। भारत ने नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति की रिपोर्ट में किए गए उल्लेखों का इल्लोखे को खारिज कर दिया है। भारत ने इन्हें राजनीति से प्रेरित और बेहद दुर्भावनापूर्ण बताया। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय संधि ICERD के तहत भारत की 11वीं आवधिक समीक्षा के बाद

0: समाचार मिलने तक 2 विकेट पर 100 रन बना लिए हैं। श्रीलंका की टीम पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 बनाकर घोषित की थी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: फटाफट बताइए हीरो हीरोइन का नाम।

आंखें फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, साहिर लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत था और हीरो हीरोइन माला सिन्हा और धर्मेंद्र। हमारे श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया और सही जवाब दिया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे नागपुर शहर के बगल में 15 किलोमीटर पर कान्हा नदी बहती है, और लेकिन बाकी किसी श्रोता ने अब तक नहीं लिखा कि उनका शहर या उनका घर गाँव किस नदी के किनारे है। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि बिल्कुल यही कला है पाठन की जो आपको बाकी से अलग करती है। आज की पहली जब आपके मुंह से सुनी तो गीतों की श्रृंखला बनती चली गई। गंगा मैया को इस गीत से याद करते हैं, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे घर से थोड़ी ही दूर कुंदा नदी है, निमाड़ में माँ नर्मदा भी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि धर्मेंद्र और माला सिन्हा, गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार रवि, बिल्कुल सही लिखा। अरे एक श्रोता ने और लिखा, मेरे इधर कावेरी नदी है। वैसे नदी के किनारे अगर घर है

शहर है, गांव है, तो कितना अच्छा लगता है जब आप अकेलेपन से ऊबें या ठंडी हवा, एकदम प्राकृतिक कुदरती हवा चाहें तो नदी के किनारे चले जाएं, बस यूं ही बैठे रहें, खुद से बातें करें, खुद से गुफ्तगू करें और इसका आनंद अवश्य लें। क्योंकि कई बार क्या होता है, अरे कौन जाए वहाँ तक घूमने टहलने के लिए, चलो मोबाइल में उतना समय बिता लेते हैं। तो ये जो मन का जो भटकाव है, इससे बचना चाहिए। जब आप कुदरत के नज़दीक जाते हैं तो आपके भीतर भावनाओं का ज्वार होता है, आपकी संवेदनशीलता बढ़ती है और आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। बहरहाल ज़रा हम श्रोताओं की टिप्पणियों पर आ जाएं, हमारे श्रोता जो लिख रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा दें। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, आज की इबारत तो शब्दों का गुलदस्ता है जिसे पढ़ते ही मन में पुराने सदाबहार गानों की महफिल सज गई है। इस जादुई लिखावट में छुपे कुछ बेहद प्यारे गाने सीधे दिल को छू रहे हैं, जिन्हें आज दोपहर 1 बजे सुनने का इंतजार रहेगा। नील गगन की सैर करता है याद आता है फिल्म आम्रपाली का वो खूबसूरत गाना नील गगन के तले। और एक श्रोता ने लिखा है कि रिमझिम के ये प्यारे प्यारे लम्हे सुनते ही कानों में रस घोलता है, रिमझिम के तराने लेकर आई बरसात। और आगे लिखा है, ऐ संदली हवा तू कहाँ ये बता, फिर सीधे जोड़ता है इस नगमे में, पूरी इस हमारी इबारत को गानों से इन्होंने जोड़ दिया है। और अंत में ये भी लिखा है, चंपा कली देखो झुकी जाए, किशोरदा की शरारती आवाज़। और कुछ श्रोता ने लिखा है कि वाह भाई, मेरी 10-12 गानों में से पहला गाना ही शामिल हो गया। गनीमत है कि आपने शिकायत नहीं की कि मेरी पसंद का गाना शामिल नहीं हुआ। चलिए, हो सकता है आपका गाना शामिल हो जाए, मतलब आप सभी में से। तो आप अपनी पसंद लिखते रहिए और ये है हमारी पसंद और आप सबकी पसंद। बताइए जरा गीतकार और संगीतकार का नाम, गीतकार संगीतकार का नाम आपको बूझना, फिल्म उसने कहा था और रिमझिम बरसात से जुड़ी हुई कोई खास बात है वो भी साझा कीजिए आप।

भाई आज तो गानों की बहार सी आई हुई है विविध भारती के फेसबुक पेज पर हमारे श्रोताओं की ओर से एक से बढ़कर एक गाने आ रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है नदी नारे न जाओ श्याम पैया पढ़ूं, और एक श्रोता ने लिखा है कि साहिल लुधियानी और रवि, शायद ये अगले गाने के लिए लिख रहे हैं। और हमने आपसे पूछा था, उसने कहा था फिल्म में गीतकार संगीतकार कौन है, शैलेंद्र और सलिल चौधरी, लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ें हैं। एक श्रोता ने नदी के लिए लिखा है, हमने पूछा था आपसे कि आपका शहर या गांव किस नदी के किनारे बसा है या आपके घर के पास कौन सी नदी है। हमारे श्रोता ने लिखा है गंगा बनारस शहर। एक श्रोता ने लिखा है ओ गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ से, मचलती हुई हमारे संग संग चली गंगा की लहरें, क्या बात है। बहुत सारे गाने हमारे श्रोता हमें याद दिला रहे हैं, हालांकि ये सारे गाने हमारे जहन में हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतने सारे गाने आपको याद आ रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे घर या गांव के पास नदी नहीं है, बहुत दूर है वो। और एक श्रोता कहते हैं कि गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे। एक श्रोता ने लिखा है गंगा सबकी मैया है, हमारे घर में जब नई बहू आती है तो सबसे पहले उसे गंगा मैया की पूजा करवाने ले जाते हैं। पीली साड़ी मांग में पीला सिंदूर, पीला नहीं बल्कि उसको मटिया सिंदूर बोलते हैं जो नारंगी रंग का होता है, और बहू को गंगा जी के किनारे पीली साड़ी से ही गंगा मैया की पूजा की जाती है और अपना आंचल फैलाकर सुहाग मांगती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं तो बनारस से हूँ, वहाँ गंगा नदी है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे तो जबलपुर में माँ नर्मदा जी हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा मायका सांगली है, वहाँ कृष्णा नदी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे शहर चित्तौड़गढ़ में दो नदियां हैं, एक का नाम गंभीरी और दूसरी का नाम बीडच नदी। गंभीरी नदी प्रसिद्ध नदी है जो पन्ना धाय के समय प्रसिद्ध हुई थी, जहां पर उदय सिंह जी को छुपाया गया था। भाई नदियों के बारे में अगर आपको भी कोई जानकारी है तो आप भी साझा कर सकते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे घर के पास नदी तो नहीं है लेकिन डैम 3-4 हैं, वो भी जंगल पहाड़ से घिरे हुए। और एक श्रोता कहते हैं कि मेरे खंडवा शहर में छोटी आबना और बड़ी आबना नदी बहती है, वही 60 किलोमीटर दूर माँ नर्मदा बहती है। छोटी और बड़ी आबना जहाँ खंडवा का स्थानीय जल ढांचा बनाती है, वहीं माँ नर्मदा पूरे अंचल की आध्यात्मिक आर्थिक और जीवनदायिनी शक्ति है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं लखनऊ की हूँ तो वहाँ गोमती नदी बहती है, और कानपुर ससुराल है तो यहाँ गंगा नदी बहती है जो बहुत पवित्र मानी जाती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे यहाँ नर्मदा नदी क्योंकि हम MP वाले हैं। और एक श्रोता कहते हैं कि ओ बसंती पवन पागल आह रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत, तू कहाँ ये बता चंपा कली देखो नदिया किनारे हे राई, आई कंगना मैं न भूलूंगा मैं न भूलूंगी सुरमई शाम, इस तरह से आए। बहुत सारे श्रोताओं ने आज इस तरह से गाने लिख भेजे हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि तलत महमूद का जिक्र तो किया लेकिन तलत महमूद का गाया हुआ गाना आप लोग सुनाते ही नहीं है, तो अभी जो गाना सुनवाया था फिल्म उसने कहा था उसमें भी तलत महमूद की आवाज़ थी, अब चलिए ये गाना भी सुनिए, जरा देखिए किसकी आवाज है और हमें गीतकार संगीतकार का नाम जरूर बताइए। फिल्म का नाम हम बता रहे हैं लागी नहीं छूटे रामा, गीतकार संगीतकार का नाम आपको बूझना है।

तो भाई आप बताइए कि आवाज किसकी है, लता मंगेशकर की आवाज है और दूसरी वाली आवाज किसकी है? तो आपकी शिकायत दूर हुई या नहीं?

लागी नहीं छूटे रामा फिल्म का गाना था। लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें थी। गीतकार संगीतकार का नाम हमने पूछा था मजरूह सुल्तानपुरी चित्रगुप्त। सभी श्रोताओं ने लगभग सही बताया, कुछ एक श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है, कोई बात नहीं। और आपने जवाब दिया और इस प्रोग्राम से जुड़े हुए ये जानकर हमें अच्छा लग रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि सुरीला सफर में भोजपुरी गीत सुनकर अच्छा लगा। दरअसल ये लोकगीत हैं और जब हम लोकगीत सुनते हैं तो अपने अपने अंचल को याद करते हैं, अपने अपने गांव की मिट्टी को याद करते हैं। लोकगीतों में बसी होती है सोंधी मिट्टी की सुगंध। तो आप अपने गांव को याद कर सकते हैं, कौन सी वो बात है जो शहर में रहते हुए गांव को मिस करते हैं आप, और कितने बरस हो गए अपने गांव गए हुए। और बात नदी की चल रही थी, बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि हमारा गाँव या शहर इस नदी के किनारे। जैसे हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेरे घर के नज़दीक त्रिमुहानी नदी, गंडक नदी आदि बहती हैं। तो ज़रा बताइए कि पिछले दिनों आप कब नदी के किनारे गए थे और सिर्फ घूमने के मकसद से गए हों नदी के किनारे। एक समय था जब नदी के किनारे जाकर पानी भर के लाया जाता था। हालांकि आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो इंटीरियर में हैं जहां पर नदी से घड़े घड़े में पानी भरकर लड़कियां और महिलाएं सिर पर रखकर ले जाती हैं, वहां पानी की किल्लत भी बहुत सारी है। तो आज जब ये बात चली है तो यहां पर एक ये संदेश भी देना जरूरी है।

कि पानी बहुत कीमती है, पानी की बचत भी बहुत ज़रूरी है। जब आप पानी बहाते हैं, वेस्ट करते हैं, तो याद रखें कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर दूर दूर नदी के किनारे से, नदियों से पानी भर के लोग सिर पर रख कर घड़ा ले जाते हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि नदी के द्वीप अज्ञे जी द्वारा लिखी गई कविता है। द्वीप व्यक्ति का प्रतीक और नदी समाज या व्यापक प्रवाह का व्यक्ति समाज से ही आकार पाता है। व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों को दर्शाती है नदी। नदियों को हम माँ समान पूजते हैं, फिर भी नदी की स्वच्छता के बारे में जागरूकता नहीं है। आप किस तरह से जागरूकता फैलाते हैं, क्या संदेश देते हैं अपने बच्चों को, क्या कहते हैं, क्या सिखाते हैं? क्या कभी नदी के किनारे उन्हें ले जाकर घुमाते हैं, या सिर्फ मॉल या और फिल्में सिनेमा दिखाने ले जाते हैं, या फिर पार्क में ही ले जाते हैं, नदी के किनारे ले जाते हैं, ये भी आप हमें बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन में प्रेम के पल, पुरानी यादें और सावन का मौसम मन को असीम आनंद देता है। संकट या जीवन के अंतिम पड़ाव में ईश्वर की भक्ति ही सच्चा सहारा बनती है, जो प्रेम को अमर रखती है। बीता हुआ समय भले ही वापस नहीं आता, लेकिन उसकी खूबसूरत यादें हमेशा दिल में दस्तक देती है। ओ बसंती पवन पागल, और इस गाने को बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, मतलब इस गाने की एक तरह से फरमाइश लिख भेजी है हमारे श्रोताओं ने। तो चलिए हम यही गाना सुन लेते हैं, लेकिन हमारी पहेली भी है शामिल। तो पहेली का जवाब दीजिए कि कौन है इस फिल्म में कलाकार और कहां पर फिल्माया गया है ये गाना, फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। गीतकार संगीतकार का नाम भी आप बता सकते हैं। ये गाना कहाँ फिल्माया गया है, किस जगह पर, किस शहर में, ये भी आप बता सकते हैं।

ओ बसंती पवन पागल, फिल्म जिस देश में गंगा बहती है, लता मंगेशकर की आवाज थी। गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन। ये सवाल भी हमने पूछा था और हीरो हीरोइन का नाम भी पूछा था, पद्मिनी और राज कपूर। और ये भी हमने पूछा था कि कहाँ पर ये गाना फिल्माया गया है। सभी श्रोताओं ने क्या, बहुत ज़्यादा तादाद में श्रोताओं ने जवाब सही दिया, जबलपुर के भेड़ाघाट में फिल्माया गया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बदलते मौसम के साथ ये नदियों की चाल भी बदल जाती है। जब बारिश आती है तो ज़मीन बदल जाती है, गर्मी से सूखे तालाबों में पानी का गली चा बिछ जाता है। मौसम कोई भी हो, वो अपने प्रकृति प्रदत्त स्वभाव में रहता है, इसलिए मौसम के साथ छल छद्म करने का कोई काम नहीं। बारिश में नदी की लहरें अपने उफान पर रहती हैं और लहरों के वेग में भी संगीत का तरन्नुम हवाओं में तिरता रहता है। मौसम का जादू आधा आसमान में खिलता है और आधा जमीन में। शायर बशीर बद्री के माध्यम से कहें तो अजब मौसम है, मेरे हर कदम पर फूल रखता है, मोहब्बत में मोहब्बत का फरिश्ता साथ चलता है।

0: अब एक श्रोता ने लिखा है कि गांव दूर है शहर से 40 किलोमीटर, सड़कें आ गई इसलिए आते जाते रहते हैं। और हमने आपसे पूछा था कि नदी की बातें आप सभी ने लिखी हैं, तो आप सब में से कौन वो लोग हैं जो अक्सर नदी के किनारे जाते हैं, बैठते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, घुमाते हैं और उनसे नदी के बारे में बातें करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बरसात होती है तब मन चाहता है ऊपर के कमरे में खिड़की खोल दें, एकांत हो, रिमझिम बूंदे शरीर पर पड़े और भूतकाल में मन कहीं खो जाए, उन कभी न भुलाए जाने वाले पलों में एक बार फिर खो जाएं। काश कि ऐसा होता कि उन पलों के समय ही हमें ये पता होता कि आने वाली जिंदगी के लिए ये ही पल अविस्मरणीय है, लेकिन हमारी जिंदगी वास्तविकता कुछ और ही है। जिंदगी में कभी भी समय एक सा नहीं रहता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन बात नदियों की बहुत ज्यादा हो रही है, हमारे श्रोता नदियों की बातें कर रहे हैं और नदी वाले गाने भी लिख रहे हैं, तो चलिए ये गाना सुन लिया जाए। आपको बूझना है किसकी है आवाज और कौन है गीतकार और संगीतकार। फिल्म मुझे जीने दो।
1: नदी नारे, हाँ।

मुझे जीने दो फिल्म का गाना था, आशा भोसले की आवाज थी, साहिल लुधियानवी के बोल थे, जयदेव का संगीत था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि ऐसा लग रहा है कि आज लंबे शीर्षक वाली फिल्मों के गाने शामिल किए गए हैं। अब ये तो आप अंदाजा लगा रहे हैं। बहरहाल बहुत सारे श्रोता जो गाने लिख रहे हैं, आज हम वो गाने चुन चुन कर बजा रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका गाना शामिल हो तो आप लिखिए अपनी पसंद इस प्रोग्राम में। एक श्रोता ने लिखा है कि भई आज तो हमारे घर पे मेहमान आए हैं और हम खूब मस्ती के साथ सुन रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि गांव आज भी बहुत भाता है, पर गांव में आज भी बहुत सारी बेसिक सुविधाएं नहीं, खासकर अगर सीनियर सिटीजन है तो बड़ी मुश्किल होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे घर के नज़दीक त्रिमुहानी नदी, गंडक नदी वगैरह बहती हैं। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि हमारे शहर से जीवनदायिनी माँ नर्मदा नदी गुजरती है, जो अमरकंटक से निकलकर खंभात की खाड़ी में लगभग 1380 किलोमीटर लंबी यात्रा करती हैं। पुराणों में कहा गया है कि नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से पाप धुल जाते हैं। एक श्रोता ने गानों की फरमाइश, बहुत सारे गानों की फेहरिस्त लिखी। एक श्रोता लिख रहे हैं कि जब नदियों की बात चली है तो आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के धार जिले में एक नदी बहती है, उसका नाम वाघ है। वहां के पानी में तांबा मिला हुआ रहता है, इस कारण वहां पर भारत का प्रसिद्ध बाघ प्रिंट का काम किया जाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज से करीब 10 साल पहले हम घूमने गए थे, जब वहां से लौट रहे थे तो बहुत जोरों की बारिश होने लगी। हम वही घंटों इंतजार करने लगे कि पत्तों की सरसराहट हो, बिजली का चमकना, पानी की बूंदें टप टप कर गिरी। जब भी बारिश का मौसम आता है तो वो दिन याद आ जाता है। और मेरे शहर के पास गंगा नदी बहती है, और गंगा नदी पवित्र नदी मानी जाती है। बहुत सारे श्रोता ये लिख रहे हैं कि हमारे घर के पास कौन सी नदी बहती है। और अब लेकिन हम यहाँ पर नदी का गाना तो लेकर आए हैं, और बहुत सारे श्रोता भी नदी वाला गाना लेकर आए हैं, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा विषयांतर करते हैं और आपको वो गाना सुनाते हैं जो आपको अपने बचपन की ओर ले जाएगा। एक तरीका है, कुछ बातें माँ सिखाती हैं कि ईमानदारी से रहो, झूठ मत बोलो, और नैतिकता की बातें माँ पिता सिखाते हैं। लेकिन बचपन में एक जो कमाल की बात होती है वो झूठ बोलना। कोई इससे वंचित नहीं रह पाता है। कभी शक्कर चुरा के खा लिया तो झूठ बोलना पड़ा, कभी पाउडर वाला दूध चुरा लिया तो आपको झूठ बोलना पड़ता है, कभी बहुत सारे लोग चुपके से फिल्म देखने चले जाते हैं तो झूठ बोलना पड़ता है, कई बार कहीं पैसे रखे हैं वो चुरा के आपने कुछ चाट चटपटे खा लिए। तो ऐसी कौन सी घटना है आपके जीवन में, आपके बचपन में, वो ज़रा बताइए बेबाकी से और ईमानदारी से बताइएगा कि कब, किस लम्हे में, किस घड़ी में आपने झूठ बोला। तीसरी कसम फिल्म का गाना है, झूठ मत बोलो ये कह रहे हैं, लेकिन आप झूठ वाली बात ज़रूर बताइए। मुकेश की आवाज़।

इस गाड़ी में, इस फिल्म में गाड़ी पर बैठकर कौन है हीरोइन और कौन है हीरो बैठकर जा रहे हैं बताइए। बैलगाड़ी में बैठे हैं हीरो हीरोइन, नाम आपको पूछना है। और साथ में वो झूठ वाली बात भी बताइएगा कि कब झूठ बोला था और डांट पड़ी थी कि नहीं।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, मेरे बाबूजी का बहुत पसंदीदा गीत था, कहते थे कि ये निर्गुण है। और बहुत सारे श्रोताओं ने सब जवाब सही दिया है, बैलगाड़ी में राज कपूर और वहीदा रहमान हैं। और ज़रा ये बताइए कि ये फिल्म किस रचनाकार की रचना पर आधारित थी, किस उपन्यासकार के उपन्यास पर आधारित थी ये फिल्म। और एक श्रोता की टिप्पणी है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बनारस के 80 घाट के पास रहता हूं, जब भी मन में आता है गंगा जी निहारने चला जाता हूं और बहुत सुकून मिलता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे पुणे में मुला मुठा नदियों का संगम है, उपनगरों में पौना राम नदियाँ हैं। अब बात गंगा जी के निहारने की चली है, तो चलिए वो गंगा वाला गाना ही सुन लेते हैं, जो आप सबका पसंदीदा गाना भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है। लेकिन ज़रा पहली बूझिए, गीतकार और संगीतकार का नाम बताइए। और हाँ, हमने पूछा था कि जो अभी गाना सुनवाया, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, ये बात तो हमें सिखाई जाती है, लेकिन बचपन बड़ा भोला मासूम होता है, वहाँ ये बात नहीं पता चलती है, नहीं चलती है। तो कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए आपने झूठ बोला और डांट खाई, ये भी बताइएगा ईमानदारी से। फिलहाल ये गाना जिसके लिए बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है।

ये फिल्म थी फणीश्वर नाथ रेणु की कृति मारे गए गुलफाम पर आधारित ये फिल्म थी और ये हमारा सवाल था गंगा मैया, ये तीसरी कसम फिल्म के लिए जो सवाल पूछा था उसके लिए था ये जवाब। और अभी जो गाना आप सुन रहे थे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ई वो, इसमें हमने आपसे गीतकार और संगीतकार का नाम पूछा था, श्रोताओं की ओर से इसका भी जवाब सही आया है शैलेंद्र और चित्रगुप्त। और एक श्रोता ने लिखा है कि एक बार मैं जब छोटी थी तो दीदी के बच्चे के लिए मिल्क पाउडर और सेरेलिक रखा रहता था जो चोरी करके मैं खा जाती थी, मम्मी डांटती थी पर दीदी ने समझाया कि ये छोटू बेबी का है फिर अलग से वो मुझे भी खाने देती थी। और ये जो चोरी है दूध पाउडर या सेरेलिक तो मुंह पर लगा रह जाता था तो जब आप झूठ बोलते थे तो पकड़ में भी आ जाते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि अपने पिताजी से बचपन में 1 रुपए के लिए झूठ बोला था, वो मार पड़ी कि अभी तक याद है, जीवन भर याद रहेगा। और ऐसे ही जो बातें हैं वो आपको नैतिकता भी सिखाती हैं कि आगे चलकर आप ये सब बातें छोड़ देते हैं, जो डांट पड़ती है मार पड़ती है उससे आप अपने को समृद्ध करते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ई वो भोजपुरी सिनेमा के इतिहास का सबसे पहला और मील का पत्थर माने जाने वाला गीत है। सन 1963 में रिलीज हुई फिल्म भोजपुरी फिल्म है, शीर्षक गीत है। इसे महान गीतकार शैलेंद्र ने लिखा था, चित्रगुप्त ने संगीत तैयार किया था। और बात शैलेंद्र की चली है, इसी महीने में शैलेंद्र की जयंती आ रही है, अगर आपको तारीख याद है शैलेंद्र की जयंती की तो आप जरूर बताएं, इसी महीने में है। अब आगे बढ़ें और आपको सुनवाए ये गाना, जरा बूझिए फिर एक बार गीतकार का नाम, फिल्म है जिद्दी।

जिद्दी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में, हसरत जयपुरी के बोल थे और सचिन देव बर्मन का संगीत था। सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया, एक आध श्रोता ने गलत जवाब भी दिया और हमने आपसे पूछा था शैलेंद्र के लिखे गाने के लिए कि इसी माह में उनकी जयंती है, इसका भी जवाब श्रोताओं ने सही दिया 30 अगस्त। और बहुत सारे श्रोताओं से जब हम सवाल पूछते हैं तो ये भी कहते हैं कि भाई आपकी जानकारी बड़ी समृद्ध है। तो हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि हम तो विविध भारती सुनकर अपनी जानकारी को पुख्ता करते हैं, क्या बात है। और हम सब के लिए रेडियो एक मानक रहा है और पैमाना रहा है कि यहाँ से जो भी जानकारी दी जाती है वो सही होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन में सुख दुख, खुशी या गम खुद की किस्मत अब कुछ पहले से तय है, नियति के परे कुछ भी नहीं, तभी तो वो हमें किसी अनजान से मिलाती है और ऐसे कि जैसे कभी अलग थे ही नहीं। संवेदनाओं के अंबार उमड़ते हैं जब उसके करीब या ख्यालों में खोते हैं। दुनिया में जैसे खुशी के एहसास के सिवा कुछ भी नहीं है। और मेरे ख्याल से इबारत पढ़कर इन्होंने ये अपनी बात लिखी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हृदय में दुख का सागर उमड़ता है और मन वैराग्य से जुड़ता प्रतीत होता है, जो वियोग श्रृंगार के आध्यात्मिक भक्ति यानी लौकिक से अलौकिक की यात्रा की शुरुआत हो सकती है। ये भी इबारत से जुड़ी हुई बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि इन गानों को सुनते हुए मन बड़ा भावुक हुआ, क्योंकि बचपन की बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं। अब जरा सुनिए ये गाना और बताइए कि कौन है हीरो और कौन है हीरोइन फिल्म तेरे घर के सामने। इस गाने का भी जिक्र बहुत सारे श्रोताओं ने किया है।

तेरे घर के सामने फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज, शब्दकार हसरत जयपुरी, संगीतकार सचिन देव बर्मन और कलाकार देव आनंद और नूतन। इसका भी जवाब श्रोताओं ने सही दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि सदाबहार और शानदार प्रस्तुति, आज आपने सुरीला सफर में फिल्मों के शानदार गीत सुनवाए और श्रोताओं की टिप्पणियां भी शामिल की। तो और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि सुंदर गीतों से सजा ये कार्यक्रम, आभार आपका। दरअसल आभार आप सभी श्रोताओं का कि इस प्रोग्राम से जुड़े हुए थे। और अब अभी भी हमारे बहुत सारे श्रोता गानों की लिस्ट लिख रहे हैं और बहुत सारे गाने तो आज हमारे आपके बिल्कुल मैच हो गए। अब देखिए ये गाना भी आपके दिल के करीब है या नहीं। फिल्म अभिमान, जरा बताइए किस हीरोइन पर फिल्माया गया है ये गाना। संगीतकार का नाम बताइए और हीरोइन का नाम बताइए। फिल्म अभिमान।

अभिमान फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे सचिन देवबर्मन का संगीत था, जया भादुड़ी पर फिल्माया गया था ये गाना। हमारा सवाल था और सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब बहुत जल्द दिया, कम समय में दिया, सही दिया, सचिन देवबर्मन ये भी सही जवाब था। आज का सुरीला सफर प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब आज का सफर

0: के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर जोर दिया। ओणम का त्योहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। पूर्वी और उत्तर पूर्वोत्तर राज्य में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और यहां व्यापक अवसर, निरंतर वृद्धि, युवा आबादी, बढ़ती खपत तथा तेजी से विकसित हो रहे पूंजी बाजारों का अनूठा संयोजन निवेश के मजबूत अवसर प्रदान करता है। कनाडा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय के प्रमुख सदस्यों को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने ये बात कही।
1: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत में हो रहा बदलाव केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक और संरचनात्मक परिवर्तन है। तेजी से हो रहा शहरीकरण, बढ़ता मध्यम वर्ग और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
0: वित्त मंत्री ने कहा कि देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे ने वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं तक पहुंच का दायरा बढ़ाया है। भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कनाडा में भारतीय प्रवासी दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक सेतु है।
2: इंडिया कनाडा बायलैटरल रिलेशंस हैव सीन
1: भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों में हाल के समय में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इन संबंधों को हमारे साझा लोकतांत्रिक और बहुलतावादी मूल्यों, बढ़ते आर्थिक सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क ने मजबूत किया है।
2: ब्रिज बिटवीन टू वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज एंड टू इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमीज।
0: श्रीमती सीतारामन ने जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नए सिरे से मजबूत करने को लेकर बनी सहमति का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों ने भविष्य केंद्रित रणनीतिक साझेदारी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। श्रीमती सीतारामन 4 दिवसीय यात्रा पर कल टोरंटो पहुंची। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय क्षेत्र के प्रमुखों से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मौजूद कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जापान यात्रा के दौरान भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने और देश की भूमिका को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका शीर्षक से सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच के साथ प्रभावी संघर्ष निवारण व्यवस्थाओं के समर्थन का आह्वान किया।
3: खाद्य असुरक्षा सशस्त्र संघर्षों के सबसे गंभीर मानवीय परिणामों में से एक है। आज के संघर्षों का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। ऊर्जा बाजारों, उर्वरक आपूर्ति, समुद्री परिवहन, मानवीय सहायता की व्यवस्था और कृषि व्यापार में होने वाले व्यवधानों से स्पष्ट है कि किसी क्षेत्रीय संघर्ष से वैश्विक खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।
4: Highly import dependent.
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी

0: स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। नई दिल्ली में दिल्ली लक्ष्मी योजना के स्वीकृति पत्र सौंपते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि योजना के शुभारंभ के बाद से 9,22,000 से अधिक महिलाओं ने इसके लिए पंजीकरण कराया है।
1: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहने हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
0: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये वित्तीय सहायता महिलाओं को बच्चों की देखभाल और शिक्षा, घरेलू आवश्यकताओं और आजीविका तथा व्यवसायिक गतिविधियों में सहायता जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा ए के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA H1N1 का कहना है कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। IMA ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स न लेने की सलाह दी है। IMA ने विशेष रूप से एजिथ्रोमाइसिन, एमिक्सुलिन, क्लूवेंटनेट और सेफिक्साइमिम जैसी एंटीबायोटिक्स नहीं लेने की चेतावनी दी है। IMA ने बताया है कि H1N1 में आमतौर पर अचानक तेज बुखार और ठंड लगना, लगातार सूखी खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में तेज दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अन्य लक्षणों में सिरदर्द, नाक बहना या बंद होना, मतली, उल्टी और दस्त शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट, CSIR नेट तथा ICAR, AIEEPG और AICE PhD 2026 परीक्षा के अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम इस सप्ताह जारी करेगी। एजेंसी ने बताया है कि परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के लिए महिला सशक्तिकरण केवल चुनावी नारा है। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस विधेयक का विरोध किया और सदन में इसके पारित होने में बाधा डाली। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की कांग्रेस शासित सरकारों में महिला मंत्रियों की अनुपस्थिति को लेकर राहुल गांधी से सवाल किया। आकाशवाणी कोलकाता ने आज प्रसारण के 100वें वर्ष में प्रवेश किया है। आकाशवाणी कोलकाता की शताब्दी यात्रा का ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: आकाशवाणी कलकत्ता ने आज अपना शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया है, जो बंगाल में प्रसारण की इतिहास का एक महत्वपूर्ण पर्व है। केंद्र ने 26 अगस्त 1927 को अपना पहले बंगाल प्रसारण शुरू किया था। पिछले 100 वर्षों में आकाशवाणी कलकत्ता बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। समाचार, संगीत, साहित्य, नाटक, शिक्षा और जनसेवा कार्यक्रम के माध्यम से इसने कई पीढ़ियों के श्रोताओं को जोड़ा और ज्ञान चर्चा को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रसार के अधीन ये केंद्र आज आधुनिक माध्यमों के जरिए श्रोताओं तक पहुंचने के साथ साथ अपनी समृद्ध विरासत को भी संरक्षित कर रहा है। संदीपन दासगुप्ता के साथ अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मना रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: तिरुओणम के अवसर पर पारंपरिक पुष्प सज्जा ओण पुक्कलम से उत्सव की शुरुआत हुई। इसे पौराणिक राजा महाबली के स्वागत के लिए बनाया जाता है। फसल का यह प्रमुख पर्व सभी केरल वासियों द्वारा उत्सव के साथ मनाया जाता है। सबरीमाला, अरुणमुला और गुरुवायूर सहित राज्य के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। पारंपरिक केरल भोज ओण साध्या भी तिरुओणम के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है। आज राज्य भर में आधिकारिक आयोजनों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक खेल आयोजित किए जाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: वहीं पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलादुन नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं।

0: इसके लिए जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी समाचार के पूर्व समाचार वाचक पंचदेव पांडे का आज निधन हो गया। उन्होंने 1963 में आकाशवाणी वाराणसी से उद्घोषक के रूप में अपने सफर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1983 से 1997 तक आकाशवाणी दिल्ली में समाचार वाचक के रूप में अपनी सेवाएं दी। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राजस्थान, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शनिवार तक तेज हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने अगले सप्ताह देश में बारिश कम होने की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में कल आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में हुई बारिश के बाद महानदी का जलस्तर बढ़ने से उड़ीसा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: उड़ीसा में ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के बाद कटक के मुंडली में लगभग 6,70,000 क्यूसेक पानी पहुंचा, जिससे महानदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। बाढ़ का पानी आरड़ी, सुंदरपुर, नंदापुर और उलाक पंचायत को प्रभावित कर रहा है। 6 जिलों में 1,00,000 से अधिक लोग प्रभावित है। अधिकारी नदियों के जलस्तर और संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखे हुए है। IMD ने आज उड़ीसा के लिए बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन कल भारी बारिश का अनुमान जताया है। दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: उधर उत्तरी नेपाल में आज सुबह अचानक आई भीषण बाढ़ ने सीमावर्ती बस्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया है और निचले इलाकों के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ सुबह तिब्बत की दिशा से आती हुई भोटे कोशी नदी में उमड़ी। नेपाल की सेना ने एक बयान में कहा कि पानी के अचानक बढ़ने से रसुवा जिले के तिरुमुरे और पास के सियाफुरुबेसी इलाके में भारी तबाही हुई है। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT और नेटफ्लिक्स ने कहानी कहने वालों की अगली पीढ़ी को समर्थन देने के लिए 100 भारतीय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को 6 व्यावसायिक कार्यक्रमों में 80% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनमें 1 वर्षीय 2 डिप्लोमा कार्यक्रम और 6 माह के 4 प्रमाण पत्र कार्यक्रम शामिल हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव और IICT बोर्ड के अध्यक्ष चंचल कुमार ने कहा कि भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस वर्ष अगस्त में नेटफ्लिक्स के सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस के साथ हुई बैठक के बाद की गई है। भारत ने अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों के लिए स्वदेशी पैराशूट तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की आगरा स्थित ADRDE द्वारा डिजाइन और विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का लद्दाख के न्योमा के मुद ड्रॉप जोन में सफल परीक्षण किया गया। ये दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में शामिल है। इस दौरान प्रशिक्षित जंपरों ने शून्य से नीचे करीब 15 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मुकाबले के चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 185 रन बना लिए हैं। इससे पहले श्रीलंका की टीम पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2,500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर दिया जोर। ओणम का त्योहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी

साथियों को हमारा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है मोहम्मद रफी और नंदा की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले।

आइए अब सुना जाए अगला गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने। तर्ज है शंकर जय किशन की, फिल्म का नाम है मेरे हुजूर, और इस गीत में आवाज़ आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी की।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है शिकार।

0: ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन और इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं अगला सदाबहार गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है झुक गया आसमान।
1: कौन है जो सपना

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: कुछ दिल ने कहा,
4: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की,
3: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
4: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
3: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
5: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
4: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
3: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब 3 चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
4: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
3: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
4: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
5: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
4: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
5: जैसे तो है पास मेरे, तेरे पास मैं।
4: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है आशा भोसले की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है ओपी नैयर का, फिल्म का नाम है हम साया।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली आपका नाम क्या है?
2: अरे ममता जी पहले नमस्कार कर लूँ। ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। और अब आपके मैं सवाल का जवाब देना चाहती हूँ या पूछना चाहती हूँ।
1: वो तो बता दिया आपने,
2: पर आप ये क्यों पूछ रही थी?
1: यही तो सवाल है कि क्यों पूछ रही थी कि मैं जानना चाह रही थी कि आप चौंकिए कि आखिर ये सवाल क्यों पूछा। हम तब चौंक जाते हैं जब कोई हमसे पूछता है कि आपका नाम क्या है, बता दिया। आपके पिता का नाम क्या है, बता दिया। आपके पति का नाम क्या है, बता दिया। आपके सब कुंडली पूरी बता दी। लेकिन तब हमें चौकन्ना होना पड़ता है जब कहीं भी जाओ तो आपको बाध्यता के रूप में पूछ कहा जाता है कि आप अपने पति का नाम भी लिखो या फिर पिता का नाम लिखो, ठीक है वहां तक भी, और आपका सरनेम भी जरूरी है। फिर अगला सवाल आता है कि आपका शादी के पहले क्या नाम था और शादी के बाद, तो शादी के बाद आपने नाम नहीं बदला, नहीं बदला, क्यों नहीं बदला? तो शादी के बाद सरनेम नहीं बदला, नहीं बदला, क्यों नहीं बदला? ये अक्सर सवाल होता
2: हम महिलाओं को इन इन सवालों का सामना करना पड़ता है।
1: पुरुषों को क्यों नहीं करना पड़ता?
2: पुरुष जवाब दे।
1: तो आज हमारे लगता है कमेंट बॉक्स सखाओं से भरेंगे और हमारे सखा जवाब देंगे इसका।
2: हाँ, पता नहीं जवाब देंगे या फिर डर के मारे जवाब भी नहीं देंगे,
1: खामोश बैठ जाएंगे। तो ठीक है, सखियां सखा हमारे इनबॉक्स में, मतलब कमेंट बॉक्स में ये लिखें कि क्या कारण है। तो असल में तो ये सदियों से परंपरा चली आ रही है कि पुरुष सत्ता समाज रहा है, लेकिन अब जब महिलाएं बाकायदा बराबरी से कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, बल्कि आगे चल रही हैं, आप शिक्षा व्यवस्था हो या और कोई क्षेत्र हो जहां महिलाएं आगे बढ़ रही हैं पुरुषों से भी आगे, तो फिर अभी भी उन सवालों से जूझने की क्या जरूरत है? तो उन सवालों से भी आगे बढ़ जाना चाहिए, है ना?
2: या फिर अगर कोई महिला यानी जो अभी युवतियां हैं वो चाहती हैं कि हम अपने मायके का नाम ही लगाएं, तो उसमें भी उन्हें इजाजत आराम से मिल जाना चाहिए या उनकी उनके लिए सहमति होना चाहिए। ऐसे नहीं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ना हो, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज का विषय है नारी की पहचान बने उसका अपना नाम।
1: बिल्कुल, और अपने नाम से पहचानी जाए ये हमारा मुद्दा है, लेकिन हमें इंतजार रहेगा कि हमारे श्रोताओं के क्या विचार है

0: दुखद हो जाती है, तकलीफ देह हो जाती है।
1: यानी कि अगर आपने बहुत अच्छी साड़ी पहनी है तो मुझे थोड़ी सी ईर्ष्या हो जाएगी कि अरे काश मेरे पास भी ऐसी साड़ी, तो ये ईर्ष्या चल जाती
0: सहज ईर्ष्या है
1: कि चलो हम भी ले सकते हैं। ममता जी खुद ही कहें कि सोनाली पहन लेना किसी दिन
0: और ये कहें कि आप जो लड्डू खा रही हैं बहुत अच्छे लड्डू बनाती हैं तो ये सब ऐसी तारीफ जो होती है एक सहज ईर्ष्या होती कहलाती है। लेकिन जब ईर्ष्या रूप ऐसा ले ले
1: कि विकराल रूप ले,
0: विकराल रूप ले ले और आपके पीछे मतलब बुरा रूप ले ले तो फिर ठीक नहीं होता। तो इसमें हमारे श्रोता बताएं कि उनके अपने क्या अनुभव हैं, क्या कभी ऐसे लोगों से सामना पड़ा कि जो ईर्ष्या के कारण जिनसे आपके रिश्ते खराब हो गए हों, या फिर ईर्ष्या के कारण आपका कोई नुकसान पहुंचा हो, आपके करियर में बाधा पहुंची हो ईर्ष्या, तो बताएं।
1: हमारे बहुत सारे साथियों ने, बहुत सारी सखियों ने इस विषय पर लिखा है, पर हर बार ऐसा ही होता है कि हमारे साथी लिखते हैं पर अपने बारे में नहीं लिखते हैं,
0: दूसरों के बारे में
1: उनके क्या विचार है या उनके क्या उदाहरण है, उन्हें कैसे जूझना पड़ा इस शब्द से या इस बात से। अपने बारे में लिखे तो ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा। और व्यंजन, रक्षाबंधन के विशेष व्यंजन, जैसे महाराष्ट्र की बात की जाए, यहाँ पर कच्चे नारियल के व्यंजन बनते हैं जैसे नारली भात कहते हैं या फिर नारियल की बर्फी कहते हैं। तो आपके क्षेत्र में कौन से, आपके घर में कौन से व्यंजन बनते हैं और उसकी विधि लिखकर भेजिए। बहुत सारे श्रोताओं ने भर भर के मिठाइयों के नाम लिखकर भेज दिए हैं पर उसके विधि लिखे ना, तो हम भी लोगों को पढ़ के सुनाए तो उनके घर में भी
0: हो सकता है इसी रक्षाबंधन पर जो 28 तारीख को है तो उस रक्षाबंधन पर वही मिठाई बन जाए जो हमारे श्रोता लिख भेजे। और ओणम का पर्व और ईदे मिलाद
1: जी,
0: तो ईदे मिलाद के बारे में हम बात करेंगे, ओणम के बारे में बात करेंगे। फिलहाल एक गाना सुनवाते हैं ये।

0: ये गाना हमारे श्रोता सुन रहे थे और सोनाली, आज ईद मिलाद है और इस दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था और इनके जन्मदिन के साथ साथ इनके स्मृति दिवस के रूप में भी आज के दिन को याद किया जाता है।
1: और ईद मिलाद का सबसे महत्वपूर्ण संदेश प्रेम, दया और इंसानियत का है और पैगंबर मोहम्मद ने लोगों को सत्य, सदाचार, करुणा और ज़रूरतमंदों की सहायता करने की सीख दी थी और यही अपने व्यवहार में लाने का संदेश था कि विनम्रता और मानवता को स्थान देने की प्रेरणा ये दिन देता है।
0: बिल्कुल, इस दिन कई स्थानों पर धार्मिक सभाएं होती हैं, जुलूस और सामूहिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और ज़रूरतमंदों की मदद की जाती है।
1: और आज एक और खास दिन है, आज ओणम है और ओणम केरल का प्रमुख और अत्यंत लोकप्रिय त्यौहार है। प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और समृद्धि का प्रतीक ये दिन माना जाता है।
0: बिल्कुल, ओणम के अवसर पर घरों की साफ सफाई की जाती है जो हर त्यौहार पर की जाती है और आंगन में रंग बिरंगे फूलों से सुंदर सजाया जाता है और पुक्कलम सजाया जाता है,
1: उसे जो फूलों की रंगोली होती है उसे पुक्कलम कहते हैं।
0: और पूरा वातावरण उत्सव और उल्लास से भर उठता है।
1: और ऐसा कहा जाता है कि ओणम का संबंध राजा महाबली से जुड़ी पौराणिक कथा से है। मान्यता है कि राजा महाबली अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और उनके राज्य में सुख समृद्धि थी। माना जाता है कि ओणम के समय महाबली अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आते हैं, इसलिए लोग उनका स्वागत बड़े प्रेम और उत्साह से करते हैं।
0: ओणम हमें केवल उत्सव मनाना ही नहीं सिखाता बल्कि प्रेम सिखाता है, समानता की भाव, भाईचारे और प्रकृति के सम्मान का संदेश भी देता है। ओणम फूलों की तरह अलग अलग रंगों और विविधताओं से भरा ये पर्व हमें मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देता है। ओणम केरल की संस्कृति, परंपरा और खुशहाल जीवन का सुंदर प्रतीक भी माना जाता है ओणम।
1: और ये पर्व का आकर्षक हिस्सा ओणम सद्या है ममता जी, वो जो थाली होती है ना केले के पत्ते पर, केले के पत्ते पर सारे व्यंजन परोसे जाते हैं, अनेक पारंपरिक व्यंजन, उसमें परिवार और समाज एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, साथ ही नौका दौड़, पारंपरिक नृत्य गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम ओणम के उत्सव को और भी जीवंत बनाते।
0: बिल्कुल सही करे, और केले के पत्ते की बात से याद आई कि अभी यहाँ मुंबई में या कई शहरों में ऐसे कई रेस्टोरेंट है जहाँ पर केले के पत्ते पर खाना मिलता है तो कितना स्वाद बढ़ जाता
1: बहुत
0: है,
1: बहुत स्वाद बढ़ जाता है, यानी वो देख के ही हम इतने प्रसन्न हो जाते हैं और मन प्रसन्न हो तो खाना हमें अच्छा ही लगता है।
0: बिल्कुल, और जब गाने सुनते हैं तब भी प्रसन्नता भर जाती है। सुनते हैं ये गाना चोरी चोरी फिल्म का।

0: सोनाली जी, वैसे महिलाओं से अगर पूछा जाए कि आपको कौन सी साड़ी पसंद है तो बताना मुश्किल हो जाएगा,
1: बहुत मुश्किल हो जाएगा ये कहूँ या वो कहूँ, इसकी ये खासियत है तो उसकी वो खासियत है,
0: यहाँ जाने के लिए वो साड़ी, फलानी जगह जाने के लिए दूसरी साड़ी चाहिए। तो साड़ियों का भरमार हो लोगों के पास तो भी साड़ी से दिल नहीं भरता है
1: और भरना भी नहीं चाहिए।
0: साड़ी दरअसल अपने देश की परंपरा है और पारंपरिक साड़ी, पारंपरिक पोशाक भरा किसी अच्छा लगता है। तो इतने तरह की साड़ियां हैं कि जिसमें चूज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आजकल लोग साड़ियों के प्रकार के बारे में बहुत ही जागरूक हो गए हैं कि फला साड़ी ही हमें फला मौके पर पहननी है, और हम इसीलिए साड़ी के बारे में हर हफ्ते लेकर आते हैं जानकारियां थोड़ी बहुत। आज बालारामपुरम साड़ी के बारे में हम जानकारी देंगे,
1: जो ओणम का त्योहार है तो क्यों ना हम केरल की
0: बात करें। तो बताइए क्या खासियत है।
1: बालारामपुरम साड़ी केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के बालारामपुरम क्षेत्र की प्रसिद्ध पारंपरिक हथकरघा साड़ी है और लगभग 200 वर्षों से चली आ रही इसकी बुनाई परंपरा का संबंध त्रावणकोर के राज परिवार से माना जाता है।
0: और इस साड़ी में प्राकृतिक बिना रंगे और सूती धागे का प्रयोग किया जाता है। इसकी महीन बुनावट इसे हल्का और आरामदायक बनाती है। इसकी सबसे पहचाने जाने वाली जो विशेषता है वो ये है कि किनारे और पल्लू पर दिखाई देने वाली सुनहरी जरी, जिसे केरल में कसावू कहा जाता है, ये होती है।
1: यानी इसका कलर सिर्फ क्रीम, ऑफ व्हाइट या प्राकृतिक सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर सुनहरा बॉर्डर होता है और कहीं कहीं छोटे बुट्टे और रंगीन धागों का प्रयोग भी मिलता है और पारंपरिक पिट लूम और हाथ से नियंत्रित बुनाई इसकी विशिष्ट पहचान है। कुछ डिजाइनों में बुनाई के कारण बॉर्डर पर हल्की उभरी हुई धारियां भी दिखाई देती है।
0: और बालारामपुरम साड़ी को जो पंजीकृत किया जाता है इस
1: GI Tag के रूप में,
0: इस प्रमाण पत्र की तारीख 19 मार्च 2009 है
1: और उन्हें GI Tag मिला हुआ है।
0: और इसके अलावा बालारामपुरम की बुनाई परंपरा को त्रावणकोर के महाराजा बालाराम वर्मा के समय से जोड़ा जाता है और राजपरिवार के लिए महीन वस्त्र तैयार करने के उद्देश्य से तमिलनाडु के तुरुनेलवेली क्षेत्र से कुशल बुनकर परिवारों को यहाँ लाया गया था और धीरे धीरे यही कला बालारामपुरम की सांस्कृतिक पहचान बन गई।
1: और ये जो साड़ियां हैं ना ममता जी, बालारामपुरम साड़ी विशेष रूप से ओणम, विवाह, मंदिर दर्शन

0: अन्य शुभ अवसरों पर पहनी जाती है। इसकी सादगी और सुनहरी किनारी के कारण पारंपरिक होने के साथ साथ बेहद सुरुचिपूर्ण दिखाई देती है।
1: और बालारामपुरम साड़ी में केरल की धरती की सादगी भी होती है, सुनहरी कसाऊ में उसकी सांस्कृतिक समृद्धि भी झलकती है, तो इसलिए ये साड़ी बेहद खास होती है और केरल के लोग तो इसे बहुत पसंद करते
0: और
1: हैं।
0: और है ना, वो ऑफ वाइट कलर की साड़ी है, फिर गोल्डन कलर के गहने हैं, और उसके बाद में लंबी सी चोटी, उसमें गजरा लगा के, वो सफेद कलर का तिलक लगा के, जो जो महिलाएं दिखती है इतनी सुंदर लगती है। और फिर अगर सामने केले के पत्ते पे व्यंजन हो और इसे बैठ के खाया जाए तो कितना सुंदर वो
1: क्या
0: माहौल
1: बात है, वो आभा अलग ही होती है और एक गरिमामान व्यक्ति तो लगता है देखकर।
0: जी
1: अब एक गाना सुनवाते हैं और दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं।

ममता जी, हमारे बहुत सारे साथियों ने ईर्ष्या शब्द हमारा विचार आपके में बहुत सारे कमेंट्स लिखकर भेजे हैं। एक साथी कहते हैं, ईर्ष्या मन की वो आग है जो दूसरों को नहीं सबसे पहले हमें ही जलाती है। किसी की सफलता से जलने के बजाय उससे प्रेरणा ले और अपने रास्ते पर आगे बढ़े। अगर मन में ईर्ष्या नहीं हो

0: तो जीवन बहुत अधिक सुंदर होगा। ये इन्होंने बात
1: हाँ
0: बहुत
1: हाँ
0: सही लिखी। साथ ही एक साथी कहते हैं कि जलन को दूसरे शब्दों में ईर्ष्या कहा जाता है। जलन का स्वभाव अग्नि तुल्य है। जैसे अग्नि अपने समीप में आई वस्तु को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ईर्ष्या मानव की बुद्धि को नष्ट कर देती है। दूसरे की प्रगति को देख नहीं सकना जलन की भावना है। ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। यही नकारात्मक सोच उनके पतन का कारण बनता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह की ईर्ष्या ना करें। एक हमारी सखी हैं जो लिख रही हैं कि कभी भी ईर्ष्या को कम करके नहीं आंकना चाहिए। आपके सबसे करीबी शुभचिंतक भी शायद आपको खुद से ज्यादा सफल होते देखकर ईर्ष्या से भर उठते हैं। जब कोई नकारात्मक ईर्ष्या से प्रेरित होता है तो वो सफल व्यक्ति की कामयाबी के प्रति हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करता है। ईर्ष्या एक ऐसा दानव है जो अलग अलग मौकों पर अप्रत्याशित ढंग से उभरता है। सवाल तो यह है कि आप ईर्ष्या करना छोड़ सकते हैं, लेकिन जब दूसरे आपसे ईर्ष्या करें तब आप क्या करें?
0: जवाब दीजिए।
1: तब बस और कोई रास्ता नहीं होता है कि आप उन्हें नजरअंदाज करें।
0: ये
1: इसके
0: सही
1: अलावा
0: बात
1: और
0: है।
1: कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अगर ईर्ष्या करने वाले से आप लड़ने भिड़ने गए, बहस करने गए, तो और मुसीबत में पड़
0: हमारे हाथ
1: जाएंगे।
0: जल जाएंगे।
1: और एक हमारी और सखी लिख रहे हैं कि जलन को दूसरे शब्दों में ईर्ष्या कहा जाता है। जलन का स्वभाव अग्नितुल्य है। जैसे आपने पढ़ी तो नहीं
0: जी
1: टिप्पणी,
0: जी जी
1: तो जैसे अग्नि अपने समीप से आई वस्तु को जलाकर राख बना देती है, वैसे ही ईर्ष्या मानव की बुद्धि को नष्ट कर देती है।
0: एक साथी ने लिखा है कि ईर्ष्या एक ऐसा नकारात्मक मानसिक भाव है जो मनुष्य को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला कर देता है। ईर्ष्या का अर्थ है दूसरों की प्रगति, सुख या ऐश्वर्य को देखकर बिना किसी वास्तविक कारण के खुद दुखी होना। यानी ये जो है ना, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, खुद हमेशा दुखी ही रहते हैं। और जब हम दुखी रहेंगे ना, तो हमारा घर, हमारा जो मन है, शरीर है, वो हमेशा निराशा का घर बन के रह जाएगा और हम आगे बढ़ ही नहीं सकते।
1: बिल्कुल। कई बार तो ईर्ष्या इतनी मतलब जरा जरा सी बात में होती है कि दो दोस्त हैं और तीसरा आपको देख रहा है, तो दोस्तों को, दो दोस्तों के बीच प्रेम स्नेह देखकर भी लोग ईर्ष्या करते हैं कि अरे देखो
0: कितनी अच्छी
1: कितनी
0: दोस्ती।
1: अच्छी दोस्ती है, हमारे पास नहीं है। कि किसी के घर को देख के ईर्ष्या होती है, किसी की कामयाबी देखकर ईर्ष्या होती है, किसी की प्रतिभा देखकर ईर्ष्या होती है। मतलब ईर्ष्या के कुछ कारण नहीं है,
0: उसकी कोई
1: लोग
0: परिभाषा ही नहीं है।
1: जरा जरा सी बात पे लोग ईर्ष्या करते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ईर्ष्या का तात्पर्य है पराई उन्नति से दुखी होना। ये एक ऐसा अवगुण है जो मनुष्य को आत्मविनाश की ओर धकेल देता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति सदैव अशांत रहता है और दूसरों के अहित की कामना करता है। भाई ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए।
0: एक साथी कहते हैं ममता जी कि बहुत से लोगों की ये फितरत होती है कि कोई भी उनका अपना उनसे किसी भी क्षेत्र में आगे निकल जाए तो उनको सहन नहीं होता और वो उसको पीछे लाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो ये ईर्ष्या नहीं, जलन होती
1: तो बस ये ईर्ष्या जलन दोनों सखियां हैं,
0: है।
1: बहनें हैं, इनसे दोनों से दूर रहना चाहिए। और हमें दूर नहीं जाना है, करीब आना है सखी सहेली के, लेकिन एक ब्रेक के बाद।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली, और बात चल रही थी ब्रेक पे जाने से पहले ईर्ष्या की कि किस बात पर। अच्छा सोनाली जी बताइए, आपको कभी किसी से ईर्ष्या हुई है?
1: पता नहीं, मुझे तो ऐसे ईर्ष्या होती नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी मिलती है ममता जी अगर कोई आगे जाता है,
0: और
1: कोई
0: अपना
1: अच्छा
0: कोई
1: रहता।
0: खास तौर से अगर आगे बढ़ता है तो खुशी मिलती है।
1: हाँ
0: लेकिन हाँ, कई बार बचपन में पढ़ाई लिखाई में जो सहेलियां होती थी उन्हें देखकर लगता था कि काश ये गुण हमारे पास भी होता। लिखने की जो ताकत क्षमता होती थी,
1: जी
0: पढ़ने में जो तेज होती थी, तो लगता था कि हम भी इतने

0: मार्क्स पा जाए तो अच्छा,
1: या फिर कोई हमारी सहेली टीचर की कोई फेवरेट हुआ हाँ, करती थी, तब लगता था अरे ये हमारी टीचर इन्हीं का नाम लेती है
0: और हमारा नहीं लेती है। ये एक सहज ईर्ष्या होती है, हाँ, बचपन की जो ईर्ष्या होती है सहज होती है, लेकिन बड़े होने पर जो किसी की कामयाबी पर जलन हो वो ठीक नहीं होता है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ईर्ष्या करना इंसान की एक कमजोरी ही नहीं बल्कि एक बुरा अवगुण है। कुछ लोग ईर्ष्यालु होते हैं, उनकी आदत सुधारने पर भी सुधरती नहीं है। और एक श्रोता ने और लिखा है कि ईर्ष्या एक दुर्गुण है। आपके पास जो टिप्पणी है जरा पढ़कर सुनाइए क्या लिखा
1: है। एक साथी कहती है, मनुष्य है तो हमें भी अपने ईर्ष्या द्वेष का सामना ही करना पड़ता है, और वो भी बचपन में। कभी किसी को गुब्बारे घड़ी आदि मिल गए, हमारे पास नहीं रहे, किंतु जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे ऐसी भावनाएं प्राय कम होती चली जाती है। अंत में स्वीकार कर लिया जाता है कि जे ही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। ये तो बहुत सही है। एक साथी कहते हैं कि शब्द हमारा विचार आपके ईर्ष्या भाई, ईर्ष्या एक मानवीय गुण है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, किंतु षड मनोविकारों काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या द्वेष में इनकी गणना अवश्य है, और इससे बचते रहने का निर्देश भी है। यद्यपि ईर्ष्या किसी के प्रति उत्पन्न हुए द्वेष के मानसिक उद्वेग का ही परिणाम है, इससे दूर रहने के लिए उद्वेग को यहीं पर रोकना उचित है।
0: भाई तरह तरह की बातें हमारे श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी सखी है कि भाई ईर्ष्या तो इतनी भी नहीं चाहिए कि मेरी सामने वाले पड़ोसन तो इतनी ईर्ष्या करती है, जब मैं सवेरे नाश्ता चाय बनाऊं और हमारे बूढ़ों अगर उसे आंगन में क्या समझ भी नहीं आया कि आंगन में गिरे आम के पत्ते सहेजते झाड़ू मारते दिखे, मतलब घर के बुजुर्ग की बात है कि झाड़ू मारते दिखे तो वो भी आंगन में झाड़ू मारने निकल पड़ती है चाहे आंगन में कुछ भी ना हो। भाई तो गजब की ईर्ष्या, अच्छा इसी बहाने साफ सफाई
1: हो जाएगी।
0: एक सखी है जो लिख रही है कि ईर्ष्या या जलन भाई बहनों में, भाई भाई या पड़ोसियों की तरक्की से रहन सहन में हो जाती है। दरअसल ये ईर्ष्या स्वाभाविक और सहज होती है। ईर्ष्या करना इंसान की एक कमजोरी नहीं बल्कि एक बुरा अवगुण है, और बहुत सारे श्रोता इस तरह की बात लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ईर्ष्या विषय पर आप लोग बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रही हैं, ईर्ष्या विषय पर इसमें नकारात्मक ईर्ष्या का जिक्र किया गया है, क्या ईर्ष्या सकारात्मक और नकारात्मक भी होती है, क्या उदाहरण देकर समझा सकती हैं आप? भाई देखिए ये कोई पाठशाला तो है नहीं कि हम आपको समझा सकें। हम यहाँ पर ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर श्रोताओं की टिप्पणियों के साथ हम अपनी बात अपने विचार साझा करते हैं आपसे, तो हम अपने विचार यही साझा कर रहे हैं कि ईर्ष्या जब सकारात्मक होती है तो ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी की कामयाबी को देखकर लग रहा है कि काश हम भी इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाते, ऐसा कुछ कर पाते, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी,
1: और अगर
0: तो,
1: हम मेहनत करने लग गए
0: तो फिर वो सकारात्मक हो गए। हाँ। और अगर हम सिर्फ जलते कुटते रहे तो वो नकारात्मक ही हो गए,
1: घर में बैठे रहे और बस जलते ही रहे, कुछ मेहनत ही नहीं की हमने,
0: बिल्कुल
1: तो वो नकारात्मक हो जाती है।
0: तो ईर्ष्या से जुड़ी हुई तमाम बातें हमारे श्रोता लिख रहे हैं, लेकिन ये नहीं लिखा कि कब उन्हें किससे ईर्ष्या हुई,
1: और कई व्यंजन भी नहीं लिखे।
0: हमें इंतजार है, अभी तो प्रोग्राम बाकी है, व्यंजन तो लिख भेजेंगे
1: कि आपके घर में कौन सी मिठाई बनती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और ईर्ष्या कई बार हमारे श्रोताओं ने यह भी लिखा कि महिलाओं में ज्यादा होती है, महिलाओं में तब होती है जब उसके साथी को शेयर करने की कोई कोशिश करे, तो महिला निश्चित रूप से लड़ पड़ती है, और बहुत सारी फिल्में इस पर बनी है,
1: इस विषय पर बनी है
0: कि जब दो महिलाएं आपस में ईर्ष्या करती हैं, ये कहने की बात है। दरअसल ईर्ष्या तो पुरुष में भी होते हैं, ये ऐसा गुण है जो सब में पाया जाता है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक,
1: छोटे या बड़ी मात्रा में सब में होता है।
0: फिलहाल सुनते हैं गाना।

0: कहाँ खो गई से सुना लीजिए।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, ईर्ष्या 4 दिनों की जिंदगानी है और दूसरों से ईर्ष्या करके व्यर्थ ही अपने शरीर को नुकसान क्यों पहुंचाया जाए। हर किसी को अपने नसीब का मिलता है।
0: और कर्मों का
1: और एक
0: नसीब के साथ साथ।
1: सखी ने भी ये भी लिखा है ममता जी कि कुछ चाहत में मन में रहती है तो ये लगता है कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों। कुछ बातों को देखकर ऐसा लगता है पर ईर्ष्या नहीं होती।
0: ये सहज बात होती है, मन में आती है, आए विचार और खत्म हो जाए तो कोई परेशानी का सबब नहीं है, लेकिन बहुत देर तक आपको तकलीफ देती रहे तो फिर बात गलत हो जाती है। वैसे आज हम एक और जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, वो है नारी की पहचान। तो स्त्रियों की पहचान के साथ हमेशा तमगा रहता है पति की पहचान से फलाने की वाइफ या उनके सरनेम से ही जाना जाता है, ये फिर पहले पिता के नाम से बच्चों की मतलब लड़कियों की पहचान होती है, फिर पति के नाम से, फिर बाद में संतान के नाम से फलाने की मम्मी। तो ये जो है अब आज के युग में महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें अपना नाम खुद
1: उनके नाम से पहचाने,
0: नाम से पहचाना जाए, उन्हें अपना सम्मान खुद मिले, चाहे बेटी हो, बहन हो, पत्नी, बहू, माँ, जैसे अनेक रिश्ते वे निभाती हैं। इन रिश्तों से उसे प्यार और सम्मान तो मिलता है, लेकिन इन रिश्तों के बीच उनकी अपनी पहचान कहीं गुम हो जाती है। एक महिला की पहचान केवल किसी की पत्नी, बेटी, बहू के रूप में नहीं बल्कि उसके अपने नाम और व्यक्तित्व से भी होनी चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने ममता जी। और हमारे समाज में अक्सर विवाह के बाद महिला की पहचान उसके पति के नाम से होने लगती है। कई बार उनकी उपलब्धियां, उनकी प्रतिभाएं भी परिवार के रिश्तों के

0: से छिप जाती है, जबकि उन्होंने अपनी शिक्षा, मेहनत और संघर्ष से जो पहचान बनाई, उसका श्रेय और सम्मान उसके अपने नाम के साथ जुड़ना चाहिए। और आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, जैसे शिक्षा कह लीजिए, चिकित्सा, विज्ञान, प्रशासन, खेल, कला, साहित्य, व्यापार और राजनीति जैसे अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। वे अपने कार्यों से परिवार और देश का नाम रोशन कर रही है। ऐसी महिलाओं को उनके अपने नाम से पहचानना और सम्मान देना हम सभी की जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अपना नाम केवल पहचान बताने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति के अस्तित्व, आत्मसम्मान और स्वतंत्र व्यक्तित्व का प्रतीक भी है। जब किसी महिला को उसके नाम से पुकारा जाता है, तो उसकी उपलब्धियों को उसके नाम से जब जोड़ा जाता है, तो उसके भीतर आत्मविश्वास का संचार होता है और सम्मान की भावना भी मजबूत होती है। तो अमूमन यही कहा जाता है ना कि जैसे पति का नाम लेकर उनकी वाइफ, या जब दोनों, जबकि कई बराबर से प्रतिभाशाली हैं और बराबर से उनका करियर आगे बढ़ रहा है, कई बार महिलाएं दो कदम आगे भी होती हैं अपने पति से, तो भी उनकी वाइफ के नाम से ही उन्हें पुकारा जाता है, उनके नाम से उन्हें नहीं जाना जाता है। ये कहीं उनके दुख का सबब भी होता है।
0: पर इसका अर्थ ये नहीं ना ममता जी कि महिला अपने पारिवारिक रिश्तों से दूर हो जाए। वो अपने सभी रिश्तों को बड़ी ही गरिमा के साथ निभाते हुए अपनी अलग पहचान रखना चाहती है।
1: सही कह रहे हैं। और रिश्ते जीवन को सुंदर भी तो बनाते हैं, लेकिन अपनी पहचान जीवन को अर्थ देती है। अब जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़ा काम करें, वो अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुसार कोई भी क्षेत्र चुन सकती हैं महिलाएं। शिक्षा है, संगीत, लेखन, कला, व्यवसाय, समाज सेवा, खेल या कोई और हुनर, इन सब के लिए खुद को कोशिश भी करनी पड़ती है कि महिलाएं अपनी पहचान खुद बनाएं। कई बार कुछ महिलाओं को एक सहारे की हमेशा जरूरत होती है, अमर बेल के रूप में ही जाने जाने में उनको भी सुख मिलता है कि वो अपने पति के, हाँ, पति के साथ, मतलब पति के नाम से ही जाना जाना अच्छा लगता है। जबकि अगर उनके अंदर टैलेंट है, उनके अंदर प्रतिभा है, तो खुद अपना रास्ता चुने और अपने उस चुने हुए रास्ते पर आगे बढ़े।
0: और जब कोई महिला अपने मेहनत से सफलता प्राप्त करती है, तो उसके परिवार के साथ साथ उसका अपना नाम भी सम्मान से लिया जाता है। यही आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की सच्ची मिसाल है। आजकल बहुत सारी महिलाएं विवाह के बाद भी उन्हें उनके मायके के नाम से पहचानने की इच्छा रखती है। इस बात को लेकर परिवार के लोगों ने भी उनकी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें उनके नाम से पहचानने का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। हालांकि थोड़ा अभी जमाना बदल रहा है, आजकल की जो युवतियां हैं वो अपना मायके का ही नाम रखती है अपने सारे इसमें डॉक्यूमेंट्स में, तो उन्हें उन्हें इस बात को लेकर रोक टोक नहीं होना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है। अब एक गाना सुन लेते हैं, फिर और बातें करते हैं।

0: ये गाना हमारे श्रोता सुन रहे थे और बात हम कर रहे थे कि स्त्रियों को उनके पहचान से, उनके नाम से जाना जाना चाहिए, मतलब उनके नाम से उनकी पहचान होनी चाहिए। हमारे बहुत कम श्रोताओं ने इस मुद्दे पर लिखा है और जिन्होंने लिखा उनकी टिप्पणी उन तक पहुंचा रहे हैं। और ये तो अनुभव की बात है कि आपने कहाँ कहीं इस तरह के रिश्तों को देखा है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि शादी विवाह के बाद बेटी की पदवी बदल जाती है, न कि नाम। जैसे कि कन्या का नाम शीला है तो विवाह के बाद सरनेम बदल गया, यहाँ हुआ तो उसका नाम शीला ही रहेगा लेकिन पदवी दीक्षित की जगह, मतलब अगर पांडे परिवार है तो पांडे हो जाएगा। ये वैदिक परंपरा के अनुसार पाणि ग्रहण संस्कार के परिणाम से ही होता है, न कि अपने मनमर्जी से। ये दो के एक होकर ही जीवन जीते रहने के प्रक्रिया स्वरूप बंधन का द्योतक है, जिससे आपसी सहमति, सहयोग और सद्भाव बढ़ते रहने की बात है। तो यहाँ पर उल्टा भी हो सकता है, अगर आपसी सद्भाव सहयोग होता है तो आप उलट भी सकते हैं
1: जी,
0: है ना। तो ये हम लोगों की, ये आप अपनी सोच की बात है
1: जी,
0: कि हम कई बार चाह कर भी, मतलब अगर लड़कियां चाहती हैं आगे बढ़ना चाहती हैं महिलाएं, तो भी उनको हम एक दायरे में कैद करना चाहते हैं।
1: एक हमारी साथी ने लिखा है ममता जी, वो हम टिप्पणी पढ़ रहे हैं। नारी जब अपनी शिक्षा, हुनर और आत्मविश्वास से आगे बढ़ती है तो अपने फैसले स्वयं लेना सीखती है, किसी विशेष क्षेत्र में नाम कमाती है तब उसका नाम उसकी पहचान बनता है। रिश्ते नारी के जीवन को समृद्ध करते हैं लेकिन उसकी पहचान केवल रिश्तों तक सीमित नहीं होना चाहिए। आज घर संभालने वाली महिला भी अपनी कला, पाक कला, लेखन, सामाजिक सेवा, राजनीति, ब्लॉगर या किसी हुनर के माध्यम से अपनी अलग पहचान के माध्यम से नाम कमा रही है।
0: हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि नारी की पहचान केवल रिश्ते से नहीं बल्कि उसके अपने नाम, व्यक्तित्व और उपलब्धि से होनी चाहिए। वो बेटी, बहन, पत्नी या माँ के होने के साथ साथ एक स्वतंत्र व्यक्तित्व भी है। उनके सपनों, विचारों और मेहनत को सम्मान मिलना चाहिए। जब नारी शिक्षा, आत्मविश्वास और प्रतिभा के बल पर अपनी पहचान बनाती है तो उसे उसका हक मिलना चाहिए। लेकिन ये बातें हम अपने घर में करते हैं, लेकिन दूसरों के घर में करते हैं दूसरों के लिए, लेकिन अपने घर में जब बारी आती है तो हम
1: अपने पीछे
0: हट जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं ठीक है जैसी परंपरा
1: जो चल रहा है वो अच्छा है
0: जी।
1: एक सखी ने लिखा है ममता जी कि नारी की पहचान बने उसका अपना नाम, ये विषय रोजमर्रा के विषय से अलग लगा, मुझे ये विषय बहुत अच्छा लगा। अक्सर नारी को या तो पति के नाम से या पिता के नाम से जानते हैं लेकिन मुझे लगता है कि नारी की पहचान उसका अपना नाम होना चाहिए, इसका अपना एक आत्मसम्मान होना चाहिए। अक्सर होता है कि हम पति के नाम से नारी को जानते हैं, एक नारी की पहचान उसके अपने नाम से होना चाहिए, उसके कर्मों से होना चाहिए और उसके अपने स्वभाव से होनी चाहिए, ना कि उसके पति, पिता या परिवार के स्वभाव या परिवार के रहन सहन के तरीकों से होना
0: बिल्कुल
1: चाहिए।
0: सही कहा। तो अगर इन्हें विषय अच्छा लगा तो इस मुद्दे पर हम कभी और चर्चा करेंगे और तब हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। फिलहाल एक गाना सुनवाते हैं।

0: पेइंगेस्ट फिल्म का ये गाना था और बात चल रही थी गाने से पहले नारियों की पहचान की। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल की नारियां तो आगे बढ़ रही हैं और अपने नाम से पहचाने भी जा रही हैं, चाहे वो खेलकूद हो या फिर आकाश में उड़ना हो, ट्रेन चलाना हो। नारी की सबसे सुंदर पहचान सिर्फ किसी रिश्ते से नहीं, उसके अपने नाम से होनी चाहिए। बेटी, पत्नी, माँ, बहन और भी बातें इन्होंने लिखी है जो हम पहले कर चुके हैं।
1: और अब इतना अच्छा विषय है तो क्यों ना एक मिठाई की बात हो जाए।
0: बिल्कुल। वो तो
1: काजू कतली बनाने की सामग्री लिखकर भेजी है एक श्रोता ने। काजू 2 कप साबुत या टुकड़े में, चीनी 1 कप, पानी आधा कप, देसी घी आधा छोटा चम्मच, इलायची पाउडर, गुलाब जल आधा छोटा चम्मच। काजू कतली बनाने के लिए काजू का पाउडर बनाएं, काजू को मिक्सी के जार में डालें, मिक्सी को लगातार ना चलाएं, इसे पल्स मोड पर रुक रुक कर कुछ सेकंड के लिए चलाएं ताकि काजू तेल ना छोड़े। पीसे हुए पाउडर को बारीक छन्नी से छान ले, जो मोटे टुकड़े बचे उन्हें दोबारा मिक्सी में पीस कर छान ले। चाशनी तैयार करें, एक भारी तले की कढ़ाई में चीनी और आधा कप पानी डालें, मध्यम आंच पर चीनी को पूरी तरह घुलने दे और चाशनी को 3 से 4 मिनट तक पकने दे। चाशनी की एक तार की कंसिस्टेंसी, यानी एक तार बनाना है, उसे चेक करें। अब मिश्रण पकाएं, गैस की आँच धीमी करें, छना हुआ काजू पाउडर और धीरे धीरे चाशनी में डालते जाएं, इसे लगातार चलाते रहें ताकि गांठे ना पड़े। मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए और कढ़ाई ना छोड़ने लगे, लगभग 5 से 6 मिनट तक। अब इसमें थोड़ा सा घी और इलायची पाउडर डालकर गैस बंद कर दे। अब इसको गूंथना है, मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दे ताकि आप इसे छू सके। इसे बटर पेपर या चिकनी प्लास्टिक शीट पर रखें और हल्के हाथों से तब तक मस ले जब तक चिकना और आटे जैसा ना, डो जैसा ना हो जाए। बेलन में थोड़ा सा घी लगाकर इसे अपनी पसंद की मोटाई में बेल ले, शीट को पूरी तरह से ठंडा होने दे। उसके बाद चाकू की मदद से डायमंड शेप में काजू कतली काट ले और खिलाएं।
0: क्या बात है। तो भाई ये मिठास घुली रहे और इसी मिठास को घोलते हुए हम एक हमारे पास टिप्पणी आई, हमारे आकाशवाणी परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं जिन्होंने टिप्पणी की है कि आज का ये प्रोग्राम, बल्कि इस ट्रांसमिशन के लिए पूरा लिखा है इन्होंने और टिप्पणी भेजी है कि प्रोग्राम बेहतर जा रहा है। तो शुक्रिया अदा करते हैं उनका और आभार व्यक्त करते हैं। अब क्या किया जाए, कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं?
1: आप सुनवा दे,
0: सुनवाते हैं।

0: ये आनंद फिल्म का गाना था, मुकेश की आवाज, गुलजार के बोल थे, सलील चौधरी का संगीत था। और अब जरा घड़ी की ओर देखिए कि हम अब कुछ बोले बतियाए नहीं, घड़ी यही कह रही है, ना ही हम गाना सुनवा सकते हैं। तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाजत, आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार से मैं विशाल शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। यहां व्यापक अवसर, निरंतर वृद्धि, युवा आबादी, बढ़ती खपत और तेजी से विकसित हो रहे पूंजी बाजारों का अनूठा संयोजन निवेश के अपार अवसर प्रदान करता है। कनाडा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने यह बात कही।
1: इंडिया टुडे स्टैंड्स एज द फास्टेस्ट।
2: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत में हो रहा बदलाव केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक और संरचनात्मक परिवर्तन है। तेजी से हो रहा शहरी

0: वैश्वीकरण, बढ़ता मध्यम वर्ग और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
1: क्रॉस वर्चुअली एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी।
2: वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में कनाडा के बैंकों, वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों और नियामकों के साथ न केवल भुगतान के क्षेत्र में बल्कि अगली पीढ़ी के डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढांचे को आकार देने में भी सहयोग के महत्वपूर्ण अवसर मौजूद हैं। श्रीमती सीतारामन 4 दिवसीय यात्रा पर कल टोरंटो पहुंची। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। नई दिल्ली में दिल्ली लक्ष्मी योजना के स्वीकृति पत्र सौंपते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि योजना के शुभारंभ के बाद से 9,22,000 से अधिक महिलाओं ने इसके लिए पंजीकरण कराया है।
3: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहने हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
2: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये वित्तीय सहायता महिलाओं को बच्चों की देखभाल और शिक्षा, घरेलू आवश्यकताओं और आजीविका तथा व्यावसायिक गतिविधियों में सहायता जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA का कहना है कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। IMA ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स न लेने की सलाह दी है। भारत ने इस बात पर बल दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका विषय पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच के साथ प्रभावी संघर्ष निवारण व्यवस्थाओं के समर्थन का आह्वान किया। ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी ने कल तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री के साथ होर्मुस जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों के यातायात प्रबंधन के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण पर चर्चा की। एक संयुक्त बयान में दोनों देशों ने कहा कि प्रस्तावित ढांचे में एक संयुक्त अस्थायी नौवहन गलियारे की स्थापना और जलमार्ग से बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए संयुक्त प्रयास शामिल हैं। इस बीच ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने सरकारी टेलीविजन को बताया कि दोनों देश एक अस्थायी मार्ग पर सहमत हो गए हैं। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मना रहे हैं। ये पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरलम वासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है। केरलम में आज आधिकारिक आयोजनों सहित बड़ी संख्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक खेल आयोजित किए जा रहे हैं। उधर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी भी आज उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 6 विकेट पर 218 रन बना लिए हैं। इससे पहले श्रीलंका की टीम पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: ये जो दिल्ली का जो टफनेस है ना, जो जो एक जिसे कहते हैं आपको थोड़ा सा अग्रेसिव होना पड़ेगा, डिफेंसिव होना पड़ेगा, वो दिखा मुझे। पुरानी दिल्ली का कल्चर में थोड़े बड़ा हुआ तो मैंने वो मेरा एक्सपोजर बढ़ा, जहाँ जिसे हम मीर गालिब का कल्चर कहते हैं
5: जी।
4: या लखनऊ से निकल के दिल्ली पहुँचने वाला खुसरो का कल्चर कहते हैं, वो कल्चर से भी मैं वाकिफ हुआ। तो मेरा बचपन ये दो स्रोतों में बहते हुए निकला।
5: फिर नेपाल भी कुछ वक्त
4: फिर नेपाल फिर मैं जब क्लास 5 में था तो पापा का तबादला नेपाल हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस था
5: जी।
4: वो इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उनका काम ही था इकोनॉमिक एनफोर्समेंट के जरिए काम करना। तो नेपाल जो है वो गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता था। तो पापा का वहाँ तबादला हुआ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको काम भी करना था। तो मैं वहाँ पे इंडियन एम्बेसी के स्कूल में पढ़ता था, जो कि सेंट्रल स्कूल कहते हैं। छोटा सा स्कूल था, एक क्लास में सिर्फ 18 बच्चे थे। तो संगत बहुत अच्छी हुई, क्योंकि बड़े स्कूल में बहुत सारे बच्चों के बीच में आप खो जाते।

यहाँ बहुत कम बच्चे थे, तो एक जो है अपनापन बन गया, टीचर्स का अटेंशन वो ज्यादा दे पाते थे हर बच्चे को, और यहाँ से मेरा नाटक का सिलसिला बहुत अच्छा शुरू हुआ। क्योंकि नाटक मैंने उससे पहले भी किया, मतलब मैंने लोअर केजी से शुरू किया था, जब मुझे एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं मेरा जो अंदर का जो

0: रियल करके, तो वहां पे ऑब्वियसली क्रिसमस के आसपास नेटिविटी प्लेस होते थे, तो मुझे जिहोवा का किरदार दिया गया, मतलब जीसस क्राइस्ट के पिताजी का, कंबल पहनाया गया, दाढ़ी लगाई गई और सर पे साफा बांधा गया, लाठी दे दी गई। तो मुझे जहां तक याद है, मतलब मेमोरीज ही हैं, कि मैं जब वो सब कर रहा था तो टीचर्स मेरे मम्मी को कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, बाकी बच्चों को बताना पड़ता है, ये तो अपने आप ही बहुत चीज़ें कर जाता है। तो मुझे वो याद है वो वाकया, कि मैं वैसे मैं बहुत शर्मिला था, क्लास में अगर मुझे कुछ प्राइज भी मिलता था और मेरा नाम लेते थे तो मैं खड़ा नहीं होता था, इस डर से, शर्म से कि मुझे अपनी शक्ल दिखानी होगी सबको। इतना शर्मिला लड़का कभी नाटक कर सकता है? लेकिन मजे की बात यह है कि शायद जिनके अंदर झिझक हो वो वेट कर रहे हैं कि किसी मीडियम के जरिए वो अपने आप को खोल पाए, तो नाटक मेरे लिए था वो एक्सपोजर जो है। और लेकिन हाँ, स्टेज पे जाके मैंने अपने मम्मी को सामने देखा तो शर्मा के मैंने अपनी जीभ बाहर करके मैं खड़ा हो गया वो शुरुआत थी मेरी। लेकिन नेपाल में चल के खास करके हमारे क्लास प्लेस भी होते थे, जो कि इंटर हाउस प्लेस होते हैं, क्लास के अंदर के प्रोग्राम्स होते थे और एनुअल प्रोग्राम होता था। और इन दिनों मेरा जो है साहित्य के साथ बहुत अच्छा संबंध हो गया था, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत छुटपन में मेरे हाथों में बच्चों के ही सही लेकिन साहित्य दिया था, बड़ों के साहित्य को मतलब जो लिटरेचर कहते हैं उसको भी ट्रांसलेटेड वर्क्स मुझे पकड़ाए थे, चार्ल्स डिकेंस हो या हमारे बंगाली में बहुत राइटर्स हैं रहे हैं, बिमल मित्रा, बिमल कौर, आशापूर्णा देवी, महाश्वेता देवी, इनके लिटरेचर हो, अंग्रेजी लिटरेचर हो, फ्रेंच लिटरेचर हो, ये सारे उन्होंने ट्रांसलेटेड मुझे दिया था बंगाली में। हाँ, मैं वो पढ़ता रहता था, बच्चों का शेक्सपियर मैंने बचपन से पढ़ना शुरू किया, तो इससे मेरे अंदर का जो मेरी कल्पना शक्ति एकदम उजागर हो गई। मैं ये सब किरदारों को आसपास देखता था, मैं उनके साथ एडवेंचर पे जाता था, मैं पूरी दुनिया घूम लेता था साहित्य के जरिए। अगर मैं किसी वाइकिंग के ऊपर कोई किताब पढ़ रहा हूँ तो मैं वाइकिंग के साथ उनके जहाज पे पूरी दुनिया घूम रहा हूँ, एडवेंचर कर रहा हूँ। तो ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन गए किताब, और मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट तो था
1: बिल्कुल,
0: तो किताबें दोस्त बन गई, और फिर नाटक, ये लिटरेचर से नाटक की तरफ जिसे कहते हैं। मैंने खुद अपने हाउस प्लेस के लिए नाटक लिखे जो मैंने पढ़े थे किताबों में, तो अरेबियन नाइट्स में समझ लो कोई किस्सा पढ़ा, उसी में से मैंने कोई नाटक का रूप दिया बच्चों का, और उसको डायरेक्ट भी कर दिया मैंने। तो इस तरह से मेरा नाटक का सिलसिला स्कूल टाइम में, आप कहते हैं कि प्राइमरी से सेकेंडरी स्कूल में जाके बहुत एक्टिव हो गया,
1: वहीं से एक दिशा मिल गई कि इस तरफ ही जाना है।
0: और एनुअल डे में नॉर्मली सीनियर स्टूडेंट्स को मौका मिलता था, तो मेरे अंदर एक जिद थी कि मैं भी एनुअल डे में परफॉर्म करूंगा, तो मैं खुद ब खुद नाटक बनाने लग गया। मैंने कुछ नाटक उठाया, वन एक्ट प्ले, और एक दो दोस्तों को पकड़ा, मैंने डायरेक्ट किया, खुद ही परफॉर्म किया, और जाके मैंने वो दिखा दिया, हमारे जो कल्चरल कोऑर्डिनेटर होते थे उनको जाके दिखाया, वो इतने प्रभावित हो गए, बोले कि हाँ इस साल हम सेकेंडरी स्कूल का भी एक नाटक एनुअल डे में रखेंगे। तो पहली बार ऐसा हुआ सेकेंडरी के स्टूडेंट्स का नाटक जो मैंने डायरेक्ट किया, मैं एक्ट कर रहा था, रखा गया। वो इतना अच्छा लगा उन लोगों को एनुअल डे के प्रोग्राम में भी, कि प्रिंसिपल ने कहा कि इसको हम अपने प्रेयर के ग्राउंड में भी इसको खेलेंगे, तो प्रेयर ग्राउंड में सब स्टूडेंट्स के सामने मैंने उसको खेला, तो ऐसा शुरू हो गया। फिर मुझे याद है कि हम लोग घर घर जाके अपने SUPW के मोमबत्ती वगैरह जो बनाते थे वो बेचते थे,
1: बिल्कुल,
0: तो बेचने जाते थे, तो कुछ लोग मेरे फादर के कलीग थे, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, बोले कि भाई मैंने तुम्हारा नाटक देखा एनुअल डे में, हाँ मैं पागल हो गया, तुम एक काम करो पापा को मत बताना, जब बड़े होंगे तो सीधा मुंबई चले जाना, बॉम्बे कहते चले जी जी। मैंने कहा अंकल ये क्या कह रहे हो, मुझे तो पता नहीं ये सब क्या है, कहते नहीं मैं तुमको बता रहा हूँ, याद रखना बड़े होंगे तो बॉम्बे चले जाना। मैंने कहा अच्छा, कहते हाँ। तो मेरे सर पे ये जो है बीज बो दिया
1: गया था,
0: तब मैं क्लास 8 में था शायद, तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी है कुछ, मतलब मेरे अंदर कुछ है जो मुझे काठमांडू से दिल्ली नहीं, कलकत्ता नहीं, मेरे बॉम्बे
1: ले जाएगी,
0: तो ये एक और सिलसिला था
1: बिल्कुल।
0: फिर मैं दिल्ली वापस आया, दिल्ली में अब मैं सीनियर स्कूल में था, सीनियर स्कूल में भी मैं नाटक खेला, वहां पे भी मेरे इंग्लिश टीचर जो थे उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी खास जो टैलेंट है इसको तुम नजरअंदाज ना करो।
1: तो नाटक जो है आपका पहला प्रेम कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविजन फिल्म्स उसके आगे प्रायोरिटी आपकी जो रहती है वो शायद नाटक की रहती है।
0: ये मेरा जीवन भर का अगर कोई प्रेमिका या प्रेम है तो वो नाटक है, बाकी सब प्रेमिकाएं तो छूट जाती है, रह जाती है, टूट जाता है दिल, लेकिन इसने ना दिल मेरा तोड़ा है ना ही मेरा पीछा छोड़ा है, तो ये संबंध तो अभी तक चल रहा है।
1: चलिए यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, आपकी पसंद का कोई गाना आप सुनना चाहें बताएं।
0: शुरुआत अगर करें तो एक थोड़े खुशहाल गाने से करते हैं, जो मेरे एक ऑप्टिमिज्म का गाना मेरे फिलॉसफी को दर्शाता है, वो देवानंद का मैं बड़ा फैन होता था, तो उनका एक गाना है मैं जिंदगी

0: बात चलिए नाटकों की, तो यूनिवर्सिटी में ही आपने जन नाट्य मंच से अब जुड़े और उसके बाद थिएटर का जो सफर है थोड़ा सा और प्रोफेशनल हो गया
1: जी।
0: नाम आता है बहुत बड़े दिग्गजों का, जिसमें इब्राहिम अलकाजी साहब का नाम आता है और भी कई नाम आते हैं, तो उनके साथ जब आप जुड़े तो कैसा अनुभव, कुछ अलग अनुभव है वो,
1: कमाल,
0: उसके बारे में कुछ बताएं, अलग अलग मेथड्स कैसे हैं, अलग अलग तरीके कैसे हैं सबके?
1: सबसे पहली बात तो ये है कि गुरुओं का बड़ा योगदान होता है समाज को बनाने में। एक गुरु आपके अंदर बीज बोता है, फिर उसमें पानी देता है, फिर फसल उगता है, फिर आप जाके जो आप सीखते हैं उस गुरु से उसको आप शेयर करते हैं, है ना?
0: बिल्कुल।
1: जब वो शेयर करते हैं वो समाज में और आगे निकलता है, कुछ लोग और प्रभावित होते हैं और उस पथ पे चल पड़ते हैं। तो अगर आपके गुरु ने आपके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज डाले हैं, आपको सही मायने में एक अच्छे कल्चरल दिशा दिखाई है, तो आप भी उसी पथ पे चलेंगे और लोगों को दिशा दिखाएंगे और उस दिशा पे बाकी लोग भी चल पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं समाज बहुत स्वस्थ हो जाता है। तो मेरे जिंदगी में जो गुरु आए, सफदर हाशमी हो, जिन्होंने मुझे जीवन दर्शन दिया कि दुनिया को कैसे देखना चाहिए, समाज को कैसे देखना चाहिए, किस नजरिए से देखना चाहिए, तो सबको समान तरीके से समझना और तोलने का जो गुण है उनसे मैंने सीखा। किसी इंसान और इंसान में कभी फर्क नहीं करना, चाहे वो कोई भी इंसान हो, वो चाहे उसकी चमड़ी अलग हो, दमड़ी अलग हो, धर्म अलग हो, उसका इनकम अलग हो, कुछ भी हो, कभी भी किसी इंसान में फर्क नहीं करना, सबको एक ही नजरिए से देखना, उसके बाद अपने आप को प्रस्तुत करना, उसके बाद उनसे जुड़ना।

0: समानता की नजर से जुड़ना किसी के साथ भी, ये मैंने उनसे सीखा
1: जी।
0: तो वो बहुत काम आया मेरे, कि मेरे अंदर से जो विभाजनकारी जो एक पर्सनालिटी बन जाती है लोगों के अंदर, कभी वो घर से वैल्यू लेके निकलते हैं, कभी चारों ओर के इन्फ्लुएंसेस से लोग, हर कोई थोड़े विभाजनकारी बन जाता है, मेरी भाषा, हाँ, मेरी जात, मेरा धर्म,
1: मेरा कल्चर,
0: हाँ, मेरा शहर
1: जी,
0: जी, मेरा कल्चर, मेरा खान पान, मेरी आदतें, मेरी तरह के लोग क्यों नहीं, दूसरे तरह के लोग क्यों, वो लोग और हम लोग, ये फर्क उसी से आता है। मेरा देश सबसे महान, उसका देश सब नीचे गिनेंगे, ये जो ऊंच नीच विभाजन, ये सारी चीजें, ये इन्फ्लुएंसेस होती हैं, बहुत सारी चीजें घर से निकलती हैं, बहुत सारी चीजें हमारे चारों ओर से आती हैं, मीडिया से भी आती हैं। अगर आपको बहुत पहले ये नजरिया आपको मिल जाए, ये दुनिया को देखने का दर्शन आपको मिल जाए कि आपको कोई फर्क नहीं करना है, जब आप किसी के सामने अपने आपको प्रस्तुत करो, किसी से बात करो, किसी से जुड़ो, तो पहले समानता से जुड़ो
1: जी,
0: उसके बाद फिर आप तोलो कि हाँ इसमें ये कमी है, कैसे मैं इस कमी को दूर करूं और इसे ऊपर उठाऊं। तो हमारी जिम्मेदारी है किसी को ऊपर उठाना, किसी को नीचे गिराना नहीं। ये जो दर्शन है मैंने सफदर से पाया, और अलकाजी साहब ने मुझे दुनिया में खूबसूरती को खूबसूरत तरीके से देखना सिखाया कि आप कोई भी चीज को कैसे खूबसूरत बना सकते हो, उसके अंदर की खूबसूरती को कैसे निकाल सकते हो, निखार सकते हो, ये अलकाजी साहब से मैंने सीखा। चाहे वो साहित्य हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे थिएटर हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे कुछ भी हो, जिसको हम एस्थेटिक्स कहते हैं अंग्रेजी में, सौंदर्य दर्शन आप कह लीजिए, आपके चारों ओर सौंदरता है, पेड़ पौधे सबसे ज्यादा सौंदरता का प्रतीक है, आपके अंदर का अंदरूनी मन सौंदरता का प्रतीक है, साहित्य सौंदरता का प्रतीक है, कविता, पेंटिंग, थिएटर, ये सब सौंदरता का प्रतीक है, इनको उजागर करना है हमको, इनको समाज के सामने लेके जाना है, प्रकृति और कला, और एक साइंटिफिक नजरिए से, मतलब एक वैज्ञानिक सोच के साथ, आप किसी को भटकाएंगे नहीं, वैज्ञानिक सोच में क्या होता है, भटकाते नहीं है, आप सही रास्ता दिखाते हैं। तो ये वैज्ञानिक सोच और ये कलात्मक सोच सफदर अलकाजी साहब के चलते मेरे अंदर बैलेंस बन गया था।
1: बिल्कुल।
0: और
1: कहते हैं ना, थिएटर का मतलब जो पहला सबक सिखाया जाता है, सबको साथ में लेकर चलना,
0: जी,
1: सिर्फ अपना नहीं सोचना, एक टीम वर्क, और सब कैसे संभलें,
0: ये तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन मुश्किल ये होता है कि जब एक्टर होता है ना थिएटर में, तो वो ग्रुप में समा जाता है, ग्रुप थिएटर में वो फिलॉसफी लेके चलता है कि सबको साथ लेके जाना है, लेकिन खुद जब वो खड़ा होता है तो एक्टर वो सिर्फ अपने आप को देखता है, और तब उसे सिर्फ अपनी पहुंच, अपना रुतबा, है ना
1: जी,
0: अपना माइलेज, अपनी रोशनी, ये चाहिए उसको, तो उसमें फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर वो थिएटर का जो फलसफा है वो भूल जाता है, वो
1: बिल्कुल,
0: कि सबको साथ लेके चलना है, किसी को नीचे नहीं गिराना है, बल्कि हाथ देना है, उठाना है, अगर दूसरों को उठाओगे तो आप खुद भी उठोगे। थिएटर में हम ये सीखते हैं कि अगर आपका बगल वाला एक्टर कोई सीन खराब करता है तो आपका सीन भी खराब हो जाता है, क्योंकि आप उसी के साथ काम कर रहे हो, तो वो अच्छा करेगा तो आपका सीन अच्छा जाएगा, तो आप अच्छा काम करोगे, तो इसीलिए एक दूसरे को आप कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करते रहते हो थिएटर में। लेकिन दूसरे मीडियम में जाके वो बाजारू हो जाता है, तो बाजार में क्या है कि हर कोई जो है अकेला दिखना चाहता है, अकेले खड़ा होना चाहता है,
1: तो मैं सबसे अलग,
0: हाँ, तो ये बाजार आपको सिखाता है कि आपकी अलग ब्रांडिंग है, आप ब्रांड हो, आप सब मिलके ब्रांड नहीं हो, आप अकेले ब्रांड हो, तो यहाँ जाके फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है।
1: यहाँ पर सुनते हैं आपकी पसंद का दूसरा गाना।
0: अब मैं थोड़ा जिसे गंभीर गाने की तरफ लेके जाता हूँ, आज का जो दौर चल रहा है, युवाओं के मन में जो सवाल चल रहे हैं, उससे जुड़ा एक गाना है, फिल्म प्यासा में, गुरुदत्त की फिल्म है, साहिर ने लिखी थी और एस डी बर्मन ने कमाल का जो है इसे सुर दिया था, वो है जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है।
1: सुनते हैं गाना जी।

0: अभी थिएटर की जैसे हमने बात की
1: जी,
0: 80s 90s से आप जुड़े हैं,
1: हाँ,
0: नुक्कड़ नाटक भी किए हैं, थिएटर अभी भी कर रहे हैं,
1: जी, जी,
0: लेकिन अभी कुछ वक्त से, कुछ सालों से एक जो चेंज, एक परिवर्तन देखा है वो है कि मेगा प्लेज करके थिएटर आ गया है,
1: जी, जी,
0: उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही साउंड इफेक्ट, एक लार्जर देन लाइफ अगर हम टर्म यूज करें
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: वो यूज कर सकते हैं, तो कितना फर्क आया तब में और आज में, या हर किसी के अपना अपना एक जगह है, अपना स्थान है,
1: हर किसी का स्थान
0: चल
1: है,
0: रहे हैं?
1: क्योंकि ये तो पश्चिमी देश से आया है। होता यह है कि पश्चिमी देश में अगर आप देखें, खास करके इंग्लैंड और यूएस में अगर आप देखें, तो इंग्लैंड में जो थिएटर डिस्ट्रिक्ट है उसको वेस्ट एंड कहते हैं
0: जी,
1: और यूएस में न्यूयॉर्क थिएटर कैपिटल है और वहां पे ब्रॉडवे कहते हैं
0: जी।
1: जब आप वेस्ट एंड या ब्रॉडवे कहते हैं तो आप बड़े नाटक की बात करते हैं, म्यूजिकल्स की बात करते हैं, जहां बड़ा होता है। जब उससे हटके बात होती है, जो जिसमें थोड़ा सा अपनापन होता है, पर्सनल एलिमेंट होता है, उसको हम ऑफ ब्रॉडवे कहते हैं।
0: अच्छा।
1: और जब वहां से और हटके बहुत एक्सपेरिमेंटल काम होता है, रिस्की काम होता है, चीजों को परखने का काम होता है, उसको हम ऑफ ऑफ ब्रॉडवे बोलते हैं। वही वेस्ट एंड में भी है, वेस्ट एंड है, ऑफ वेस्ट एंड है, ऑफ ऑफ वेस्ट एंड है। तो वेस्ट एंड ऑफ ब्रॉडवे में बड़ा काम होता है, वहां पर बड़े स्टार्स आते हैं जिनको फिल्मों में भी देखते हैं, वहां पे म्यूजिकल में चकाचौंध टेक्निकलिटीज आपको दिखती हैं, सीन्स ऐसे बदलते हैं आपको पता भी नहीं चलता, इस तरह के सेट्स आते हैं, इस तरह के इफेक्ट्स आते हैं, आप जो है उड़ जाते हैं, एकदम होशो हवास उड़ जाता है आपका, और आप उसके लिए बहुत डॉलर्स और पाउंड्स खर्च करते हैं, ठीक है, उससे पूरी थिएटर इंडस्ट्री चलती है
0: जी।
1: तो उसका कुछ एक हिस्सा ऑफ ब्रॉडवे पे, ऑफ वेस्ट एंड के पास भी आता है और कुछ हिस्सा ऑफ ऑफ वेस्ट एंड में भी आता है। तो बात करने का जरिया होता है, जैसे नुक्कड़ नाटक में आप सड़क पे बात करते हैं क्योंकि आप सोचते हैं ये बात मुझे सड़क पे ही मैं कर सकता हूं, ये हॉल में करूंगा तो कुछ चुनिंदा लोग आएंगे जो टिकट खरीद के देखेंगे, बाकी लोग नहीं आएंगे। तो सफदर कहता था कि अगर वो नहीं आते तो हमें उनके पास जाना चाहिए, तो आप वहां जाके ये करते हैं
0: जी।
1: फिर एक्सपेरिमेंटल हमारे यहाँ पे भी थिएटर होता है, जैसे दिल्ली में ताशीराम सेंटर बेसमेंट, यहाँ पे भी है, पृथ्वी है, एनसीपीए है, तो एक्सपेरिमेंटल स्पेस में कम दर्शक होते हैं लेकिन वो दर्शक बड़े ही रोचक दर्शक होते हैं, वो सोच और समझ के साथ आते हैं कोई बात को सुनने। तो आप जब वहां पे मंटो का नाटक करते हैं, मतलब मंटो की बात को रखते हैं, प्रेमचंद की बात को रखते हैं, अंधा योग करते हैं, जो भी करते हैं, तो वो बड़े रोचकता के साथ उसको देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं। फिर आप बड़े हॉल में जाते हैं, यहाँ पे जमशेद भाभा ऑडिटोरियम है या एनएमएससीसी में बड़ा वाला हॉल है, तो वहां पे जो लोग आते हैं वो वित्तवान लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए लेकिन एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट चाहिए, वो वेस्ट

0: की तरह चाहिए उनका इंडिपेंडेंट, तो वहां पे चकाचौंध दिखता है। अगर उस चकाचौंध के अंदर कुछ अच्छी बात भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना मिले तो कम से कम वो इस बात के लिए खुश है कि मैंने जो पैसा खर्च किया है उसके बदले में मुझे एक एक्सपीरियंस मिला है जो बहुत ही एंटरटेनिंग है और मेरे सारे सेंसेस को इन्होंने एंटरटेन किया है। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं,
1: अपनी अपनी जगह पर।
0: अपनी अपनी जगह है। आप बड़े चीज के जरिए बहुत अच्छी बात कह सकते हैं, बहुत बड़ी बात कह सकते हैं। जैसे ला मिजराबल करके एक बहुत फेमस म्यूजिकल होता है वेस्ट एंड ब्रॉडवे में, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर है, लेकिन म्यूजिकल है, उसमें कमाल कमाल के गाने हैं, क्रांति के बारे में है, तो आप बड़ी बात कह रहे हैं। लायन किंग बहुत बहुत फेमस म्यूजिकल है जो
1: जी
0: वहां पे चलता रहता है, तो लायन किंग में भी तो आप बात क्या कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं, आप फलसफा दे रहे हैं ट्रेडिशन के बारे में, एथिक्स के बारे में, है ना। तो आप बड़ी चीजों के जरिए भी अच्छी बातें कह सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप संस्कृति की बात करते हो तो संस्कृति सिर्फ मनोरंजन पे निर्भरशील नहीं होता, मनोरंजन एसेंशियल होता है, मनोरंजन के बिना संस्कृति नहीं है, मनोरंजन तो होना ही चाहिए, लेकिन सिर्फ मनोरंजन नहीं होता है, उसके अंदर से कोई बात निकल के आती है जो आपके सोच और समझ को या तो बदलती है या उसको और उजागर करती है, तो आप के अंदर एक नई चेतना भर देती है, चाहे छोटे तौर पे हो लेकिन भर देती है, कि आप हॉल से बाहर आए तो थोड़ा सा सोचे और कहीं आपका नजरिए में थोड़ा सा फर्क आए, आप थोड़ा सा साफ देखने लगे, आप चीजों को थोड़े संयम के साथ संतुलन के साथ देखने लगे, ये अच्छी संस्कृति की जो है सीख है।
1: जी, म्यूजिकल ड्रामा की बात चलिए तो
0: जी
1: उसमें भी अपने ताज एक्सप्रेस करके कुछ म्यूजिकल ड्रामा से आप रिलेटेड हैं।
0: जी जी जी जी अभी भी चल रहा है ना, अभी 23-24 को पृथ्वी में शो है लेडी संगीत करके, वो
1: अच्छा
0: भी म्यूजिकल ही है। हाँ,
1: अच्छा
0: वो उसमें कहने को तो लेडी संगीत है तो लोग लेडी संगीत सुनने आते हैं, बहुत शुभा
1: अच्छा
0: मुद्गल का म्यूजिक है उसमें,
1: जी
0: बहुत बढ़िया म्यूजिक आता है, फोक और क्लासिकल म्यूजिक आता है उसके अंदर, लेकिन उसके जरिए हम बात करते हैं जेंडर इश्यूज के ऊपर।
1: अच्छा
0: हाँ, नारी, नारी की जगह, शादी, समाज में शादी की क्या जगह है, उस पर बात करते हैं, और हमारे अपने अंदर के अवचेतन मन के बारे में, हमारे अंदर जो नारीत्व छुपा हुआ है उसको भी हम उजागर करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बढ़िया नाटक है लेकिन म्यूजिकल है। और ताज एक्सप्रेस जो है उसे आप कहते हैं बॉलीवुड म्यूजिकल, जैसे बॉलीवुड म्यूजिकल होता है ना कि
1: जी
0: एक लव स्टोरी होती है, उसके अंदर आइटम्स की तरह एक एक गाना आता रहता है, और वो जैसे वो स्टोरी आगे जाती है, लड़का लड़की भाग जाते हैं और गाने आते हैं, फिर पुलिस आ जाती है और गाने आएंगे, फिर अंडरवर्ल्ड या विलेन आएगा तो और गाने आएंगे, फिर वो बिछड़ेंगे, फिर मिलेंगे, कैसे गाने आएंगे, जो बॉलीवुड
1: बिल्कुल
0: में का जो स्ट्रक्चर है उस
1: जी,
0: स्ट्रक्चर का वो म्यूजिकल था ताज एक्सप्रेस।
1: रेडियो ड्रामा से भी अब जुड़े हैं। बीबीसी
0: जी
1: के लिए आपने रेडियो
0: जी जी
1: ड्रामा
0: जी
1: किया,
0: जी जी
1: कितना अलग है वो और थिएटर पे करना?
0: देखिए, ग्रामर अभिनय का तो एक ही रहता है, इमोशंस, करेक्ट, इमोशंस और आइडियाज को आपको प्रोजेक्ट करना है,
1: जी
0: लेकिन प्रोजेक्शन में आपका जो तकनीक है वो थोड़ा सा बदल जाता है। जब आप नुक्कड़ में करते हैं यानी कि सड़क पे करते हैं तो आवाज का प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा होता है, पूरे शरीर का इस्तेमाल ज्यादा होता है, आप लोग जब देख रहे हैं उस चकाचौंध रोशनी में, इतनी भीड़ में, इतने शोर शराब के बीच में, तो आपका शरीर का खेल कमाल
1: बिल्कुल
0: होना चाहिए और आवाज कमाल होनी चाहिए। जब आप एक हॉल के अंदर करते हैं जैसे प्रोसिनियम थिएटर करते हैं तो थोड़ा कंसंट्रेशन होता है स्टेज के ऊपर, स्टेज लाइट होता है, ऑडियंस अंधेरे में होती है, तो आप साफ दिखते हैं, तो शरीर का बहुत ज्यादा प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आवाज का एक प्रोजेक्शन होता है, लेकिन नुक्कड़ की तरह नहीं, वो कम हो जाता है, तो उसके अंदर गांभीर्य आ जाता है। जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: जी
0: तो बहुत बड़े बड़े अभिनेता सिनेमा में रहे हैं जो बहुत कम बोलते हैं, दिलीप कुमार को अगर आप फिल्मों में देखें तो उनकी
1: बिल्कुल
0: आंखें बोलती थी, अमिताभ बच्चन डायलॉग के लिए जाने जाते हैं लेकिन उनकी आंखें बोलती थी,
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: हाँ
0: तो आंखों से आप पकड़े जाएंगे। ओम पुरी ने आक्रोश में किरदार किया था जिसमें पूरे फिल्म में उनका कोई एक लाइन नहीं है, एक लाइन नहीं है, वो जेल में पड़े हुए सड़ रहे हैं, उनपे अपने बीवी को मारने का इल्जाम है जबकि वो निर्दोष है एक्चुअली, तो लॉयर उससे जब भी मिलने आता है वो एक बात नहीं करते, लेकिन उन आंखों से उनके साथ जो अन्याय हुआ है उनकी आंखें बता देती है। आप तो सिनेमा में ही है और रेडियो में पूरा ही वाचक, सब कुछ ही ऑडियो है, सिर्फ आवाज से आपको समझ में पड़ेगा कि ये आदमी कहाँ है, किस परिप्रेक्ष्य में है, किस मूड में है, कहां से आया है, कहां जा रहा है, जो बातें कर रहा है उसके पीछे क्या अवचेतन मन में क्या चल रहा है, सब
1: बिल्कुल
0: टेक्स्ट सब कुछ उसकी आवाज से निकलनी चाहिए, तो आवाज पे ही पूरा काम करना पड़ता है, फिर सारे इमोशंस को आवाज के जरिए, पिच के जरिए, और आपको एक अंदाजा देना पड़ता है आवाज के जरिए कि आप किस स्पेस में हैं,
1: बिल्कुल
0: यह भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस स्पेस में हैं, तो वो सब जो है किरदार का क्लास क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो सब आवाज से होता है। तो सोचिए जब आप आंख बंद करके भी आप सुनेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे। तो ये

0: रेडियो प्ले की खासियत है।
1: बिल्कुल, यहाँ पर आपकी पसंद का गीत जो आप सुनवाना चाहते हैं।
0: जी, एक बढ़िया गाना है जिसमें क्रांतिकारी सोच भी है लेकिन थोड़ा ऑप्टिमिज्म भी है। एक फिल्म थी राज कपूर की, ये सुबह कभी तो आएगी, वो जो है दोस्तोवस्की की फेमस कहानी क्राइम एंड पनिशमेंट पे बेस्ड थी। उसमें एक ही गाने को दो तरह से गाया गया था। ये सुबह कभी तो आएगी पहले दुखद तरीके से गाया गया था, जब वो सोचते हैं कि ये सुबह शायद कभी नहीं आएगी, फिर अंत में जब वो लड़की रोती है तो वो गाते हैं कि ये सुबह हम ही से आएगी। तो ये जो ये सुबह कभी तो आएगी, ये सुबह हम ही से आएगी, ये गाना जो है मुझे बेहद पसंद है।
1: बिल्कुल, और गीतों के साथ जो आप डिटेलिंग दे रहे हैं
0: जी
1: वो सुनने में और मजा आ रहा है।

0: बात करते हैं फिल्मों की, हिंदी फिल्मों की, तो लेट 90s में आपकी शुरुआत हुई हिंदी फिल्म से, 1084 की माँ, जो कि काफी पॉपुलर रही,
1: चर्चित रही
0: कह सकते हैं बिल्कुल, और पहचान मिली एक।
1: जी जी,
0: इससे जुड़ना कैसे हुआ?
1: मैं आपको सच बताऊं तो ये बड़ा अजीबोगरीब जिसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन है। मैं 80 के दौर में जब स्कूल में रहते हुए, मैं भारतीय पैरेलल सिनेमा की तरफ, सीरियस सिनेमा की तरफ मेरा झुकाव हो गया था। अमिताभ बच्चन के दौर से निकलकर मैं इस दौर में जा रहा था, जहां फिल्मों में नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, पंकज कपूर, शवाना जी, स्मिता पाटिल, दीप्ति जी, इन लोगों का दौर चल रहा था अभिनय के क्षेत्र में। और डायरेक्शन में श्याम बेनेगल, सैयद मिर्जा, कुंदन शाह, केतन मेहता, ये सब

0: जो है धूम मचा रहे थे। मैं वैसे भी थोड़ा बहुत आदर्शवादी था, तो गोविंद निहलानी मेरे मन में बैठ गए। उसके बाद मैंने उनकी आगे फिल्म देखी अर्ध सत्या, जो करप्शन नफल पुलिस व्यवस्था के ऊपर थी। फिर उनकी फिल्म आई आघात, जो ट्रेड यूनियन के ऊपर थी। उसके बाद उनकी फिल्म आई तमस, जो पार्टीशन के ऊपर थी। एक के बाद एक, और मेरे होश हवास उड़ गए। मुझे अगर कभी मैं सिनेमा में मौका मिला तो मैं ऐसे डायरेक्टर या इनके साथ ही करना चाहूंगा कम से कम एक काम या शुरुआती काम जो भी है। तो फिर जब मैं थिएटर में पढ़ाई कर रहा था, थिएटर सीख रहा था अलगाई साहब से, तो उस समय बॉम्बे आने का एक बार मुझे मौका मिला था। तो मैंने बड़े मुश्किल से पता लगाया कि गोविंद निहलानी जो है महबूब स्टूडियो में मुंबई में शूटिंग कर रहे हैं। तो मैं वहां पहुंच गया और मैं उनसे मिला और वो मुझसे मिले भी। तो उनको जब पता चला मैं अलगाई साहब का स्टूडेंट हूं तो बड़े खुश हुए। पूछा मेरे नाटकों के बारे में। मैंने जो नाटक किया था विरासत करके, नाटक है वराचिड़ी बिंदे, ये एल कुंचर की नाटक, वो उस पर वो एक फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे दूरदर्शन के लिए।
1: अच्छा
0: जी, टीवी फिल्म। तो बोले कि मैं तुमको मैं इतला करूंगा अगर जब मैं ये बनाऊंगा। तो मैं अपने फोटो वोटो देखे बड़े खुश होकर मैं सीना चौड़ा करके वापस आ गया दिल्ली और मेरे नाटक के सेक्शन में घुस गया। फिर बात भूल गया मैं, दो तीन साल गुजर गए। फिर जब फाइनली मेरा बॉम्बे आना हुआ और मैंने वहाँ नाटक करना शुरू किया, तो मेरे जो पहले नाटक का शो था वहाँ पे, इफ विशेस व हॉर्सेस करके एक नाटक, तो उसका शो देखने गोविंद निहलानी आए हुए थे, ये मुझे पता नहीं था।
1: अच्छा।
0: मैं उसके बाद चंडीगढ़ चला गया वर्कशॉप लेने। मैं हर गर्मी की छुट्टी में चंडीगढ़ में बच्चों का वर्कशॉप लेता था। तो मैं ये सारी चीज़ें करता था, मतलब टेलीविजन भी करता था, थिएटर भी करता था, वर्कशॉप भी लेता था, ये सब मेरे चलता रहता था। पंजाब यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट में फोन आया गोविंद निहलानी के ऑफिस से।
1: अच्छा।
0: पता नहीं उन्होंने कैसे पता लगाया कि मैं चंडीगढ़ में हूँ, और उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट में फोन किया कि भैया जॉय सेन गुप्ता चंडीगढ़ में है, जरा पता करो, उनको बताओ कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात करनी है।
1: जी।
0: तो मैं मुंबई लौट आया, उनके वहां गया। उन्होंने कहा भाई मैं एक फिल्म बना रहा हूं जो महाश्वेता देवी की जो छोटी नॉवल है, नॉवेला हजार चौरासी की मां के ऊपर है, उसके प्रोटैगनिस्ट के लिए तुमको मैं ढूंढ रहा था, क्योंकि मैंने तुमका नाटक देखा, मुझे पसंद आया तुम्हारी पर्सनालिटी, मुझे एक दो और लोगों ने कहा कि भैया इस लड़के पे नजर रखो। तो मैंने नजर रखा और तुम्हें याद किया, अब तुम ऑडिशन दो और देखते हैं कैसा आता है। तो एक बड़ा मुश्किल ऑडिशन लिया मैंने उनसे, तीन तरह के ऑडिशन, जिसमें कॉमेडी भी था, सीरियस भी था और इन्फॉर्मेटिव भी था। ऐसे तीन तरह के ऑडिशन के बाद मुझे चुना, और ऐसे फिल्म में चुना जो उस दौर को दर्शाती है जिस दौर में मैं पैदा हुआ, उस दौर में महाश्वेता देवी ने लिखा था। उस एक स्टूडेंट के बारे में जो मारा जाता है, मरने के बाद वो सिर्फ एक नंबर बन जाता है, लाशों का नंबर होता है, लाशों का नाम नहीं होता। उसकी माँ जब अपने बेटे को ढूंढने जाती है तो उसे लाश का नंबर बताया जाता है। वो कहती है सिर्फ नंबर कैसे हो गया, ये तो मेरा बेटा है व्रती। फिर उस नंबर के पीछे के सच्चाई को ढूंढने उसकी माँ निकलती है कि वो कौन सा पक्ष है इस मेरे बेटे का जो मैं नहीं जानती थी। मेरा बेटा तो घर पे एक मध्यम वर्ग का अच्छा लड़का था, कॉलेज जाता था, पढ़ाई करता था, मेरे को हंसाता था, ये उसे पसंद था, वो था, ये चीज तो मुझे पता ही नहीं था कि पुलिस ने उसे क्यों गोली मारी। तो वो समझने के लिए निकलती है और फिर अपने बेटे के इतिहास के जरिए खुद उसके अंदर एक क्रांतिकारी भाव आ जाता है। तो माँ का भी एक ग्रोथ होता है इस फिल्म में, तो इसीलिए वो हजार चौरासी जो नंबर है उसकी माँ।
1: उसकी
0: तो इसमें मुझे मौका मिला काम करने का। तो मेरा जो पर्सनालिटी है नुक्कड़ नाटक, ठीक है, मेरा जो जीवन दर्शन, दुनिया को देखने का नजरिया, जिस दौर में पैदा हुआ, वो सब कुछ इस फिल्म में मिला। तो एक तरह से आप कह सकते
1: हैं जिया आपने उसे, उस माहौल को,
0: बताइए एक पूरा कैसे एक कोइंसिडेंस है, लेकिन ये सारी चीजें एक जगह आ गई, महाश्वेता देवी, गोविंद निहलानी, मैं, मेरे को एक्ट्रेस नंदिता दास जो जननाट्य मंच में मेरे साथ काम करते थे, हम लोग साथ नुक्कड़ नाटक करते
1: और
0: थे,
1: जया भादुड़ी जी और अनुपम खेर के साथ।
0: जी जी जी जी जी, जी। तो अनुपम खेर जो महेश भट्ट स्कूल ऑफ सिनेमा से आए थे, जया जी जिनकी शुरुआत सती इतरे से हुई, और फिर ऋषिकेश मुखर्जी स्कूल ऑफ एक्टिंग से आए, तो ये सारे जो है एक जगह हम लोग आ गए।
1: चलिए यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, आपकी पसंद का कोई गाना आप सुनना चाहें बताएं।
0: लगान का गाना है चले चलो बड़े चलो, वो आप जरूर सुनाइए क्योंकि उसके अंदर एक जोश है, होश है, वो सुना दीजिए।
1: सुनते हैं गाना जी।

0: मैनिफेस्टेशन दरअसल सच होता है
1: ऐसा
0: उस चीज को
1: मुझे।
0: दिल से चाहो तो, और भी आगे भी हम बात करेंगे, आगे भी बहुत सारी चीजों में मैनिफेस्टेशन हुआ है आपका।
1: जी, जी, जी।
0: तो अभी फिल्मों में आप आ चुके थे, उसके
1: जी,
0: बाद भी आप टीवी पर भी काम कर रहे थे,
1: जी, जी।
0: तो कभी ऐसा नहीं लगा कि अब थिएटर कर लिया, फिल्मों में आ गया, अब टीवी छोटे पर्दे पे मैं क्यों करूं, ऐसा कभी भावना नहीं आई?
1: टीवी पे काम मैंने सिनेमा से पहले शुरू किया था।
0: अच्छा।
1: मैं थिएटर से टीवी में मुझे मौका मिला था।
0: अच्छा।
1: मैं टीवी में एंकरिंग कर रहा था, होस्टिंग कर रहा था और एक्टिंग भी कर रहा था, और मैं ठीक ठाक पैसे कमा रहा था। तो एक मध्यम वर्ग का वो एक्टर जिसका बाप एक सरकारी मुलाजिम था, जिसकी ना कोई सेविंग्स थी ना कोई प्रॉपर्टी थी, और जिसने अपने बच्चे के बारे में ये सपना देखा था वो आईएएस ऑफिसर बनेगा, समझ रहे हो, है ना, तो जिसमें जिंदगी में सिक्योरिटी भी होगी, ओहदा भी होगा,
0: बिल्कुल,
1: और थोड़े बहुत पैसा भी होगा। उसने तय किया कि मेरे पीछे कुछ होना हो मैं आर्टिस्ट ही रहूंगा।
0: अच्छा।
1: और एक्टर नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ एक्टर नहीं था, मैं एक सीरियस आर्टिस्ट था। मैं थिएटर से जुड़ा हुआ था, थिएटर को लेकर मेरे कुछ एम्बिशंस थे।

0: जी
1: मैं मुंबई में जाके स्टार बनूंगा, ऐसा मेरा कोई आदर्श नहीं था। मैं उसको बुरा नहीं कहता, लेकिन मेरा आदर्श नहीं था वो।
0: बस एक
1: मैं
0: कलाकार, एक
1: बस
0: आर्टिस्ट।
1: बिल्कुल वो मेरा एक एक्सटेंशन था। मैं जो कर रहा था उसी का एक एक्सटेंशन है कि मैं एक मीडियम में काम कर रहा हूं, अब मैं दो मीडियम में करूंगा, तीन मीडियम में करूंगा। तो जब टेलीविजन में आया तो वो टेलीविजन का मैं कहूंगा बहुत अच्छा दौर था। आप
0: अच्छा।
1: सोचिए कि उस लेट 90s में मैंने उस समय टेलीविजन में अनुराग बासु के साथ काम किया, मैंने श्रीराम राघवन के साथ काम किया, ठीक है। उसी दौर में कश्यप भी टेलीविजन में कर रहा था, इम्तियाज अली भी टेलीविजन में थे, रवि राय भी टेलीविजन में थे। तो एक बहुत बढ़िया दौर था, अच्छी राइटिंग का, अच्छे डायरेक्शन का, अच्छे कैरेक्टर्स का, टेलीविजन का।
0: बिल्कुल।
1: तो मैं बड़ा खुश था टेलीविजन से। डेली सोप नहीं बन रहे थे, वीकली सोप बन रहे थे, टेलीफिल्म्स बन रही थी। मैं जो आगे चल के जो फिल्म डायरेक्टर्स बने वही सब टेलीविजन में थे, आगे चल के जो फिल्म में अच्छे सिनेमाटोग्राफर बने वो सब टेलीविजन में थे।
0: बिल्कुल।
1: तो हम लोग कैरेक्टर बिल्ड करते थे टेलीविजन में। और सोचिए मैं जब टेलीविजन में काम कर रहा था तो महीने के महीने कमा रहा था, तो एक तरह से आप सिक्योर्ड भी हो गए, है ना। तो
0: बिल्कुल।
1: बहुत अच्छा था मेरे लिए, तो बहुत बढ़िया दौर था। फिर सिनेमा बना, और सिनेमा जिस तरह के सिनेमा से मैं आया वो सिनेमा उस दौर के लिए अटपटा था, क्योंकि वो दौर जो था ना, एक तरफ तो एक्शन का दौर था, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, ये लोग एक्शन के
0: एक्शन
1: मास्टर्स
0: मूवीज
1: थे।
0: आ रही थी। हाँ बिल्कुल।
1: दूसरी तरफ रोमांटिक फिल्म का दौर था, आमिर, शाहरुख और सलमान, ये लोग रोमांटिक फिल्म्स ही कर रहे थे।
0: बिल्कुल।
1: तो ये दो स्रोत चल रहा था। सीरियस सिनेमा उस समय ना के
0: ना
1: बराबर
0: के
1: था।
0: बराबर था। बिल्कुल।
1: सीरियस सिनेमा का दौर mid-80s में खत्म हो गया था। उसके बाद कोई सीरियस सिनेमा बन ही नहीं रहा था, अगर इक्का दुक्का बन भी रहा था तो वो कोई देखने के लिए कुछ नहीं था। तो इस समय या तो आप खिलाड़ियों के खिलाड़ी करेंगे, या ऐलान करेंगे, या परदेसी परदेसी
0: रोमांटिक ही वो
1: उसमें
0: करेंगे।
1: जाएंगे,
0: जी
1: या आप कहीं नहीं। मुझे देखकर या मुझे जिस तरह से लोगों ने, इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने नापा तोला कि अरे ये यहां या वहां फिट नहीं होता है,
0: जी
1: ये मेरे लिए एक बात कहने लगे कि ये 80s का या 70s का अमोल पालेकर है, समझ रहे हैं? वो जो चिच्चोर और छोटी सी बात और बातों बातों में, और वो जो वो आ
0: रजनीगंधा।
1: वो रजनीगंधा, या
0: हाँ
1: सीरियस सिनेमा जो है उस तरह का, एक बॉय नेक्स्ट डोर, एक अच्छा सुशील पढ़ा लिखा लड़का जो ट्रेनिंग लेके आया है, तो उसको हम कहाँ फिट करेंगे, इस तरह का वो था। और सच बताऊं तो गलती मेरी भी ये थी कि मेरे अंदर वो एम्बिशन नहीं थी, वो ड्राइव नहीं था कि मैं अपने आप को प्रूव करूं कि मैं यहां बिलोंग करता हूं, तो मैंने भी नहीं किया।
0: इस तरह के रोल में
1: जी
0: बिलोंग
1: जी
0: करते
1: जी
0: हैं।
1: जी मैंने वो कोशिश ही नहीं की।
0: पर एक आर्टिस्ट के तौर पे ये अच्छी बात भी है कि आप अलग अलग वेरिएशन लेकर आते हैं,
1: वो मेरे
0: अलग अलग किरदार गढ़ते हैं, किसी एक तरफ टाइपकास्ट नहीं हुए हैं।
1: वो बन गया, वो हो गया कि लोगों ने, जैसे मैंने कहा ना कि थिएटर से टेलीविजन हो गया, मैंने कोशिश नहीं की, वो हो गया। एंकरिंग होस्टिंग में बन गया, वो कर रहा था मैं उस समय, पैसे कमा रहा था, पता नहीं कहां से मैंने अपने आप के अंदर एक एंकर होस्ट पा लिया छोटे समय के लिए। फिर मैं उससे भी निकल गया, क्योंकि उसमें ब्रांडिंग हो गई थी मेरे दिमाग में कि ये एंकर होस्टिंग कर रहा है, मैं उससे निकल गया। एक्टिंग में क्या था कि चूंकि मैं टीवी में वैरायटीज रोल कर रहा था, और सिनेमा में वैरायटीज नहीं होते थे उन दिनों ना, स्टॉक कैरेक्टर्स होते थे, हीरो का फादर, हीरो की मदर,
0: बिल्कुल।
1: हीरोइन की फ्रेंड, कॉमेडियन, विलेन, मतलब एक ही तरह का विलेन, कॉमेडियन मतलब वो आते ही लोग हंसेंगे,
0: हाँ
1: आप समझ रहे हो? वो
0: बिल्कुल।
1: किरदार जो कैरेक्टराइजेशन कहते हैं वो नहीं था। वो थोड़ा थोड़ा बदलने लगा लगान के बाद, दिल चाहता है के बाद, सत्या के बाद थोड़ा
0: हाँ
1: बदलने लगा। उसको आने में फिर भी 3-4 साल थे, जब मैं आया हदा चौरसी की माँ के 1999 में, तब यही चल रहा था दौर। फिर टेलीविजन बदल गया, डेली सोप आ गया, सास बहू हो गया, मैंने टेलीविजन भी छोड़ दिया, मैंने टेलीविजन छोड़ दिया। मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकता,
0: हाँ
1: ना मैं उसमें फिट होता हूं, ना मैं कर सकता हूं, और ना मेरा जो वैल्यूज है, प्रिंसिपल्स है, उसके साथ जाता है। तो भाई मैं करूं तो करूं क्या? तो मैंने थिएटर एक्टिविटी और बढ़ा दी, मैं ग्लोबली थिएटर करने लगा।
0: जी
1: मैं जो नाटक कर रहा था वो बाहर ट्रैवल करने लगा, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया में जगह जगह मैं ट्रैवल करने लगा। BBC में से रेडियो प्लेस का मेरा दौर शुरू हुआ, और यहाँ कुछ बंगाली फिल्मों से मुझे बुलावा आने लगा। तो यहाँ हिंदी फिल्में, कुछ सीरियस फिल्में चल रही थी, वहाँ बंगाली फिल्म से जो साहित्य बेस्ड फिल्में थी, लिटरेचर बेस्ड, फिर कुछ फिल्म मेकर्स थे जो ढूंढ रहे थे कि कुछ एक ऑल्टरनेटिव पर्सनैलिटी मिले, जो इस तरह के कैरेक्टर्स जो हों साहित्य में हैं, जो पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, थिंकिंग, वो पोर्ट्रे करे, तो मुझे बुलावा आया। तो मैं गया, क्योंकि बंगाली फिल्म से मैं काम करने का मेरा शौक पुराना था, वही फिल्में देख के मैं बड़ा हुआ और मुझे अच्छी फिल्में मिलने लगी, तो वो मैं करने लगा। तो अब बंगाली फिल्म, हिंदी फिल्म, BBC रेडियो, खूब सारा थिएटर और एड फिल्म्स मिलने
0: जी
1: लगे, तो वो करने लगा। तो कमाई मेरी पहले से कम हो गई, क्यों, मैं टीवी छोड़ दिया, लेकिन उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैं नुक्कड़ नाटक से आया था।

0: मैं जानता था कि आप किसी भी परिस्थिति में आप जो कर रहे हो और कह रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आप कितना कमा रहे हो। तो इस परिस्थिति से मैं जूझना मेरे लिए बड़ा आसान था, क्योंकि मैं क्रिएटिवली सेटिस्फाइड था। पहली बात तो ये, एज एन आर्टिस्ट मैं सेटिस्फाइड था, और जितना मिल रहा था बहुतों से ज्यादा था,
1: बिल्कुल.
0: तो मुझे कोई शिकायत नहीं थी।
1: और अभी ओटीटी आ गया है, उसमें तो वैसे भी जो नए लोग आ रहे हैं
0: जी,
1: उनके लिए भी बहुत जगह है, बहुत
0: ओटीटी
1: किरदारों
0: में
1: की
0: तो
1: जगह
0: हाँ
1: है, जो कहीं फिल्मों में लिमिटेड था
0: बिल्कुल।
1: वो
0: नहीं,
1: यहाँ पर
0: ओटीटी में
1: अभी.
0: एक अच्छी बात ये हुई कि
1: जी
0: ओटीटी में ना बहुत कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं,
1: जी
0: और एक कैरेक्टर को अगर 3 सीन भी मिलता है ना, वो तीन बहुत कमाल के सीन्स लिखे जाते हैं। वो
1: बिल्कुल.
0: ऐसे नहीं होते कि उनको आए और चले गए, वो सीन का कोई मायने होता है। तो भले वो 8 एपिसोड का कोई सीरीज है ओटीटी में, उसमें एक एपिसोड में वो आ रहा है। जैसे मैंने किया है आर्या सीजन 1 में,
1: जी
0: मैंने एक एपिसोड में काम किया सुष्मिता के साथ, लेकिन वो किरदार एक डेफिनेट किरदार था जो उस एपिसोड में आता है और उस एपिसोड को इम्पैक्ट करता है और चले जाता है।
1: जी
0: तो उसको बिल्ड करने में मजा आया, उसकी वर्कशॉपिंग हुई। मैंने
1: बिल्कुल.
0: सुष्मिता सेन के साथ 2 दिन वर्कशॉपिंग की, एक रिश्ता बनाने के लिए, उस पर काम किया, उसकी आवाज पे, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे, उस स्वभाव पे, ये सब कुछ ओटीटी में एक क्राफ्ट को लेके जो एक सीरियसनेस आ
1: जी
0: गया था। अभी कितने दिन बरकरार रहेगा मुझे पता नहीं,
1: हाँ
0: लेकिन ये एक सीरियसनेस ये आ गया था ओटीटी में,
1: जी
0: जो मुझे अच्छा लगा। ये मेरे थिएटर के प्रशिक्षण के साथ बहुत अच्छा जुड़ता है, जहां
1: जी
0: आपको स्क्रिप्ट पहले मिलता है, जहां आपको बैकग्राउंड पहले दिया जाता है, जहां आपका रिसर्च होता है, जहां
1: जी
0: वर्कशॉपिंग होती है, फिर प्रिपेयर्ड होकर आप सेट पे जाते हैं।
1: बिल्कुल. यहाँ सुनते हैं आपकी पसंद का एक और गाना.
0: जी, मेरे पसंद के गाने, अब हम अमिताभ बच्चन के दौर में आ जाते हैं।
1: हाँ
0: बारिश का मौसम है तो रिमझिम गिरे सावन जो है वो मेरा बहुत ही पसंदीदा
1: मंजिल
0: गाना
1: फिल्म
0: है।
1: से.
0: हाँ, वो आप सुना दीजिए, लोग भुट्टा
1: बिल्कुल
0: खाते हुए सुनते हैं उसको।
1: बिल्कुल बिल्कुल.

0: आते हैं डबिंग इंडस्ट्री की तरफ
1: जी.
0: तो कैप्टन अमेरिका की बात ना की जाए तो ये इंटरव्यू पूरा नहीं होगा
1: जी,
0: क्योंकि वॉइसिंग में आपने ऐसे तो बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज की डबिंग की है
1: जी,
0: लेकिन साथ साथ ये कुछ किरदार हैं
1: जी,
0: जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए हैं, पसंद किए गए हैं
1: जी, जी, जी.
0: तो इससे कैसे जुड़ना हुआ और इसकी चुनौतियां अपने लिहाज से कैसी है?
1: देखिए, मैं दिल्ली में ना जब मैं थिएटर की पोजीशन ले रहा था तो कमाने के लिए मैं वॉइसिंग करता था
0: जी.
1: मैं बड़े इंटरेस्टिंग वॉइसिंग करता था. मैं मलयालम सीरीज जो होते थे टीवी के लिए दूरदर्शन, उसको हिंदी में डब करता था. पपेट फिल्म्स में वॉइसिंग देता था, पपेट्स की वॉइसिंग. हाँ, तोते की वॉइस, सियार का वॉइस, ये सब मैं करता था वहाँ पे. कुछ डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह की भी बैकग्राउंड वॉइसिंग करता था तो
0: जी.
1: बड़ा मजा आता था. मुंबई में आया तो थोड़ी एड की वॉइसिंग की लेकिन पूरी तरह से नहीं, उतना ही हुआ. फिर छूट गया क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हो गया. बाद में 2010 के आसपास फिर से मुझे वॉइसिंग के लिए पता नहीं साउंड एंड विजन से बुलावा आया कि आप करना चाहेंगे. मैंने कहा ठीक है. तो मैंने करना शुरू किया और हॉलीवुड फिल्मों में मुझे वॉइसिंग का मौका मिलने लगा. कुछ बड़ी बड़ी फिल्में मैंने हॉलीवुड की 2012-18 बी मूवी करके की. और फिर वार्नर ब्रदर्स से फिर टेस्टिंग का वो आया. जब ये सारी कुछ हॉलीवुड की बड़ी फिल्में करने के बाद टेस्टिंग का मौका आया. और पता नहीं कैप्टन अमेरिका के लिए मुझे क्यों चुना गया, आई डोंट नो दैट, क्योंकि उसकी जो आवाज़ है
0: जी,
1: उसका टेक्स्चर मेरे से थोड़ा अलग है.
0: अच्छा.
1: लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक लीडरशिप का सवाल था कि आवाज में एक लीडरशिप आनी चाहिए
0: जी.
1: और संवेदनशीलता भी होनी चाहिए एक लीडर के अंदर. क्योंकि स्टीव रॉजर्स जो है बड़ा संवेदनशील लीडर था
0: जी.
1: वो बड़ा ही रूखा लीडर नहीं था कि ऐसे करो वैसे करो, ऐसा नहीं था वो, कि वो अपनी बात को बड़े सहज तरीके से रखता था. तो वो लाने की बात थी. तो उन्होंने मुझे चुना तो फिर मैंने कहा करते हैं. फिर 11 साल तक वो करता रहा. मैं वो एवेंजर्स में भी और कैप्टन अमेरिका की सीरीज में भी वो चलता रहा. फिर
0: बिल्कुल जो लोग काफी पसंद कर रहे हैं.
1: जी जी
0: बिल्कुल. तो अभी थिएटर, टेलीविजन, फिल्म्स, वॉइस इंडस्ट्री, डबिंग इंडस्ट्री,
1: जी.
0: अब और क्या आगे आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं?
1: वर्टिकल्स हो रहे हैं बहुत.
0: अच्छा,
1: ठीक है. तो वो भी अभी करने को मौका मिल गया है
0: जी.
1: वो वर्टिकल्स जो हैं वो आपके एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट के शॉर्ट्स होते हैं. वो तो 40 मिनट की कहानी को एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट के एपिसोड में बताया जाता है.
0: हाँ हाँ,
1: ठीक है. तो अब वो उसका दौर आ गया. अब उसमें भी काम कर रहा हूँ मैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. बहुत सारी बारीकियां, आपके अनुभव जो आपने साझा किए बहुत अच्छे लगे. और आपके आगे जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ विदा चाहते हैं. और आगे फिर से जरूर मिलेंगे और नई चीजों पर चर्चा करेंगे, बातें करेंगे.
1: बिल्कुल.
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका विविध भारती के स्टूडियो में आने का.
2: ये थी अभिनेता जॉय सेन गुप्ता से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत. रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल.
3: आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से. इसी कार्यक्रम के साथ ही आज की पहली सभा यहीं पर समाप्त होती है. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है. इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 5 बज चुके हैं. आज शाम 6 बजे से आज की दूसरी सभा के कार्यक्रम को आरंभ किया जाएगा. लेकर आपके समक्ष हाजिर रहेंगे. अंकिता जी, तब तक के लिए मुझे यानी रिनी को दीजिए इजाज़त. नमस्कार.

नमस्कार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 6 बज चुके हैं। आप सभी सुनने वाले हमारे श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं हम आज की हमारी दूसरी सभा में।

अब से कुछ ही देर में 6:05 से आप सुनेंगे मार कार्यक्रम में भक्ति गीत ललरम थियंग मार और साथियों की आवाजों में। शाम 6:25 पर जैमी कार्यक्रम में भक्ति गीत आप सुनेंगे पीहिए इले रियाय में और साथियों के गाए। आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से संध्या आंचलिक बातूरी का प्रसारण किया जाएगा शाम 6:45 पर और उसके बाद आकाशवाणी के हाफलॉन्ग केंद्र से पुनः प्रसारण दूसरी सभा के स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों का आप सुन पाएंगे। शाम 7:00 दिमासा कार्यक्रम को जारी रखते हुए आप सुनेंगे लिविंग डेस्टिनी बैंड की ओर से दिमासा आधुनिक गीत। शाम 7:20 पर कार्बी कार्यक्रम आप सुन पाएंगे भक्ति गीत काजिर इंगिपी।

और साथियों की गाये आज आप सुनेंगे। शाम 7:40 पर कुकी कार्यक्रम का समय रहेगा और आज आप सुनेंगे पारंपरिक गीत न्यम न्यंग चोंगलॉय और साथियों के गाये।

दूसरी सभा के स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों के बाद आप सुन पाएंगे रात 8 बजे फिल्मी गीत, और उसके बाद कार्यक्रम एक ही फिल्म से इसका प्रसारण आप सुनेंगे रात 8:30 पर। रात 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या हर रोज की तरह आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित। रात 9 बजे सुनेंगे आप नेपाली गीतों का कार्यक्रम, आज कुछ आधुनिक नेपाली गीत आप सुन पाएंगे। और श्रोताओं, अंत में रात 9:30 से चित्रगीत कार्यक्रम का आनंद आप ले सकेंगे। ये थी आज की दूसरी सभा के मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: আৰু গৃহপিয়ন অৰ্থাৎ আপোনাৰ বাসগৃহৰ গণনা কৰা হ'ব। আহক নিজৰ অংশগ্ৰহণেৰে ইয়াক সফল কৰোঁ। প্ৰতিজন ব্যক্তি সংযুক্ত হওক, প্ৰতিটো ঘৰ সংযুক্ত হওক আৰু দেশ আগুৱাই যাওক। লোকপিয়ল 2027, আমাৰ লোকপিয়ল, আমাৰ বিকাশ।
1: अब आइए श्रोताओं, हम आरंभ करते हैं आज की दूसरी सभा के स्थानीय भाषाओं का कार्यक्रम। सबसे पहले हम सुनेंगे मार कार्यक्रम, भक्ति गीत। गायक कलाकार हैं ललराम थियांग मार और साथी।

मार कार्यक्रम में भक्ति गीत आप सुन रहे थे लाल राम थियांग मार और साथियों की आवाज़ों में। इसी के साथ ही आज का मार कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे डिमासा कार्यक्रम में लिविंग डेस्टिनी बैंड को प्रस्तुत किया था आधुनिक गीत। इसी के साथ ही आज का डिमासा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।

0: काजीरिंगी पी और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे कार्बी भक्ति गीत। इसी के साथ ही आज का कार्बी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
1: গলিয়ে গলিয়ে এই গ্রন্থ শুনা যা প্রতিটো ঘরে নিজ গণনা করা আমি লিখিম ভবিষ্যতৰ ন অধ্যায় আমার লোকপিয়ন আমার বিকাশ।
2: লোকপিয়নৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত গৃহ তালিকা আৰু গৃহপিয়ন অৰ্থাৎ আপোনাৰ বাসগৃহৰ গণনা কৰা হ'ব। আহক নিজৰ অংশগ্ৰহণেৰে ইয়াক সফল কৰোঁ। প্ৰতিজন ব্যক্তি সংযুক্ত হওক, প্ৰতিটো ঘৰ সংযুক্ত হওক আৰু দেশ আগুৱাই যাওক। লোকপিয়ল 2027 আমার লোকপিয়ল আমার বিকাশ।
0: अब आइए श्रोताओं, हम आगे बढ़ते हुए सुनते हैं स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों में कुकी कार्यक्रम। पारंपरिक गीतों का आनंद आज हम ले पाएंगे। गायक कलाकार हैं नेमनियंग चोंगलॉय और साथी।

0: न्यमनियंग चोंगलोई और साथियों के गाए कुकी पारंपरिक गीतों का आनंद हम ले रहे थे। इसी के साथ ही आज का कुकी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है और कुकी कार्यक्रम के साथ ही समाप्त होती है आज की दूसरी सभा के स्थानीय भाषाओं का कार्यक्रम।
1: सेंसस 2027 के बारे में एक जरूरी सूचना। सेंसस 2027 का हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन का काम 17 अगस्त से शुरू हो गया और 15 सितंबर 2026 तक चलेगा। ये प्रक्रिया में सेंसस ऑफिशियल यानी एन्यूमरेटर आपके घर में आएगा। उनका अपना ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड भी होगा। ये ऑफिशियल आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, जैसे कि आपके घर में कितना जन है, पीने का पानी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इंटरनेट, स्मार्टफोन, गाड़ी वगैरह एक्सेट्रा सब है कि नहीं आपको पूछेगा। एन्यूमरेटर आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे और आपका सारा इन्फॉर्मेशन गोपनीय यानी कॉन्फिडेंशियल ही रहेगा। सभी से अनुरोध है कि आप लोग एन्यूमरेटर को अच्छे से कोऑपरेट करें, सही इन्फॉर्मेशन दे देश का फ्यूचर के लिए और देश आगे बढ़ने में साथ दे।
0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है फिल्मी गीतों का। आइए सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है खामोशी। गीत को गाया है कविता कृष्णमूर्ति ने और गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने। आइए सुनते हैं ये गाना।

आकाशवाणी के हाफलॉन्ग केंद्र से फिल्म गीतों का आनंद आप ले रहे हैं श्रोताओं। अब ये सुनते हैं हम उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म आ अब लौट चले, इसका टाइटल सॉन्ग। गाने के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत से सवारा है नदीम श्रवण ने। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, आकाशवाणी की हाफलौंग केंद्र से फिल्मी गीतों का आनंद आप ले रहे थे, ले रहे हैं। और अभी आपने सुना मैं खिलाड़ी तू अनारी, इस फिल्म का गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ें थी, रानी मलिक के बोल थे और अनु मलिक का संगीत। अगला गाना जो आपको हम सुनवाने जा रहे हैं वो है फिल्म इस गीत को गाया है श्रोताओं अलका याग्निक और शान ने,

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अंदाज फिल्म का ये गीत अलका याग्निक, शान और साथियों की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे थे समीर ने और संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण ने। इसी के साथ ही फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम यहीं पर हम आज के लिए समाप्त करते हैं।

आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आज हम सुनेंगे स्वर्ग फिल्म का ये गीत, और जितने भी गाने आप सुनेंगे इस कार्यक्रम में इसी ही फिल्म से आप सुन पाएंगे। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, आनंद मिलिंद का संगीत है और अमित कुमार की आवाज़। आइए सुनते हैं स्वर्ग फिल्म के गाने।

अमित कुमार, नितिन मुकेश और साथियों की आवाज़ों में स्वर्ग फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद मिलन का संगीत, समीर के बोल। अगला गाना भी स्वर्ग फिल्म से ही हम सुनने जा रहे हैं,

0: कार्यक्रम एक ही फिल्म से आज के लिए श्रोताओं हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। अभी आप सुनेंगे कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेइचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। ओणम और ईद मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा तथा धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नुवाकोट और चितवन तक पहुंचा। एक रिपोर्ट।
2: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुवा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर हैं 9779851316807 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 9779091075000। दूतावास ने बताया कि वो बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले

0: लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि फिलहाल गंडक नदी का जलस्तर अपेक्षाकृत कम है, जो कि एक सकारात्मक स्थिति है। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए संभावित जल प्रवाह को देखते हुए वाल्मीकि नगर बराज से 2.5 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़े जाने की संभावना है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
2: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
1: आपदा मोचन बल के कमांडेंट हितेंद्र पाल सिंह कंडारी ने बताया कि बिहार में 9 टीमें तैनात हैं और कई अन्य टीमें अलर्ट पर हैं।
3: मानसून के सीजन में हमारी कुछ टीमें पहले से ही प्रिपरेशन थी। अभी जो संभावना जताई जा रही है कि फ्लड का पानी जो नेपाल में है वो इंडिया में एंटर करेगा, तो उसके बाद यहाँ पे भी फ्लड की सिचुएशन बन सकती है। उसके मद्देनजर हमारी टीमों को वहाँ पे भेजा गया है।
1: इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृह मंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। नेपाल में अचानक बाढ़ के कारण दोनों जिलों में गंडक और नारायणी नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इधर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना है। कल दिल्ली में भी वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया और 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे के समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि व्यस्ततम रेल लाइनों को 4 लेन में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं जो तकरीबन 11,000 किलोमीटर तक फैले हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई, मुंबई हावड़ा और दिल्ली गुवाहाटी 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जारी निर्देशों पर हुई प्रगति का जायजा लिया गया और चल रही पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने और प्रभावी ढंग से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2,500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंपे। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है।
4: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहनें हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
1: मुंबई पुलिस ने एमपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक होने के मामले में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के 3 अधिकारियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अदालत ने सभी 6 आरोपियों को बुधवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में

0: समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति कल रायपुर में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करेगी। इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 200 लोगों को आमंत्रित किया गया है। मेघालय सरकार ने स्कूली बच्चों में बुनियादी पठन कौशल को बेहतर बनाने और सीखने की कमियों को दूर करने के लिए सीएम इम्पैक्ट रीड एंड राइज मेघालय कार्यक्रम शुरू किया है। इसका लक्ष्य है कि हर बच्चा 7 वर्ष की आयु तक पढ़ना और लिखना सीख सके। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएमए ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। चिकित्सा संघ ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेने को कहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मनाया। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरलम वासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है।
1: तिरुओणम के अवसर पर केरलम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। ओणम पर्यटन सप्ताह के अंतर्गत राज्य के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी हैं। जिला मुख्यालयों के साथ साथ प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केरलम का सबसे बड़ा फसल उत्सव ओणम अब समापन की ओर है। तिरुअनंतपुरम से स्मृति एम पलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: इस बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने केरलम मंडल में लगभग 4,40,000 पेंशन भोगियों को आज अगस्त 2026 की पेंशन उनके खातों में भेज दी। सामान्य तौर पर पेंशन का वितरण महीने की अंतिम तिथि को होता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी भी आज उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कश्मीर घाटी में इस अवसर पर विभिन्न मस्जिदों और दरगाहों में हजारों श्रद्धालु जुटे और विशेष नमाज अदा की।
2: ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में पूरी घाटी में हजारों की तादाद में अकीदतमंद मस्जिदों और दरगाहों में जमा हुए और खसूसी नमाजों और मजहबी मजलिसों में शामिल हुए। सबसे बड़ी मजलिस श्रीनगर के दरगाह हजरत बल में हुई, जहां पर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास निशानी को लोगों के सामने नुमाया किया गया और उनकी जिंदगी पर रोशनी डाली गई। ऐसी ही मजलिसें घाटी के दीगर इलाकों में भी हुई, जहां पर लोगों ने जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क की खुशहाली के लिए दुआएं की। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छड़ी मुबारक यात्रा आज धार्मिक और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संचालित की गई। इसके साथ ही श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा के समापन की औपचारिक शुरुआत हो गई। यात्रा समापन रक्षाबंधन के दिन होगा। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पत्रा देवी हुतात्मा स्मारक राष्ट्रीय एकता, साहस और बलिदान का प्रतीक है, जिसने गोवा की मुक्ति में योगदान दिया था। श्री सिंह ने स्मारक के उद्घाटन समारोह में कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से लोग गोवा आए और इसकी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त ले ली है। श्रीलंका की पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। हंगरी में पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में वीर चोटरानी और विलवन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। चोटरानी ने क्वार्टर फाइनल में मिस्र के मोहम्मद अल शेरबिनी को और विलवन सेंथिल कुमार ने मलेशिया के एन यो एनजी को हराया। अब सेमीफाइनल में ये दोनों खिलाड़ी आमने सामने होंगे। मुंबई में एशियाई जूनियर क्लासिकल शतरंज चैंपियनशिप में मयंक चक्रवर्ती ने ओपन और प्रतीति बोरदोलोई ने लड़कियों के वर्ग का खिताब जीत लिया है। ओपन वर्ग का कांस्य पदक भारत के ही दक्ष ने हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की

0: वक्त 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। ओणम और ईद मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हिंदी में समाचार लिखे गए थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है।
2: हेलो हाफलॉन्ग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग। हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं। और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग।

नेपाली गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र से आप सुन रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में कुछ बेहतरीन नेपाली आधुनिक गीतों का आनंद हम ले रहे हैं।

श्रोताओं, नेपाली गीतों का कार्यक्रम आप सुन रहे थे। आज इस कार्यक्रम में हमने सुने कुछ बेहतरीन नेपाली आधुनिक गाने, और इसी के साथ आज का ये नेपाली गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।

आपके गीत। दोस्तों, FM 100.2 MHz पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूजडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों, आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।

0: লোকপিয়লৰ প্ৰথম পৰ্যায় গৃহ তালিকা আৰু গৃহপিয়ল অৰ্থাৎ আপোনাৰ ঘৰৰ গণনা হ'ব। আহক আপোনাৰ সহযোগিতাৰ দ্বাৰা ইয়াক সফল কৰোঁ আৰু বিকশিত ভাৰত 2047ৰ দিশে আৰু এটা খোজ আগবাঢ়ো।
1: Frequency modulation 102.2 megahertz पर आकाशवाणी का ये हाफलॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए हम सुनते हैं कार्यक्रम चित्रगीत। पहला गाना श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में हम सुनेंगे। फिल्म का नाम है हैप्पी न्यू ईयर।

आकाशवाणी के हाफलॉन्ग केंद्र से कार्यक्रम चित्र गीत आप सुन रहे हैं श्रोताओं। अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम है माई नेम इस खान, शंकर एहसान लॉय का संगीत, निरंजन आयंगर के बोल, और इस गीत को गाया है राहत फतेह अली खां, शंकर महादेवन और ऋचा शर्मा ने। आइए सुनते हैं।

आकाशवाणी के हाफलॉन्ग केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्र गीत। अगला गाना आशा भोसले की आवाज़ में हम सुनेंगे, फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, अनजान के बोल।

मुन्ना भाई MBBS इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना शान की आवाज़ में। अनु मलिक का संगीत था और गीत के बोल थे अब्बास टायर वाला के। कार्यक्रम चित्र गीत आकाशवाणी के हाफलॉन्ग केंद्र से आप सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम का आखिरी गाना ये हम सुनते हैं श्रेया घोषाल की आवाज़ में। फिल्म का नाम है कृष्णा कॉटेज।

इस गीत के साथ ही श्रोताओं, आज का चित्र गीत कार्यक्रम यही पर हम समाप्त करते हैं। आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात के 10 बज चुके हैं, समय हो गया है आज की दूसरी सभा के कार्यक्रमों को यहीं पर समेटने का और आज की दूसरी सभा को यहीं पर समाप्त करने का। कल पहली सभा में आपके समक्ष हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दे। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।

आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात के 10 बज चुके हैं, समय हो गया है आज की दूसरी सभा के कार्यक्रमों को यहीं पर समेटने का और आज की